FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती निवाद। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे उदय सिंह नामोर और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन।

प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन में आज आप सुनेंगे प्रभा नगावत से वार्ता, जिसका शीर्षक होगा संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से। राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 8:45।

प्रातः 9:10 और प्रातः 11 आप सुनेंगे सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 11:30 पर। प्रातः 7:30, प्रातः 9:30 और दोपहर 12 से आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। किसान श्रोताओं के लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। शाम 5:30 और रात्रि में 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि में 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। इसके अलावा समय समय पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली और जयपुर केंद्र से।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:45 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है खेती नी बात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाई ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों, आपने सब जानो कि फसल नी अच्छी पैदावार बल्ले आपड़ी से खेतर ने मिट्टी है इनमें पोषक तत्व हैं, ये बहुत जरूरी रहे हैं। और जैविक मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और आवाज सूक्ष्म तत्व हैं, इन्हें अगर कमी थी जा तारे आपने खेतर में खाद या जो उर्वरक है इन्हें नाखवानी आवश्यकता पड़े है। पर अगर आपने आनो ज्यादा या कम उपयोग करो तो ये आपड़ी फसल और खेतर की जो मिट्टी है इन्हें बेने बल्ले नुकसानदायक साबित है। अटले आनो संतुलित उपयोग करो बहुत आवश्यक है। संतुलित उपयोग ने अगर आपने बात करो तो फसल की जो जरूरत है और मिट्टी की जो स्थिति है इन्हें अनुसार खातर या उर्वरक अपने खेतर में नाखोज हुए आने बल्ले सप्ती के पहले तो अपने मिट्टी नु यानी जो मृदा है इनी जांच करावी दीवज हुए जेने अपन आज मृदा परीक्षण ने नाम थे कि जाना है। आना मृदा परीक्षण थे कि आपने आ खबर पड़ेगा क्या आपने खेतर में कई कई पोषक तत्व कम है और कितनी मात्रा में ने आलवानी आवश्यकता है। क्योंकि किसान भाई अगर आपने खाद या उर्वरक जो है इनु असंतुलित उपयोग करेंगे तो इन्हें थी कि नुकसान थाएगा। वधारा नाइट्रोजन अगर आपने फसल में आल देंगे तो फसल देखागा तो हरी भरी पर ई धीरे धीरे ही पड़वा लगेगा और इन वजह से कि फसल नो अपने जो उत्पादन है ये कम थी जाएगा। पोटाश की जो कमी है इन्हें थे कि पौधे ही कमजोर थाए ने इनमें रोग है ये जल्दी पकड़ी ले है। वधारे रासायनिक खाद नाखवाते कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है ये भी धीरे धीरे कम थाती जाएगा और वधार खातर नाखी ज रहा तो अपनी जो खेती ने लागत है इनमें भी बढ़ोतरी थी जा तो खेती ने लागत बढ़ी जाए। अटले कुल मलाई ने अगर आपने उर्वरक या खातर नो संतुलित उपयोग करेंगा तो आपने आ सब जो नुकसान है इन्हें थेगा और आना जो लाभ है ये आपने मिलेगा। और लाभ ने अगर आपने बात करो तो आना थे कि यही फसल ने पूर्व पोषण मिलेगा इन वजह थे कि आपने उत्पादन है ये ठीक मिलेगा। खेतर की जो मिट्टी है इनकी सेहत है ये बनेली रहेगा। लागत भी कम आवेगा तो इन्हें थी कि आपने लाभ है मुनाफो है ये वधारा मिलेगा। आज ये पर्यावरण है या जे भूजल है भूमिगत जे जल है ये वधारे खातर ने दवाई आपने नहीं नाखेंगा तो ये प्रदूषित नहीं थागा। तो आ जे रासायनिक खाद है इन अगर आप संतुलित उपयोग करेंगा तो अपने लाभ मिलेगा। और किसान भाई अगर अपने रासायनिक खातर ने खाद ने हाथे हाथे जैविक खाद है जम क्या गोबर नो खाद है वर्मी कंपोस्ट है हरी खाद है आनो भी अपने उपयोग खेतर में करो जुए आने थे कि जे मिट्टी में से सूक्ष्म जीव है इनकी संख्या बढ़े जे कि ही आपने एक तरह की आपने फसल बल्ले उपयोगी रहे और खेतर में आ लंबा समय तक इन्हें उपजाऊ बनावा में भी सहायक बने हैं। अटले हमेशा सही मात्रा में सही समय ऊपर ने सही तरीका थे कि इस खातर आपने खेतर में आलवुज हुए आ सही आपने आज में खेती नो विज्ञान है आना महत्व ने आपने समझ है और उर्वरक नो संतुलित उपयोग करवो है। सब जाने किसान भाई के मानव शरीर हो पशु हो खेतर ने मिट्टी हो या काई भी एवी चीज जिनमें असंतुलित मात्रा में कई चीज उपयोग करे कोई भी तेनो नुकसान तो था है। अति थी जा ये हमेशा नुकसान करे चाहे मनुष्य नो स्वास्थ्य हो आपकी फसल नो स्वास्थ्य हो या आपने पशुधन नो स्वास्थ्य हो तो आनंद सबने स्वास्थ्य ने बनाई रखवा बल्ले हर चीज नो संतुलित उपयोग करवो आवश्यक है। और एनी वजह थी कि आपने अपने खेतर में रासायनिक जे खाद उर्वरक है एनो सही उपयोग करवो आवड़ जुए आने वजह थी कि आपने अच्छे उत्पादन मिलेगा अच्छी पैदावार मिलेगा और जो उत्पादन है इन्हें गुणवत्ता भी अच्छी रहेगा तो इन्हें वजह थी कि आपने ना बाजार में भाव अच्छा मिलेगा। तो आई सब बातों ने आपने ध्यान रखी ने संतुलित तरीका थे कि आपने उर्वरक नो छिड़काव खेतर में करो जुए।

0: तो किसान भाई आ तो रही बात उर्वरक खाद नहीं संतुलित उपयोग नहीं बात अगाड़ी भी करेंगे, पर आज नो जो समय है ये पूरो थी रो है। काले कई नवी जानकारी लेने आपड़े फिर मल तार तक आ पालो आज मांझी भाई ने आज्ञा ए आवजू राम राम राम राम।
1: अभी हम खेती की बात सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे उदय सिंह नामोर और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत उदय सिंह नामोर और साथियों के गाए भागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आप सुनेंगे प्रभा नगावत से वार्ता। वार्ता का शीर्षक है संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व।
1: यह भारत भूमि धन्य है जहाँ मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। यानी आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के विषय में। संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ व सुसंपन्न है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समक्ष उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव उसका विविध संसार के ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता किसी दृष्टि का अविषय नहीं है। महाविदों ने व संस्कृत के भाषा ऋषियों ने इसे ईश्वर की देन बताया है। संस्कृत में 1700 धातु, 70 प्रत्यय और 80 उपसर्ग है। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या 27,20,000 होती है। यदि दो शब्दों से बने सामासिक शब्दों को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या लगभग 770 करोड़ हो जाती है। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। इसके सकारात्मक तरंगों के कारण ही ज्यादातर श्लोक संस्कृत में है। भारत से संस्कृत से लोगों का जुड़ाव खत्म हो रहा है, लेकिन विदेश में इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है। गति के होने से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द परिलक्षित होते हैं और शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। आज अनेकों भाषाएं प्रचलित है किंतु इनका काल लिखित है, कोई 100 वर्ष, कोई 500 तो कोई 1000 वर्ष। साथ ही इन भिन्न भिन्न भाषाओं का जब भी जन्म हुआ उस समय अन्य भाषाओं का अस्तित्व था। अतः पूर्व से ही भाषा का ज्ञान होने के कारण एक नई भाषा को जन्म देना अधिक कठिन कार्य नहीं है। किंतु फिर भी साधारण मनुष्य द्वारा साधारण रीति से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के निर्माण की गई सभी भाषाओं में भाषागत दोष दिखते हैं। ये सभी भाषाएं पूर्ण शुद्धता, स्पष्टता एवं वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे की बातों को समझने के साधन मात्र के उद्देश्य से बिना किसी सूक्ष्म वैज्ञानिकी चिंतन के बनाई गई। किंतु मनुष्य उत्पत्ति के आरंभिक काल में धरती पर किसी भी भाषा का अस्तित्व न था, तो सोचिए किस प्रकार भाषा का निर्माण संभव हुआ होगा। शब्दों का आधार ध्वनि है, धीरे धीरे स्वाभाविक है। शब्द भी थे किंतु व्यक्तित्व नहीं हुए थे, अर्थात उनका ज्ञान नहीं था। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन की आत्मिक एवं लौकिक उन्नति व विकास में शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीर आकलन किया। उन्होंने एकात्र चित्त हो ध्यान पूर्वक बार बार मुख से अलग प्रकार की ध्वनियां उच्चारित की और ये जानने में प्रयासत रहे कि मुख विवर के किस सूक्ष्म अंग से कैसे और कहां से ध्वनि जन्म ले रही है। तत्पश्चात निरंतर अथक प्रयासों के फल स्वरूप उन्होंने परिपूर्ण, पूर्ण शुद्ध, स्पष्ट एवं अनुमान क्षमता से युक्त ध्वनियों को ही भाषा के रूप में चुना। सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती है और सूर्य के चारों ओर से 9 भिन्न भिन्न रश्मियों के निकलने से कुल निकली 36 रश्मियों की ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने और इन 36 रश्मियों के पृथ्वी के 8 वसुओं से टकराने से 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है, जिनमें संस्कृत के 72 व्यंजन बने। इस प्रकार ब्रह्मांड से निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड के

ध्वनियों के रहस्य का ज्ञान वेदों से मिलता है। इन ध्वनियों को नासा ने भी स्वीकार किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनि को उन ध्वनियों का ज्ञान था और उन्हीं ध्वनियों के आधार पर उन्होंने पूर्ण शुद्ध भाषा को अभिव्यक्त किया। अतः प्राचीनतम आर्य भाषा जो ब्रह्मांडीय संगीत थी उसका नाम संस्कृत पड़ा। संस्कृत संत व कृत अर्थात श्वासों से निर्मित अथवा सांसों से बनी एवं स्वयं से कृत जो कि ऋषियों के ध्यान लगाने व परस्पर संपर्क से अभिव्यक्ति हुई। कालांतर में पाणिनि ने नियमित व्याकरण के द्वारा संस्कृत को परिष्कृत एवं सर्वमय प्रयोग में आने योग्य रूप प्रदान किया। पाणिनीय व्याकरण ही संस्कृत का प्राचीनतम व सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। दिव्य व देवीय गुणों से युक्त अति परिष्कृत परमार्जित सर्वाधिक व्यवस्थित अलंकृत पूर्ण समृद्धि व संपन्न देववाणी संस्कृत मनुष्य की आत्मचिंतन को जागृत करने वाली सात्विकता में वृद्धि बुद्धि व आत्मबल प्रदान करने वाली और संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अन्य सभी भाषाओं में त्रुटि होती है पर इस भाषा में कोई त्रुटि नहीं है। इसके उच्चारण की शुद्धता को इतना सुरक्षित रखा गया कि सहस्त्र वर्षों से लेकर आज तक वैदिक मंत्रों की ध्वनियों व मात्राओं में कोई पाठ भेद नहीं हुआ। संस्कृत की सर्वोत्तम शब्द विन्यास युक्ति के गणित के कंप्यूटर आदि के स्तर पर नासा व अन्य वैज्ञानिक व भाषाविद संस्थाओं ने भी इस भाषा को एकमात्र वैज्ञानिक भाषा मानते हुए उसका अध्ययन आरंभ कराया। देश विदेश में हुए कई शोध के अनुसार संस्कृत मस्तिष्क को काफी तीव्र करती है, जिससे अन्य भावना व विषय को समझने में काफी सरलता होती है। देवनागिरी लिपि के प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण व्यक्ति के किसी न किसी ऊर्जा चक्र को सक्रिय करके व्यक्ति की चेतना के स्तर में अभिवृद्धि करता है। वस्तुतः संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द इस प्रकार से संरचित किया गया है कि उसके स्वर एवं व्यंजनों के मिश्रण का उच्चारण करने पर वह हमारे विशिष्ट ऊर्जा चक्र को प्रभावित करे। प्रत्येक शब्द स्वर एवं व्यंजनों की विशिष्ट संरचना है जिसका प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को शुरू से उच्चारण के साथ साथ बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है जिसका दुरुपयोग एवं सदुपयोग स्वयं पर एवं दूसरे पर प्रभाव डालता है। शब्दों के प्रयोग से ही व्यक्ति का स्वभाव आचरण व्यवहार निर्धारित होता है। उदाहरणार्थ कृष्ण का उच्चारण मणिपूरक चक्र नाभि चक्र को सक्रिय करता है। सो हम उच्चारण दोनों अनाहत एवं मणिपूरक चक्रों को सक्रिय करते हैं। वैदिक मंत्रों को हमारे ऋषियों ने इसी आधार पर विकसित किया है। प्रत्येक मंत्र स्वर एवं व्यंजनों की एक विशिष्ट संरचना है। इसका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुद्ध उच्चारण ऊर्जा चक्र को सक्रिय करने के साथ साथ मस्तिष्क की चेतना को उच्चकृत करता है। संस्कृत भाषा की सार्थकता इस तरह स्वयं सिद्ध है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सातों स्वर हमें शरीर के सातों ऊर्जा चक्र में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक का उच्चारण संबंधित ऊर्जा चक्र को क्रियाशील करता है। शास्त्रीय राग इस प्रकार से विकसित किए गए हैं जिससे उनका उच्चारण गायन विशिष्ट ऊर्जा चक्र को सक्रिय करके चेतना के स्तर को उच्चकृत करे। प्रत्येक राग मनुष्य की चेतना को विशिष्ट प्रकार से उच्चकृत करने का सूत्र है। इनका सही अभ्यास व्यक्ति को असीमित ऊर्जावान बना देता है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि महर्षि कात्यायनी महर्षि पतंजलि है। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को भाव में समाविष्ट किया है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य कवि भाषा भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं।
यह हमारे लिए माता के सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, अखंडता तथा

0: संस्कृति एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है।
1: अभी आप वातायन के अंतर्गत प्रभा नगावत से वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का शीर्षक था संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

लीजिए श्रोताओं, हाजिर हैं हम कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के लेकर। हमजोली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में आनंद बख्शी के बोल, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: दिल से क्या कहा,
1: क्या बता,
0: दिल ने दिल से क्या कहा,
1: ये क्या बता,
0: जरा सा मेरे पास आ।

0: के ये साए होश उड़ा जाए पाँव डगमगाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना।
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर का जन्मदिन उन्हें ढेरों शुभकामनाओं के साथ। आप सुन रहे हैं उन्हीं पर फिल्माए गीत। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के।

रफी और लता मंगेशकर के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है कंटेम्प्रेरी है वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
3: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है ये जो दीवारें खड़ी करना है इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: महल हो

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में साहिल लुधियानवी के बोल और संगीतबद्ध गीत रवि द्वारा फिल्म एक महल हो सपनों का से आप सुन रहे थे और कार्यक्रम हम हिराही प्यार के में अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैरा ही प्यार के। अगला गीत विदाई फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम विदाई।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सुनिए,
4: कहिए,
5: सुनिए एक खुशखबरी,
4: कहिए ना।
5: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
6: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
7: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूँ।
6: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
7: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
8: सखी सहेली।
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। जाने अनजाने इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, हंसी जयपुरी के बोल तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं रखवाला फिल्म का, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और ये गीत है हम है राही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी और भारत के वेलवन सेंथिलकुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
4: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
4: भारत ने अमेरिका के साथ जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जैवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है, 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि

0: 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-919888 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
3: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के

0: अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टि

0: वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिन्दुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके नियम हमें कोई नहीं सिखाता, फिर भी हम उन्हें निभाते चले जाते हैं। कभी जीत हमारी होती है, कभी हार किसी और की। कभी हम अपनी चाल चलते हैं और कभी सामने वाला अपनी चाल चल जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है और अगले ही पल पूरा हिसाब बदल जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में हम कभी खिलाड़ी होते हैं, कभी दर्शक और कभी बिना जाने ही किसी और की चाल का हिस्सा बन जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक एक चीज हमारे साथ लगातार चलती आई है, जिसका मैदान बदलता रहा, साथी बदलते रहे, नियम बदलते रहे, लेकिन उसका रोमांच कभी खत्म नहीं हुआ, और वो चीज है खेल। दोस्तों, सुनने में कितना छोटा सा शब्द है ना, लेकिन इस एक शब्द में हमारी जिंदगी के कितने रंग छुपे हुए हैं। कभी हम मैदान में खेलते हैं, कभी रिश्तों में, कभी हालातों के साथ, और कभी कभी तो जिंदगी खुद हमारे साथ ऐसा खेल खेल जाती है जिसका अगला दांव हमें पता ही नहीं होता। बचपन में खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेले जाते थे, बस खेलने के लिए खेले जाते थे। हार जाते तो थोड़ी देर उदास होते, फिर वही खेल दोबारा शुरू कर देते। लेकिन शायद बड़े होकर हम यही बात भूल जाते हैं कि हर खेल का मकसद जीतना नहीं होता, कुछ खेल हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भी होते हैं।

दोस्तों हर खेल के अपने नियम होते हैं। क्रिकेट के नियम फुटबॉल में नहीं चल सकते, शतरंज की चालें कबड्डी में नहीं चली जा सकती, क्योंकि हर खेल अपने नियमों के हिसाब से खेला जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। यहां भी हर इंसान का अपना खेल है, अपना मैदान है और अपने नियम है। जो बात किसी एक की जिंदगी में सही है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे की जिंदगी में भी सही हो। कोई जोखिम लेकर आगे बढ़ता है तो कोई संभल कर चलना पसंद करता है। इसलिए शायद जिंदगी में दूसरों के नियमों से अपना खेल खेलना सबसे बड़ी गलती है। हमें अपना मैदान समझना होगा, अपनी चाल पहचाननी होगी, क्योंकि जिंदगी का खेल किसी और के नियम से नहीं अपने नियम से समझना जरूरी है। बचपन में खेल के नियम बहुत आसान होते थे। कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन गेंद डालेगा, किसकी बारी है, बस इतना ही तय करना होता था। हारने पर भी दोस्ती नहीं टूटती थी और जीतने पर भी कोई रिश्ता बड़ा नहीं हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिंदगी के खेल के नियम बदलते चले गए। यहां हर कोई अपनी जीत चाहता है, कोई पीछे रहना नहीं चाहता। कभी करियर की दौड़ है, कभी रिश्तों में खुद को साबित करने की कोशिश, तो कभी दूसरों से आगे निकलने की होड़। और इसी भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जिंदगी कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें सबसे पहले पहुंचना जरूरी है। जरूरी सिर्फ यह है कि हम जिस रास्ते पर चलें वहां हम खुद को ना खोएं।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
0: और ये
1: मेरी गुड़िया की ना।
0: दादी
1: हाँ
0: आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो
0: क्या
2: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: दोस्तों हार और जीत किसी भी खेल की सच्चाई है। हर बार एक ही खिलाड़ी नहीं जीत सकता और हर बार हार भी किसी एक की नहीं होती। ठीक वैसे ही प्रकृति और जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी धूप तेज होती है तो कभी बादल घिराते हैं। कभी रास्ते आसान लगने लगते हैं तो कभी कदम कदम पर मुश्किलें सामने खड़ी होती है। लेकिन जैसे हर सूर्यास्त के बाद सुबह का आना तय है वैसे ही हर अंधेरी शाम के बाद नई रोशनी का खिलना भी तय है। इसलिए हार को अंत समझना ठीक नहीं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अगली सुबह की किरणों का इंतजार करते हुए खेलते रहना ना छोड़ें। खेल की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि उसमें हार की भी अपनी जगह होती है। हर बार हम जीत नहीं सकते और शायद हर बार जीतना जरूरी भी नहीं है। कभी हार हमें हमारी कमजोरी दिखाता है तो कभी हमारी गलती समझाता है और कभी यह एहसास दिलाता है कि जिसे हम अपनी मंजिल समझ रहे थे शायद वह अभी हमारे लिए नहीं बनी। मैदान में गिरकर उठना आसान होता है क्योंकि वहां हमें पता होता है कि अगला मौका फिर मिलेगा। लेकिन जिंदगी में भी अगर हम अपनी हार को आखिरी फैसला मानने की बजाय एक और मौका समझ लें तो शायद हमारी मुश्किलें थोड़ी आसान लगने लगेंगी। आखिर खेल तो वही है जिसमें दांव बदलते रहते हैं खिलाड़ी बदलते रहते हैं लेकिन खेलते रहने का हौसला बना रहना चाहिए।

दोस्तों, खेल हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं कि हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका होती है। कोई बल्लेबाज होता है, कोई गेंदबाज, कोई कप्तान और कोई ऐसा खिलाड़ी जो शायद पूरी टीम में सबसे ज्यादा दिखाई भी ना दे, लेकिन सही समय आने पर उसकी एक छोटी सी कोशिश पूरा मैच बदल देती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरे हमसे आगे निकल गए, उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा खेल, हमारी पारी और हमारा मैदान अलग है। किसी और की जिंदगी देखकर अपनी कीमत तय करना वैसा ही है जैसे किसी दूसरे खिलाड़ी के स्कोर से अपने खेल को नापना। जरूरी यह नहीं कि हम किसी और से बेहतर खेलें, जरूरी यह है कि हम अपनी पारी ईमानदारी से खेलें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर भी ले आती है जहां हमें लगने लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, जैसे मैच हमारे हाथ से निकल चुका हो। लेकिन खेल का रोमांच भी तो यहीं से शुरू होता है। आखिरी गेंद तक कुछ भी तय नहीं होता। एक छोटी सी कोशिश, एक सही फैसला और कभी कभी बस थोड़ा सा धैर्य पूरा खेल बदल सकता है। इसलिए बुरे वक्त को देखकर यह मत सोचिए कि कहानी खत्म हो गई। हो सकता है अभी आपकी पारी बाकी हो। हो सकता है जिस जगह आपको अपनी हार दिखाई दे रही हो वहीं से आपकी वापसी

दोस्तों, खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं, जीना सिखाते हैं। कभी पूरे जोश से अपनी बारी का इंतजार करना, कभी सही समय पर अपनी चाल चलना, कभी हार को स्वीकार करना और कभी आखिरी पल तक उम्मीद बनाए रखना। जिंदगी में भी हर दिन एक नया दांव लेकर आता है और हमें हर बार उसके लिए तैयार रहना होता है। बस इतना याद रहे कि खेल चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैदान छोड़कर जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए परिस्थितियां जैसी भी हो, अपने चेहरे पर विश्वास रखिए, दिल में उम्मीद रखिए और अपनी पारी पूरी शिद्दत से खेलिए, क्योंकि अंत में मायने यह नहीं रखता कि हमने कितनी बाजियां जीती, मायने यह रखता है कि हमें जो खेल मिला उसे हमने कितनी खूबसूरती से खेला। इसी के साथ इजाजत दीजिए ख्याति गांधी को कार्यक्रम कुछ देर से यहीं समाप्त करने की। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 8:45

मिनट हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रेणुका माथुर और साथियों के गाए राजस्थानी गीत।

0: रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत रेणुका माथुर और साथियों के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं कोई भी

0: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण।
1: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ताशकंद पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान सहित दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलने के लिए परिवर्तन योजना लागू की गई है। इसके तहत एनसीआर जिलों में पंजीकृत BS4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को BS6 या उससे बेहतर मानकों वाले वाहनों से बदलने का प्रावधान है। इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से भी बदला जा सकता है। इस योजना पर 9,585 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पात्र वाहन मालिकों को 5 साल तक वाहन ऋण पर ब्याज में 5% की बचत होगी। साथ ही 10 वर्ष तक रोड टैक्स तथा पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत पर कम से कम 8% की छूट भी दी जाएगी। राजस्थान सहित चारों संबंधित राज्यों ने इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। योजना के तहत 27 अगस्त तक 1,300 से अधिक लाभार्थी पंजीकरण करा चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति की प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। 16 अगस्त को समाजशास्त्र, वाणिज्य और अंग्रेजी के विषयों की उत्तर कुंजी जारी करने के बाद तीनों परीक्षाएं इस वर्ष सितंबर में फिर से आयोजित करने की घोषणा की गई थी। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। जोधपुर में देश का पहला पैसेंजर ड्रोन तैयार किया जा रहा है। निजी ड्रोन टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित की जा रही इस परियोजना को राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान साझेदारी के तहत नीतिगत और प्रशासनिक सहयोग दिया है। ड्रोन की तकनीक के विकास में IIT जोधपुर भी सहयोग कर रहा है। जोधपुर स्थित अत्याधुनिक निजी प्रयोगशाला में ड्रोन के डिजाइन और अनुसंधान का काम तेजी से चल रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
2: ये पैसेंजर ड्रोन 150 से 200 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम होगा, जिससे 1 से 2 यात्री सुरक्षित एयर टैक्सी का सफर कर सकेंगे। इसका प्रोटोटाइप अगले 6 से 8 महीने में तैयार करने का लक्ष्य है। यात्री ड्रोन के अलावा लैब में विशेष स्टेल्थ तकनीक वाले ऐसे ड्रोन भी बन रहे हैं जो घने बादलों में छिपे रहकर निगरानी और रक्षा अभियानों को अंजाम दे सकेंगे। निजी नवाचार और सरकारी सहयोग से इस मॉडल से न केवल एविएशन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय इंजीनियरिंग छात्रों को ड्रोन निर्माण और डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष वी श्रीनिवास ने वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 से मुलाकात की। इस अवसर पर IIAS के 520 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने

0: पोप के विशेष आशीर्वाद कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में पोप ने कहा कि डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव कल्याण और जनसेवा के लिए होना चाहिए। पोप ने राजस्थान और भारत के विकास और प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव पिछले साल जून महीने में IIAS के पहले भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रीय खेल दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर 3 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम खेलेगा भारत जीतेगा भारत रखी गई है। ये अभियान श्रद्धांजलि, खेल और गति के 3 स्तंभों पर आधारित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी अद्भुत खेल प्रतिभा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी युवाओं को प्रेरित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने खेलों को जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, सशक्त और आत्मविश्वासी राजस्थान के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर में कई स्कूलों में कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। पाली में राजकीय बांगर स्टेडियम परिसर में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। पाली के देसूरी नाल घाट सेक्शन में सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम ने घाट के खतरनाक और तीखे मोड़ों पर आधुनिक रोलर क्रैश बैरियर लगाए हैं। इससे बेकाबू वाहनों को चट्टानों से टकराने या गहरी खाइयों में गिरने से बचाने में मदद मिलेगी। देसूरी नाल अपने घुमावदार मोड़ों और ढलान के कारण लंबे समय से दुर्घटना संभावित क्षेत्र माना जाता रहा है। नए सुरक्षा इंतजामों से यहां सड़क हादसों में कमी आने और यातायात को अधिक सुरक्षित बनाने की उम्मीद है। डीडवाना कुचामन जिले के पर्वतसर में राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेले की कल से शुरुआत हुई। मेले में नागौरी नस्ल के बैल, ऊंट और घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए अन्य राज्यों से व्यापारी पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से मेले में 2 दिन की पशु प्रतियोगिताएं होंगी।
1: SDM कुसुमलता चौहान व मेला अधिकारी डॉक्टर बागुल दीपक शंकर ने झंडारोहण किया। मेले में शाम तक 644 पशु पहुंच गए। नागौरी नस्ल के बैलों के साथ ऊंट, घोड़े व भैंसों की खरीद फरोख्त के लिए राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से व्यापारी पहुंचे हैं। मेले में 2 दिन पशु प्रतियोगिताएं होंगी और तेजाजी मंदिर के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: उधर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में भर रहे मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर दिल्ली मंडोर एक्सप्रेस अब अमृत भारत के नए रैक के साथ संचालित होगी। इसके लिए रेलवे अगले महीने नया रैक जोधपुर भेजेगा। इस नए रैक में एसी और नॉन एसी कोच के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंडोर एक्सप्रेस पहली ऐसी अमृत भारत ट्रेन होगी जिसमें डिजिटल डिस्प्ले के जरिए यात्रियों को ट्रेन की गति और अगले स्टेशन की जानकारी मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट के 84 विषयों के परिणाम घोषित। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 से मुलाकात की। पोप ने राजस्थान और भारत के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। और राष्ट्रीय खेल दिवस आज। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहदी हसन और तरन्नुम नास की गाई गजलें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत मेहदी हसन और तरन्नुम नाज की गाई गजलें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

0: गुजर गए।
1: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत मेहदी हसन और तरन्नुम नास की गाई गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 9:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सुदर्शना कोमल और अद्भुत अभिनेत्री की।
1: सारे शहर में आप सा को

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्यों, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादान है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छी शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें गहरा रंग ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखी, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं कुछ चाहूंगा।
3: लीना, एक अभी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक?
1: घर पर ही थी और कहा थी।
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उनकी गाड़ी में आई नहीं, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे क्या हो गया तुम लोगों को? आज मेरा बर्थडे, मुझे लड़ो।

मीरा चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मेद की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

मन का मीट की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

पे जो ढाए कसम लगे उसको मेरी जो जाए, सितम मेरे दिल पे जो ढाए कसम लगे उसको मेरी जो जाए।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे बोझा था वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

और शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइम के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो मैंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो आप बोलिए ना ये शम्मी जी के साथ।

0: बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। वो जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाने का। और हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे संख्या इन्होंने जाने जाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्म आए वगैरह। तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे। वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है, ऊंचा जो होता है इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुटी बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग। तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में।

1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

मंचली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: सन 1974 में विदाई फिल्म के साथ ही लीना चंदावरकर ने फिल्म उद्योग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि सिद्धार्थ वांदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: कभी खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि 7वां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी 7वें आसमान पर बैठी हूं। मतलब हद होती है भाई। पता है, एक तो मैं यहाँ पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूँ, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूँ। मुझे मालूम था यहाँ का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो, कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल। अब अगर अगले 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी लो भाई ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब उस

उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के दो चार कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

0: जरा।
1: हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहाँ यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को

छोड़कर आया जा सकता है ना, और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा। पर नहीं, मुझे मालूम है, यही आदत है उसकी। तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका। ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूँ, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है।

आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना, तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हां कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूँ। पर अब और नहीं, मैं यहाँ जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूँ क्या, जो हिलूंगी नहीं। और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना, तो वापस चली जाऊंगी

ये देखो, यह मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरी फेस की शाइनिंग चौपट हो गई और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूँ। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं। और यहाँ नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में PhD कर रखी हो। देखो, बताई दे रही हूँ, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों,

संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़ी ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला, अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था। और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन,

0: उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़-कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।
1: मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यही थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहां रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी, पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा, और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूँ सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते।

होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ ढकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।

से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा, अभी तो कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

पूरे साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलट कर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने थोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहाँ बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस

मेरी इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये

किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूँ। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं, मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूँ। क्या करूँ, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मूड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो, लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकाल कर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्धू मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिर को साइड में रखकर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात, उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी, बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा, अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने कहा। क्या, पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दे। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम, पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर, अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों एक साथ हंसे।

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे, जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो, जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कान

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजने को है, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं अशोक खोसला की गायी गजलें।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई।

0: मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: अभी हम सुगम संगीत के अंतर्गत अशोक खोसला की गायी गजलें सुन रहे हैं।

अभी हम सुगम संगीत के अंतर्गत अशोक खोसला की गाई गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं साथिया फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में। संगीत है ए आर रहमान का।

साथिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में। गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत है प्रीतम का। इस गीत को हमने लिया है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से।

राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार का गीत गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म बस एक पल से। प्रीतम की बनाई धुन पर गीत को आवाज दी है आतिफ असलम ने। गीत के बोल हैं सैयद कादरी के।

आतिफ असलम के गाए इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला गीत मोहित चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम है जब वी मेट। गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का।

0: हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉम्बे से। गीत के बोल थे महबूब के और संगीत था ए आर रहमान का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने

0: सीएनजी की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 92.01 रूपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के ऊपर हवा के ऊपरी स्तर पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बालेश्वर, केंदुझर और मयूरभंज जिलों के लिए आज सुबह तक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: दुबई में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका का सामना आज संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत का पहला मैच कल थाईलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ सदाबहार यादगार नायाब नख्मों से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत में संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला यादगार गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, फिल्म का नाम है

0: रस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार की आवाज में सुनिए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है मेरी जीवन साथी।

कसम उनैनों में भरे काजल घूंघट खोले

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है रामलाल का, फिल्म का नाम है सहरा।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों आनंद बख्शी का लिखा गीत है, आवाज किशोर कुमार की, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजपूत।

आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है रविंद्र जैन का, फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे किशोर कुमार और साथियों की।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है सफर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं विविध भारती का सुरीला सफर कार्यक्रम। लेकर बढ़ाई अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन शब्दों से आप गाने चुनें, तो वो इबारत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पढ़कर सुना रहे हैं। आज यूं ही पुराने पन्ने पलट रही थी, अचानक एक मुड़ा तुड़ा पत्र उंगलियों के बीच ठहर गया। उसके साथ सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां थीं। वक्त ने जिन्हें मुरझा दिया था, मगर उनमें अब भी तुम्हारे प्यार की खुशबू बाकी थी। पत्र खोलते ही जैसे बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी। तुम्हारे शब्दों में वो इंतजार था जो कभी मेरी रातों का साथी हुआ करता था। याद आया कि हमने गुनगुनाया था, रात भर आपकी याद आती रही, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, और तुम्हारा इंतजार और मैं खामोशी ओढ़े चांद को निहारती रहती थी। कितना कुछ चाह कर भी हम एक दूसरे को भूल नहीं सके। तुम मेरे हमदर्द, मेरे हमसफर थे, या शायद ये सब वो तेरे प्यार का एक बहाना था। ना समझ मन को कैसे समझाऊं, आज सूखी पंखुड़ियों को हथेली पर रखकर लगा चांद बदल गया, रात गुजर गई, इंतजार भी बीत गया, मगर तुम्हारी यादों के पत्ते सूख कर भी खुशबू नहीं खोए। तो ये है आज की इबारत, और इसी इबारत में छुपे हैं आज के शब्द, और एक एक शब्द में कई कई गाने छुपे हैं। तो आज जरा आपकी परीक्षा कठिन है, देखिए कि कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं। आज तो हमने क्या किया है कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर आई और आपने जो गाने सुझाए हैं वही गाने हमने ले लिए हैं, और कुछ गाने अपनी ओर से हमने ऐड किए हैं। तो जरा गाने सुझाइए, देखिए हो सकता है आपके और हमारे गाने एक हो जाए। बहरहाल शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्राम का, और ये संगम फिल्म का गाना है। सुनिए और देखिए कि इबारत में ये शब्द आया या नहीं, और कौन सा वाला शब्द है। साथ में बूझिए पहली कि इसमें हीरो हीरोइन कौन है, आसानी से बूझ जाएंगे। दो हीरो हैं, एक हीरोइन है। पत्र कौन लिखता है किसके नाम, जरा ये बताइएगा। किसके नाम पत्र लिखा जाता है, किसकी ओर से, हीरोइन की ओर से पत्र लिखा जाता है, तो किसके लिए लिखती है। संगम फिल्म का गाना ये रहा।

सूरज फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज। हमने पूछा था कि हीरो हीरोइन कौन है और कौन पत्र लिख रहा है। सभी श्रोताओं ने बताया राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं वैजयंती माला के नाम, और एक नायक और है राज कपूर। फिल्म संगम, सही आपने बताया, ये संगम फिल्म का गाना था। सूरज फिल्म का गाना आगे आने वाला है, और आप बता सकते हैं कि सूरज फिल्म का कौन सा गाना इबारत से मैच करेगा, उसमें कौन सा शब्द आता है जो इबारत में है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत हमें कितनी पुरानी यादों के नगर में ले गई, खत या चिट्ठी का तो जैसे युग बीत गया। खत कितनी कहानियां, अनकहे किस्से और जज्बात को अपने में समोए हुए होते हैं। मुझे खत लिखना बेहद पसंद था है, और मुझे खत के जवाब में इंतजार में भी मजा आता था। खत किसी का होता था, बुआ का होता था, जब बच्चे बाहर पढ़ते थे तो उनके खत की राह देख रही होती थी, पर वो रोमांच आजकल मैसेज के रिप्लाई आने पर नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। तो जरा बताइए कि आप में से कौन आज भी पत्र लिखते हैं और किसके लिए।

एक श्रोता ने लिखा है कि गानों की फेहरिस्त लिखिए, पुकार लो तुम्हारा इंतजार और वो तेरे प्यार का गम, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कैसे समझाऊं वगैरह वगैरह। बहुत सारे श्रोताओं ने गानों की लिस्ट भेजी है और सच कहें तो आज हम आपके गानों को ही आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, तेरा खत लेके सनम पाओ कहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे श्रोताओं की पसंद एक है आज। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुरानी किताबों के कभी पन्ने पलटते समय अनायास ही सूखा गुलाब का फूल नजर आने पर उसे कभी फेंकने का मन नहीं होता, आज भी वैसा ही रखा रहता है और बीते हुए पलों की खूबसूरत तस्वीर को बयां करता है। सूखे गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाती नहीं बल्कि महकती हुई आंखों में उतर आते हैं। ये बताइए हमें कि क्या कभी आपने भी पत्र के साथ गुलाब का फूल भेजा था? अगर भेजा है तो वो लम्हा याद कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और हमें गुलाब और कली फूल वाला गाना भी सुझाइए कि कौन कोई ऐसा गाना है जिसमें गुलाब शब्द आता है या कोई फूल के नाम आते हैं, वो भी आप सुझा सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना, माफ कीजिएगा सूरज फिल्म का ये गाना, और बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पढ़ाई के समय जब ये गाना सुनता था, फूल तुम्हें भेजा है खत्म

सुन के भी खत में गुलाब का फूल भेजा था। आज वो दिन आपके द्वारा याद आ गया। एक श्रोता ने लिखा है कि सूरज फिल्म का गाना आपने सरस्वती चंद्र बताया, लेकिन तुरंत आपको हमने बता दिया कि सूरज फिल्म का गाना था, सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना हम आगे सुनवाएंगे। और एक श्रोता ने लिखा है कि नायक सिल्वर जुबली कराकर राजेंद्र कुमार, और बिल्कुल ये जवाब तो सही था बहुत सारे श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में किसी को फूल तो नहीं भेजी, पर एक तितली फूल केसरिया रंग की आती थी, उसे हम अपनी कॉपी में दबा के रखते थे तो उस फूल का कलर सहित छप जाता था, तो चिट्ठियों में भी हम वैसा ही करते थे। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की बात हो गई। तो अब बात तितली की चली है, तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भाग

तो ये भी याद कीजिए कि तितली पकड़ने के पीछे कौन लोग हैं जो भागते थे। क्या तितली पकड़ में आती थी? वैसे तितली पकड़ के हाथ में बिठाना ये ठीक नहीं था, लेकिन बचपन का जो समय होता है सब लोग अपने अपने जमाने में तितली पकड़ने के पीछे भागते थे। पता नहीं क्या उसमें अट्रैक्शन होता है कि पकड़ने की कोशिश की जाती, पकड़ में नहीं आती थी। कितने लोग पकड़ पाए थे जरा बताइएगा हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का दूसरे शहर में स्थानांतरण होने पर हम सखियों को पत्र लिखा करते थे 70 के दशक में। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र शब्द से खत शब्द पर आ गए, इससे गीतों की श्रृंखला भी बदल जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, आप गीतों के बोल लिखते रहिए, हम वो गाने चुन चुन कर सुनवाते रहेंगे आप सभी को। एक श्रोता ने लिखा है कि फूल गुलाब का लाखों हजारों में चेहरा तुम्हारा, क्या बात है। हमने पूछा था कि ऐसा गाना बताइए जिसमें गुलाब शब्द आए। और एक श्रोता ने फूल आहिस्ता फेंक को, फूल बड़े नाजुक होते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत की कुछ पंक्तियां मुकेश जी के गाने की तरफ इशारा कर रही हैं। भाई, एक गायक की ओर कैसे इशारा कर सकती हैं? ये तो इबारत में बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे तो अनगिनत गाने आपको याद आएंगे। अगर याद आ रहे हैं तो जरा लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना। एक और आगे उन्होंने लिखा है कि अब डाकिया डाक नहीं लाता, अब सब संदेश मोबाइल पर आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं इस ईमेल एसएमएस के और व्हाट्सएप के जमाने में भी। तो जरा आप याद कीजिए कि आप क्या आज भी पत्र लिखते हैं। अभी अभी रक्षाबंधन बीता है 28 तारीख को, तो क्या आपने अपने भाई को पत्र लिखा या बहन को? याद कीजिए और हमें बताइए। अब जरा सुनिए ये गाना और बूझिए हीरो हीरोइन का नाम। अगर हीरो हीरोइन नहीं बता सकते तो गायिका का नाम बूझिए, और गायक का नाम भी बूझिए।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और श्रोताओं ने सही बताया कि आवाज मुकेश की थी, लता मंगेशकर की आवाज थी और हीरोइन इसमें नूतन होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों को कहें, उन सूखे हुए फूल और खुशबू उसमें समाहित एक एक पलों की वो यादें जो कभी जिंदगी के हर लम्हे का हिस्सा था, इन पलों के एहसास खत में घुल मिल गए हैं, वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। लगता है ये गाना भी सुनवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर खूबसूरत पल की तस्वीर होना जरूरी तो नहीं, कुछ अनुभूतियां तस्वीरों से अधिक दीर्घजीवी होती हैं, जैसे तुम्हारा गुलाब की खुशबू में भीगा खत जिसे खोलते ही पूरी कायनात में खुशबू फैल जाती है। कितना भी समय बीत जाए खत में लिखी इबारत समय के साथ धुंधली नहीं हुई, न ही स्मृतियों के कोहरे में उनके निशान मिटे। तुम्हारे खत तो मन के किसी एकांत कोने में निश्चल दीपशिखा से सदैव प्रज्वलित रहते हैं। क्या बात है भाई। लेकिन अभी हम आपको कागज के फूल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है कौन है इसमें गायिका और कौन है गीतकार। साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिए।

ही बताया है और गीता दत्त की आवाज थी, ये बहुत कम लोगों ने बताया। गीतकार का नाम भी श्रोताओं ने बूझा नहीं, कैफी आजमी थे। और अब अगली पहली बूझिएगा, फिलहाल आपने क्या लिखा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए, उन्हें हाथ से छूने भर से वो पल वो समय नजर के सामने छा जाते हैं, होठों पर खुशी छा जाती है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि फूल तुम्हें मैं भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, खत में भेजूं दिल ये करता है पर तेरा पता नहीं मालूम। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो किताब में मुरझाए गुलाब आज भी मुरझा के नहीं मुरझाए। और आगे एक श्रोता लिख रहे हैं कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे

बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तितली को पकड़ना नहीं पर हाँ, तितली से प्यार तो है। हमें रंग बिरंगी तितलियों को देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। जब वो फूल पर आकर बैठती हैं, तो हम उसे निहारते जरूर हैं और खुशी इस बात की होती है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश फूलों के पौधे लगाने से इन्हीं नन्ही तितलियों को भोजन मिलता है। बस शायद इसीलिए ही हमें फूलों और पौधों से प्यार है कि वो सदा हमें देते ही हैं खुशी, कभी हमसे कुछ लेते नहीं। क्या बात है भाई। चलिए अब आगे बढ़े और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट। सुनिए और बताइए कौन है कलाकार, कौन हीरो, कौन हीरोइन। चाहे तो आप गीतकार का नाम भी पूछ सकते हैं, संगीतकार का नाम भी। फिल्म पेइंग गेस्ट।

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत। फटाफट श्रोताओं ने जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया कि इसमें देव आनंद और नूतन होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि मेरी लिस्ट का तीसरा गाना बच गया है। और एक श्रोता ने कहा कि अरे वाह, आज तो मेरे सारे गाने चुने हुए आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है कि आप ही के लिखे हुए गाने हम

सुनवा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सारे गाने आप इबारत से चुन रहे हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं वो हमसे मैच कर रहे हैं। हम जैसे ही सोच रहे हैं कि ये गाना अगर आप सुझाएं तो हम वो बजवाएं और तब तक आपकी टिप्पणियां आ जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि हमदम शब्द से गाना सुझाइए, अभी तक हमें बहुत सारे गाने नहीं मिले बहुत सारे श्रोताओं की ओर से, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब जिस शब्द से आपकी ओर से गाने आएंगे हम वो सुनवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने खुशबू और देखने पर गाने लिखे हैं, तो खामोशी फिल्म का गाना हमें मिला है, बहुत सारे श्रोताओं की ओर से वही गाना सुनवाएंगे। लेकिन सवाल भी है इसमें, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह भाई आज तो हमारे गाने सुनवाए जा रहे हैं, भाई क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी छुटकी तो तितलियां पकड़ने में बहुत दक्ष है, तितलियां पकड़कर खिड़की की जाली पर बिठा देती थी, किसी को उड़ाने नहीं देती, फिर स्कूल चली जाती और माँ बाद में उनको बाहर उड़ा देती। एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत रंग बिरंगी तितली के पीछे बचपन में बारिश के मौसम में भागते थे पर कभी पकड़ नहीं पाए, आज भी उड़ती तितलियां अच्छी लगती हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा, हमारी एक श्रोता ने लिखा था, बाकी ये नहीं बताया कि तितली पकड़कर किसी ने ऐसा प्रयोग किया कि कॉपी पर बिठा दी और उसका कलर आ गया, ऐसा किसी ने किया है क्या? हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन कौन है अपने बचपन को समझा सके जो तितली के पीछे ना भागे। एक श्रोता ने लिखा है कि एक खास बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, मेरे 5 साल के पौत्र को एक डायरी में मैं खत लिखती हूँ, उसकी यादगार बातें और हम कैसे उसकी परवरिश करते हैं, उसकी प्यारी निर्दोष बातें वगैरह। मैंने मेरे बेटे को कहा कि जब वो समझदार हो जाए तो उसे ये पढ़ने देना, और फोटो तो मोबाइल में मिल जाएगी। बहरहाल अच्छी बात है ये, तो आप में से कौन लोग हैं जो अपने बच्चे के नटखट बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं, सजोते हैं, अपने बच्चे नाती पोते के बारे में लिखा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लिखिए और हमें बताइए। फिलहाल खामोशी फिल्म का गाना आपको पूछना है, गीतकार और संगीतकार का नाम। हमदम शब्द से गाना सुझाइए, वही गाना हम सुनवाएंगे।

खामोशी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल थे हेमंत कुमार का संगीत था। और ये सवाल हमारी ओर से था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। जरा ये बताइए कि इसी फिल्म का एक गाना और है जो हमारी इबारत में वो शब्द आता है, कौन सा वो शब्द है जो हमारी इबारत में शामिल है और इसी फिल्म का गाना है। देखते हैं कौन लोग बूझ पाते हैं। आसान पहेलियां तो बहुत लोग बूझ लेते हैं, हो सकता है ये पहेली भी कुछ लोगों के लिए बड़ी आसान हो। एक श्रोता ने कई श्रोताओं ने हमदम शब्द से कई गाने सुझाए हैं, लेकिन हमें और भी इंतजार है। कुछ और गाने सुझाइए जो हमारे गाने से मैच कर जाए, तब हम सुनवाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत इन पन्नों के लिए कहें, उन सूखे हुए फूल और समाहित एक एक पलों की वो यादें ताजा हो रही हैं जो हम लिखा करते थे बचपन में। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में और अपनी किताब में बहुत बार गुलाब का फूल रखा क्योंकि हमें फूल बहुत पसंद है, पर क्यों ऐसा होता है कि जो चीज बहुत पसंद है वही नहीं मिलती। बहुत बार अब देखो ना हमारे घर गुलाब उतने अच्छे से लग नहीं पाते, बहुत बार लगाया, कभी गुड़हल में इतने फूल रोज खिलते हैं पर वो भी कई रंग के। कहा जाता है कि गुलाब बहुत मुश्किल से लगता है और लगता है तो जल्दी से मुरझा जाता है। गुलाब की परवरिश के लिए आप कहीं खोजबीन कर लीजिए, किसी जानकार से पूछ लीजिए, माली से पूछ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पीले रंग की तितली पकड़कर किताब में रख दिया करते थे, उसका रंग कॉपी पर आ जाता था, लेकिन आज उस बात का दुख होता है। बिल्कुल, अगर तितली पकड़कर उसकी जान ले लेते हैं तो कितनी दुखद बात है ना, वो तितली का भी एक पूरा परिवार होता होगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनवाते हैं ये गाना। क्या आपने ये गाना सुनने के लिए सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं, बताइए। गीतकार और संगीतकार का नाम। खामोशी फिल्म का दूसरा गाना जो हमारे इबारत में जो शब्द है वो भी बूझिए।

हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, राजेंद्र कृष्ण और कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओं ने जवाब सही दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। फिल्म थी ब्लैकमेल। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बड़ी बहन जब 10 से 11 साल की थी तब हम लोग बासंता गांव में थे और मेरा और संगीतकार जयकिशन जी का जन्म स्थान, तब वहां तितलियां बहुत आती थी, उन्हें पकड़ती भी थी और बाद में कुछ सेकंड्स के बाद छोड़ देती थी। ये अच्छी बात है, पकड़ा तो उसे छोड़ भी दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत इन पन्नों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे श्रोता इबारत से जुड़ी हुई अपनी बात लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था हमदम शब्द से कौन सा गाना याद आ रहा है। भाई अनेक अनगिनत गाने लोगों ने सुझाए, मेरे सनम फिल्म का गाना सुझाया है श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में यादें ताजा कर दी आपने, प्रेम पत्र जो इतना संभाल कर रखा था दशकों बाद मिला, पुराना प्रेम फिर जागृत हो गया जो समय की परत में पीछे छूट गया, जिसमें सूखा गुलाब अपनी खुशबू समेटे दबा था। जो गाने चुने हैं वो है रात भर आपकी याद आती रही, मेरी सांसों को जो महका रही, कैसे समझाऊं। भाई ये सारे गाने हम भी सोच रहे हैं लेकिन अब क्या करें, समय तो एक घंटे का है, इसमें कौन कौन से गाने शामिल करें। अब हमदम शब्द से जो गाने हमारे श्रोताओं ने चुने हैं उनमें से

हमने खामोशी फिल्म का गाना एक सुनवाया था और पूछा था कि उसमें कौन सा एक गाना और है जो हमारे इबारत में वो शब्द शामिल है। सभी श्रोताओं ने लिख डाला, तुम्हारा इंतजार पुकार लो, तुम्हारा इंतजार, बिल्कुल सही लिखा है। और एक नहीं कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और ये जो गाना अभी हमने आपको सुनवाया, फिर वही दिल लाए हूं फिल्म का नाम था, हालांकि हमदम शब्द से बहुत सारे गाने आए हमारे श्रोताओं की ओर से। इसमें हीरो हीरोइन जॉय मुखर्जी और आशा पारिख, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र गुलाब तितलियों शानदार इबारत पर आज सुरीला सफर, शानदार प्रस्तुति और शानदार आपकी टिप्पणियां हमें प्रभावित कर रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि कंक्रीट के इन जंगलों में ढूंढती हैं वो बाग बगीचे, उड़ती हैं मासूम तितलियां, काले धुएं शोर के नीचे, मशीनी इस दौर में भी वो पंखों में रंग सजाती हैं, खो न जाए प्रकृति का सौंदर्य, बस यही याद दिलाती है। सुनिए अब अगला गाना फिल्म गमन से, आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार। आपको गायिका का नाम बताना है और गीतकार का नाम बताना है। फिल्म गमन।

इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आपको पूछना है गायिका का नाम, गीतकार का नाम और अगला गाना कौन सा होना चाहिए। जरा उस गाने के बोल लिखिए फटाफट, ताकि हम वही गाना सुनवा सके जो आप सुनना चाहते हैं।

गमन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था गायिका का नाम और गीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, गायिका का नाम भी और गीतकार का नाम भी। छाया गांगुली की आवाज थी, गमन फिल्म का नाम था और गीतकार मखदूम मोहिउद्दीन, संगीतकार जयदेव थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आज बहुत व्यस्त हैं, उसके बावजूद आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और बहुत सारे

श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारे सारे गाने इस प्रोग्राम में शामिल हो गए, लेकिन प्रोग्राम का आखिरी गाना हमने आपसे पूछा था, अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई। बहरहाल हमें लगता है कुछ श्रोताओं ने जो पहले लिखा था, इस गाने का जिक्र किया था, वो गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए और जरा बूझिए फिल्म का नाम क्या है।

पगला कहीं का फिल्म का नाम था और ये हमारा सवाल था, सभी श्रोताओं ने सही बूझा और लता मंगेशकर की आवाज थी। अक्सर आप मोहम्मद रफी की आवाज वाला वर्जन सुनते हैं। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी और हमने प्रोग्राम का आखिरी गाना आपसे पूछा था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी पसंद हमारी पसंद और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारा वाला गाना बज गया बहुत सारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुरीला सफर का ये सुरीला सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना।

0: मिलखा जाग मिलखा अब तू भाग मिलखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी

0: खोली, बाई आँख बंद की बाई आँख खोली। किसने?
1: मैंने।
0: नहीं तो?

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित

0: निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88718, 011-230-88719 और 011-230-12113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +977-9851-31607 +977-970-910-7500 और +979-81-032-6117। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86-18-51-42-84-905। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
4: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रूपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने

0: विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
3: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
2: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई, 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने
1: देखी
0: दोनों।

कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। संगीतकार थे मदन मोहन, फिल्म का नाम था सुहागन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। तर्ज है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली तनू।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। धुन है सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।
5: जैसे राधानी माला जपी शाम

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नखमे। तो अब अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, कार्यक्रम सदाबहार नगमे की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: सागर हैं कोई हमको बांध नहीं पाया। ओए हम मौज में जब भी लहराए सारा जग घर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है सीप ने जिसको अपनाया।
1: होय होय होय होय होय
0: खारा पानी कोई पी न सका एक प्यार।

0: टकराए तो कौन हरा और कौन जीता।
1: ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा।
2: होई होई होई।
1: इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन चाहे गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, फिल्म 14वीं का चांद।

0: अब हो।
1: चौदहवीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा आप सभी श्रोताओं ने। मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता, मनोहर और लक्ष्मण की ओर से फरमाइश आई। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी डोंगर दिवे रमा ताई, डोंगर दिवे राहुल, सीमा ताई, रीमा ताई, इन्होंने पत्र भेजा नागपुर महाराष्ट्र से। और हमें पत्र मिला है सम्राट चौक शिरपुर जैन से, गिरीश देशमुख, अश्विनी और मौसमी की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

सुदूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। संगीत भी किशोर कुमार का था और इस गाने को सुनने के लिए पत्र लिखा मीना तलरेजा ने और इन्होंने पूरी चिट्ठी भी लिखी और भी बातें लिखी है कि बेटियों के साथ ये प्रोग्राम सुना करती हैं। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश भेजी है, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। जिला बी शहर से रणजीत कुमार नामदेव, थोरात रितेश आकाश रश्मि रंजना और गबरू और इनके मित्रगण, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार। और हमारे कुछ श्रोताओं ने और भी पत्र लिखा है। गेवराई शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की ओर से चिट्ठी आई है। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये।

ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, और हम लगातार ढूंढ रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्र, और लगातार कुछ कुछ नए नाम हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे नियमित श्रोताओं के नाम भी शामिल हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई इस गाने के लिए, उनके नाम मैं पहले पढ़कर सुनाता हूं आपको। मछली गोदाम रायगढ़ से ये पत्र मिला है इसी गाने की, इसके अलावा भी कुछ गाने इन्होंने लिखे हैं। भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, लीलू और इनके अन्य मित्र बरगी नगर जबलपुर से चिट्ठी आई है। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश और इनका पूरा परिवार, नरोत्तम गौड़ ने फरमाइश भेजी है लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। और ये जो पत्र है मेरे हाथ में, ये पत्र आया है लक्ष्मीपुरा चौपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से। बहुत सारे नाम लिखे हैं, केसर बाई, हेमंत, योगेश और निजा, सुनीता, विनीता, अभय, अभिषेक, आयुष और इनका पूरा परिवार। और कुछ फरमाइशें और आई हैं। ये फरमाइशी पत्र आया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रगण, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और दोस्तों हम पत्र वो शामिल करते हैं जिसमें बहुत सारे पत्रों में एक ही फिल्म के गाने लिखे होते हैं, लेकिन कई बार हम आपके फरमाइशी पत्र शामिल कर लेते हैं और एक कोई पत्र उठाते हैं जिससे आपको गाना सुनवाते हैं, मतलब एक पत्र में एक फिल्म का नाम लिखा है वो गाना हम आप तक पहुंचाते हैं, बाकी कुछ फरमाइशी पत्र भी शामिल करते हैं। तो अब चलिए सुनते हैं ये फिल्म कन्यादान से।

कन्यादान फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज थी। जो सुनने के लिए पत्र हमें मिले वो ये हैं, अकोला से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनीषा, वेणु संगेकर, रीना, रोहित और इनके मित्रगण, फरमाइश आई अन्य श्रोताओं के भी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केशव जत्तोरानी और इनके साथी महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे ने फरमाइश भेजी वरुण जौलका से, और इसी गाने की फरमाइश आई थी अनिल वचकामले, सुषमा वचकामले सभी और इनके अन्य मित्रगण। श्रोताओं आपसे अनुरोध है कि कृपया जब आप फरमाइश भेजते हैं तो साफ साफ नाम लिखें ताकि आपके नाम सही सही पढ़े जा सके। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत।

मुबारक बेगम की आवाज थी, दत्ताराम का संगीत था, फिल्म थी मोरे मन में तो। फरमाइशी पत्र आए घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके अन्य साथी, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई और इनका पूरा परिवार, कृष्ण नगर टीवी टावर से, और हमारे ये श्रोता है छाया बंछोर, प्रीति, चंद्रकिरण, पोषण बंछोर और इनका पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ पाहरा जिला दुर्ग से। कटारिया कच्छ से पत्र आया है मानतिक राघाणी, डॉक्टर निषाद राघाणी, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश मिली है।

सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में

सुनाए। जीने की राह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। सीवन हरियाणा से सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा और इनके अन्य साथी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल महबूब और इनके अन्य साथी। चलिए अब सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत ये।

0: बॉबी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसे पसंद किया था इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और इनके मित्रगण ने। जवाहरगंज जबलपुर से फरमाइश आई थी जिनेन्द्र जैन, महेंद्र और इनके साथियों की ओर से। और फरमाइश आई थी दिलीप कुमार सेंचुरी, विमला रानी, शिम्पी, सुरेश, अमित और इनके साथियों की ओर से। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हैया बाजार पूर्णिया से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग।
2: इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं।
3: क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो?
2: मेरा सिर।
3: वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा?
2: तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो।
3: देखो थोड़ा, देखो तो।
2: क्या देखूं? क्या देखूं? तुमने देखने लायक है ही क्या?
3: अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है।
2: क्या मेरी कमीज? मैं चाहे जैसा पहनूं।
3: लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा?
2: क्या देख लिया तू?
3: ये तुम्हारी कमीज और क्या?
2: मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे?
3: क्योंकि

0: तुमने ये उल्टी पहनी है।
1: अरे पहनी है ये क्या काम है, तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। ये देखो ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी?
0: ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे?
1: हाँ, और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब। चलो चलो अपनी राय लो, रसोई में जाओ।
0: मेरी समझ में नहीं आता आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है।
1: तुम क्या समझोगी, अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल।
0: हाँ इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं।
1: तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया?
0: अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं।
1: देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो।
0: रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है।
1: क्या कहा तुमने, तुमने मुझे रावण कहा?
0: नहीं नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। इंसान को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही है, अखबार पढ़ेंगे। बताओ बैठ कर अखबार।
1: बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने दो सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा भाई सुनती हो?
0: अरे क्या है
1: ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर।
0: अरे मुझे फुर्सत नहीं है।
1: फुर्सत नहीं क्यों, रसोई में तुम क्या धो रही थी?
0: आज रामू नहीं आया, जानते हैं रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा, तुम्हारा चाचा?
1: क्या कहा तुमने?
0: मैंने कहा बर्तन कौन, तुम्हारा चाचा साफ करेगा।
1: चाचा मर गए चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े खड़े क्या देख रही हो, ये सब सामान वगैरह उठाओ ठीक करो। चाचा जी
0: अरे अचानक तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो?
1: अरे अरे अरे आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना।
0: क्या
1: अब ये सांसें क्या भर रही हो, कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना?
0: अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल ही गई।
1: खाना खाना नहीं भूली। अरे रामू का तो बहाना है।
0: अब करना क्या है वो बोलो।
1: अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए।
0: चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
1: तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो?
0: जी गलती हो गई।
1: बस गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की।
0: तो गलती सुधार लो।
1: गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा।
0: बस रहने दो आप, और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो, जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस
1: साफ सफाई कौन करे, मैं करूँ?
0: तो क्या हुआ, भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए?
1: तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी?
0: तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूँ?
1: इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है।
0: क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा?
1: अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति?
0: पति नहीं वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी
1: इधर। एक सुन लो, कह देता हूँ मैं साफ सफाई नहीं करने वाला।
0: तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रही है मेरे नहीं।
1: हाँ और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए?
0: चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी।
1: ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था।
0: और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी।
1: जी और वो पैंट धोते ही सिकुड़कर हाफ पैंट हो गई थी। ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है?
0: कहाँ जा रहे हो?
1: चाचा जी के लिए थोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ, उन्हें घाट ऊपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो ये तुम्हारी चप्पल।
0: अरे मेरी चप्पल उतारो मेरी चप्पल, कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इस पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग

0: बनाती है, हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है?
1: आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम पर भिखारी है।
2: अब, अब, अब, अब, रहने दो रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं है।
0: तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं।
2: तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं?
3: चप्पल टूट गई है।
2: टूट गई? किसने तोड़ी?
0: अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पांव में आएगी?
2: अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ?
0: होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं कि पूजा के लिए ले जाएगा।
2: उफो, अरे भाई चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने दो, जाने दो, मेरे बूट कहाँ है? बूट लाओ।
0: नो, वो
2: मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ है?
3: अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो। उधर
2: घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए?
0: कल रात तुमने वहाँ उतारे थे।
2: अरे इसके फीते कहाँ गए भाई?
3: ओहो,
0: अब मुझे क्या मालूम,
2: विकल तो थे ना।
0: चूहा ले गया होगा।
2: चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था?
0: क्यों, तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता?
3: तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
2: अब तुमने मुझे दीवाना कहा है?
0: अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई।
2: लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना, मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है?
0: हाँ चाचा, कल मामा, परसों मोसा, दरवाजे पर बोर्ड लगा दो मनोहर लाल की धर्मशाला।
2: मैं कहता हूँ चुप बैठो नहीं तो। अरे भाई इस बूट का फीता कहाँ गया?
0: जाओ बाजार से खरीद ला। जाओ।
2: बाजार कैसे जाऊं, बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है।
3: नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे।
2: रेखा रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं।
0: अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल लेना पड़ती।
2: ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा? बोलो ना, पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है,
0: लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की भीड़ लगती रही तो काम के लिए नौकर टिकेगा कैसे, बोलो?
2: नौकरों के न टिकने का कारण मेहमान नहीं बल्कि तुम्हारी ये पक पक है।
0: अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ?
2: इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है।
0: अरे शादी के पहले तो कहते थे। रेखा तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल चढ़ते हैं।
2: हाँ हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था।
0: अभी भी कहाँ सुधरे हो?
2: शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का।
0: तुम्हें मिठाई लेने जाना है?
2: तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी, जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी? मर गया मर गया, चाचा जी आ गए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर दरवाजा खोलो।
0: देखो मेरे कपड़े कपड़े वपड़े तो ठीक है ना?
2: घर में इतनी सारी अच्छी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है? वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिथड़े पहनने की जरूरत पड़ती है।
0: अरे अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे।
2: मैं जा रहा हूँ।
4: मौसी मौसी मौसी कहाँ हो तुम? मौसी,
2: अरे भाई मैं हूँ, मैं हूँ।
4: मौसी जी आप? थैंक गॉड, मुझे लगा कोई वहाँ नहीं पीछे पड़ा है।
2: भाई ये तो बताओ, ये इस तरह हाथ क्यों रही हो?
4: महाजी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या?
2: वो क्यों?
4: कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है।
2: कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती कहाँ है?
4: मौसी कहाँ है?
2: अरे मगर क्या बात है, मुझे बताओ तो सही।
4: आपसे क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना।
2: अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतनी जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया।
4: मौसी कहाँ है बताइए ना।
2: वो तो भगवान को प्यारी हो गई।
4: मौसा जी ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं, अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी।
2: ओ हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो, मैं समझा मेरी मौसी।
4: लुक मौसा जी, आई डोंट लाइक सच।

0: chances cho. Then you should not marry. Because marriage is a biggest joke.
1: Please, Mausa ji, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए.
0: घर में झगड़ा कर आई हो?
1: मैं घर से नहीं आ रही हूँ.
0: तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा?
1: मैं क्या सबके सब झगड़ा करती रहती हूँ? आपको मैं ऐसी लगती हूँ?
0: देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा. इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं.
1: इनफ, बहुत सुन लिया आपका मैंने.
0: देखो बेटे, ये घर मेरा है.
1: घर मेरी मौसी का है.
0: और तुम्हारी मौसी मेरी है,
1: ऐसा आप समझते हैं?
0: क्या मतलब?
1: आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं. लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है. टाइम हैज चेंज.
0: ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना मुझे नहीं समझ में आया.
1: नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने. मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं.
0: क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो?
1: मौसा जी,
0: तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती?
1: नहीं.
0: लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे, फिरते थे.
1: कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या?
0: अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं.
1: हाँ, लेकिन ये बात एक मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या?
0: लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की?
1: शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को.
0: मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे.
1: आप मुझे पता ये मौसी बाहर गई है क्या?
0: नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी.
1: तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं?
0: लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है?
1: मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए.
0: किसके बारे में?
1: मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ.
0: क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो?
1: प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी.
0: लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या?
1: अत्याचार, नारियों पर अत्याचार. तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलामी समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी, और असल में काम वाली ही समझते हो ना. सभी मर्द अहंकारी होते, ये मुझे मालूम था. लेकिन इतने मीन होते ये आज ही मालूम पड़ा. परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बच चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं. हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह.
2: भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प.
3: क्या हुआ? इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? लीना, तुम क्या हुआ?
0: अरे इस लीना पर माता जी आई है.
3: लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो?
0: इस पर पिताजी आए हैं.
3: तुम कब आई लीना?
1: अभी थोड़ी देर पहले.
3: मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो. देखो ये साड़ी कैसी लग रही है.
1: ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस.
3: क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना.
1: वीरेन,
3: क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है.
3: लीना, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है.
1: पति? गधा है गधा.
0: मालूम होता है लात खाकर आई है.
3: तुम बीच में ना बोलो जी.
0: चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना. अरे लीना, ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पली पहनना चाहता हूँ.
3: अरे ये क्या पागलपन है,
0: थोड़ी छोटी होती है बस.
1: लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम?
0: गुलाब जामुन, रसमलाई.
1: मुझे नहीं खानी.
3: इनके चाचा जी पधार रहे हैं. अरे पहले उन्हें आने तो दो. तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे?
0: तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं.
3: ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे?
0: लीना, लीना जरा समझाओ इसे. अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बंबई, और अहमदाबाद में उनकी चार चार मिले हैं. चार
3: दो मिले बंद हो गई हैं और दो में हड़ताल चल रही है.
0: अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है. जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे.
3: तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है.
0: चुप करो.

0: जी खा मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है
1: तो कोई नई बात नहीं है, लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं, एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें?
2: अरे अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो अंदर के कमरे में जाकर बैठो, कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो जाओ ना।
1: बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है?
3: ये हुई ना बात, तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है।
0: ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो, मैं खोले देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम?
4: ओह थैंक गॉड, लीना तुम यहाँ हो।
3: तुम क्या समझे मैं ट्रेन के नीचे जाकर खुदकुशी कर लूंगी? आई एम नॉट दैट कावर्ड।
4: प्लीज प्लीज लीना, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, थक गया हूँ, आखिर सोचा तुम यही होगी।
3: तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती?
1: बेशरम लीना, तुम होश में तो हो, ये क्या बोल रही हो?
3: गेट आउट, आई से गेट आउट।
4: लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ, यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो।
3: ये लोग कोई पराया नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है।
0: चलो ये वीरेंद्र के जूते ही डाली लेता हूँ।
1: ये तुम क्या कर रहे हो?
0: ये बूट बूट बूट
4: ये बूट तो मेरे हैं।
0: मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था।
1: कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते ही घर में मेहमान आई है।
4: व्हाट आर यू टॉकिंग मौसी, मैं तो घर का ही आदमी हूँ।
3: अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं, ये लोग मेरे मौसा मौसी है।
4: तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ?
3: ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी।
1: लीना वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है यूं अचानक तुम दोनों? यूं
4: बात बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ?
5: बस यू ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चेंज चाहिए।
4: अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? ए, चुप क्यों हो?
5: सारा दिन क्या बोलती ही रहो?
4: सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो।
5: क्या बोलो?
4: कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
5: ये क्या कर रहे हो? अरे पापा हम बाग में बैठे।
4: तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है।
5: माय डियर अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं।
6: आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा।
4: नो,
6: एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है।
4: अरे कह दिया ना नहीं चाहिए।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं
4: इसीलिए मैं आने से मना कर रहा था, देखो यहीं बैठ गया।
5: जाने दो, बैठने दो उसे, उसमें अपने बाप का क्या जाता है?
4: अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है, मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता।
5: जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है?
4: अरे यही दिन है रोमांस करने के लीना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले,
6: हाँ
4: तुम जरा उस तरफ बैठो ना।
6: हाँ क्यों?
4: क्योंकि ये लो 10 का नोट।
6: कितने का दूं बाबू जी?
4: अरे कितने का भी नहीं, तुम वहां बैठो जाकर।
6: वहां बैठने का 10 रुपया?
4: हाँ हाँ,
6: बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ।
4: चलो किसी होटल में चलते हैं।
5: प्लीज यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है।
4: ऑल राइट, एज यू विश।
7: माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
4: क्या है?
7: कुछ नहीं, कुछ न होने की वजह मुझे यहाँ खींच लाई है।
4: ए भाई आप क्या चाहते हैं?
7: देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है।
5: ये आपने कैसे समझ लिया?
7: जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर।
4: मगर आप हैं कौन?
7: मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ।
4: भूखे हो, पैसा चाहिए, लो।
7: मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूँ किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूँ, लेकिन बात करने की जगह नहीं।
5: आप क्या चाहते हैं?
7: लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूँ।
4: स्याही खत्म हो गई?
7: नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई।
5: इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना।
7: मेरे नाटक का हीरो

0: पर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अकबर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है।
1: हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं।
0: आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं आ गया।
2: आप जरा भी संकोच न करें वीरेंद्र, इफ यू डोंट माइंड।
1: डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
0: मैं आगे बढ़ूं?
2: ओह श्योर।
0: यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता,
1: और वो उसे प्यार करने लगता है, यही ना?
0: नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है, और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके।
2: सुनीता बहुत खूबसूरत थी।
0: देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है।
2: फिर?
0: लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है।
2: पर क्यों?
0: बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूँ।
2: एक आइडिया, बस आप यू दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है।
0: नहीं, अमर का करेक्टर ऐसा नहीं है।
1: तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है।
0: दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं।
2: तो सुनीता के अहम को धक्का लगे ऐसा कुछ अमर ने किया होगा।
0: एग्जैक्टली, लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है।
1: सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता।
0: अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता, मैंने कितनों से पूछा।
1: अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना।
0: ऐसा नहीं किया जा सकता।
1: क्यों?
0: क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता।
1: अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए।
0: नाटक होता तो जरूर कर देता।
2: मतलब ये नाटक नहीं है?
0: नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है।
2: आत्महत्या?
0: हाँ, आज ही।
1: आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा।
0: लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी।
2: यानी कि?
0: यानी कि मैं ही अमर हूँ।
1: अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप?
2: अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना।
1: मुझे तो कोई पागल लगता है, सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही है। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने।
2: लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई?
1: ओफो, स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है।
2: रियली?
1: हाँ, अगर दोनों ना समझ हो तो।
2: मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो?
1: हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है, दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो।
2: अरे इसमें क्या बोलना?
1: एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है।
2: मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं। वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड।
1: ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए।
2: प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद।
1: अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरे खाते तुम नहीं बोलोगी?
2: अरे लेकिन शादी के पहले सब बोलने में क्या रखा है?
1: अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ?
2: बेकार की जिद मत करो।
1: मतलब तुम नहीं बोलोगी?
2: ना।
1: मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती?
2: मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली।
1: ऑल राइट, लेट इट कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात बात में कहती जाओ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो।
2: वीरेन, लगता है तुम पागल हो गए हो।
1: हाँ, तुम्हारे प्यार में।
2: चलो अब हम चलते हैं।
1: तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी?
2: मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद।
1: अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है?
2: सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? I hate you.
1: लीना मेरी बात तो सुनो। अरे
3: हाँ।
1: उसके

0: बाद रास्ते में तो यह जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है।
1: लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो।
0: तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है?
1: जब देखो तब लव लव लव मत करो, मैं नहीं बोलने वाली।
2: लीना लीना ये झूठी जिद है।
1: आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना।
0: ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है।
1: रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की।
0: देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती।
1: मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है।
0: तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो।
1: मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले ही तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ।
0: अरे लीना लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
3: दोनों पागल है।
2: तुम्हारे ही रिश्तेदार है।
3: तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए?
2: फोन करके देखूं चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास कहाँ से होगा।
2: अब कहाँ जा रही हो भाई?
3: देखूं तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं।
2: अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
3: क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
4: आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा, और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कांगड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।

0: एक ऐसी कला है कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बॉम्बे टॉकीज,
3: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
4: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत।
5: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास आवाज विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना नाम बताए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके गाने से प्रोग्राम को शुरू करते हैं ताकि लोगों को पता चले आज विविध भारती में कौन आया है।

0: क्या बात है, अब तो सभी लोग जान गए होंगे कि दीपाली विविध भारती के स्टूडियो में आई हैं। दीपाली साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ये बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के इस स्टूडियो में आकर?
1: एकदम सच बताए, मेरे जीवन में अगर संगीत, एक तो नेचुरल गिफ्ट है जो कि भगवान की देन है, आवाज, वो आवाज
0: जी,
1: जो कि आदमी या बच्चा लेके पैदा होता है, और फिर आपको बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, जब हम छोटे थे तो हम जहाँ जिस परिवेश में पैदा हुए वहाँ रेडियो बहुत चलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे जीवन का पहला 10 साल विविध भारती ही रहा है जिसने हमको गाना सिखाया है सर।
0: और एक घटना ऐसी है कि जब आप गा रही थी तो माँ ने समझा रेडियो बज रहा है।
1: हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ रेडियो ही बजता था हर वक्त। एज अ चाइल्ड आई वॉज एक्सपोज टू रेडियो। रेडियो क्योंकि टीवी हर घर में तब नहीं होता था, और होता भी था तो यू नो, अब जॉइंट फैमिली है, 30 लोगों की का परिवार है, तो टीवी दादाजी के कमरे में है जहाँ पे सारे लोग जुटते थे टीवी देखने। और वो महाभारत का टाइम चलता था उस समय, लोग महाभारत देखते थे बैठ के, वो हमको याद है। बट टीवी पे और कुछ एक्सेस नहीं था हमारे पास, पर रेडियो एक ऐसी चीज थी। और आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, उस समय भी इतनी खूबसूरत आवाज से आवाजें आती थी अंदर से कि आप सुन रहे हैं विविध भारती और ये है चित्रपट संगीत।
0: क्या बात है।
1: मेरे लिए मेरा एक्सपोजर म्यूजिक के साथ अगर हुआ है तो उसमें विविध भारती, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है, टू नो व्हाट इंडियन फिल्म म्यूजिक इज ऑल अबाउट।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही दीपाली। वो घटना याद कीजिए जब माँ ने समझा रेडियो बज रहा है, पर गा रही थी दीपाली, और वो भी एक प्रार्थना गा रही थी।
1: जी, आपको पता है जब हमको तो ऑनेस्टली याद नहीं है, पर मेरी याददाश्त वैसे अच्छी बहुत है, हमको बहुत कुछ याद रहता है। बट वो हमको वो इंसिडेंट याद है जब हम घर आए थे, स्कूल में सिखाया गया था गाना, और घर आए थे और हाथ जोड़ के आंख बंद करके, है मालिक तेरे बंदे हम, तब भी ऐसे ही यू नो, पर एक 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज, और आवाज तो मीठी प्यारी सी थी बचपन में ही। तो माँ सो गई थी काम करते करते, उसको लगा कि रेडियो ऑन छूट गया है, तो वो हमको वो मंजर याद है। ये शायद मेरी माँ को भी विश्वास नहीं होगा कि जब वो पलट के हमको देखी थी, क्योंकि उसके पीछे बैठ के हम कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे, और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है, और वो पलट के हमको देखी, उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं याद है। क्योंकि अपेरेंटली मेरी माँ ऐसा कहती है कि वो कूद के बिस्तर से उठी और हमको गोद में उठा के बहुत रोने लगी, वो याद नहीं है हमको। बट आई रिमेम्बर मी रिहर्सिंग दैट सॉन्ग, क्योंकि अगले दिन स्कूल में बोला गया था कि अच्छे से याद करके आना, हम लोग सुनेंगे। तो मेरी माँ को पता चला कि अच्छा, ये तो मेरे पेट से जो निकली है इसको म्यूजिक मिला है, वरदान में मिला है। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी पुलिस वाले, मेरे दादाजी पुलिस वाले, हमारे यहाँ मेरे जैसी लड़की इज मोर फोकस्ड कि हमको बाइक चलाना आ जाए और गाड़ी ड्राइव करना आ जाए, ये मेरी लाइफ का यू नो, आई एम वेरी, हमको IPS ऑफिसर बनना था। बट हमको एक गिफ्ट ये मिला था जो मेरी माँ को पागल कर चुका था, ये आवाज। तो मेरी माँ को लेकिन नहीं पता था कि म्यूजिक कैसे सिखाएं, क्या करें। स्कूल से बातें आने लगी, डायरी में रिमार्क्स आने लगे कि आप अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाइए। वहां से मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों को रेडियो सुनना बहुत पसंद था, तो वो तो हमारे साथ चल ही रहा था। बट उनको भी नहीं पता था कि वो रेडियो जब चल रहा था तो उनकी खुद की बच्ची क्या सुन के क्या पकड़ रही थी। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे।
0: रेडियो एक अंतरधारा की तरह चल रहा था जीवन में, चारों तरफ पुलिस वाले लोग थे
1: जी।
0: और बाइक वाइक चलाना भी सीख लिया था।
1: जी बिल्कुल, आई थिंक हम 6th क्लास में थे तभी हम बाइक चलाने लगे थे।
0: 6th क्लास में?
1: 6th क्लास।
0: पैर वैर पहुंच रहे थे?
1: नहीं पहुंचते थे, तो एक दिन चुरा के भागे। वो उस समय साइड स्टैंड पे बाइक लगाना पता चल गया था कि ये मतलब मेन स्टैंड पे अगर किसी ने नहीं लगाया है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो बाइक लेके तो दीपाली भागेगी
0: भाग जाएगी
1: चाबी चुरा के,
0: एक्सीडेंट का डर नहीं।
1: हाँ, तो डर तो बड़े होने के बाद आता है ना, बचपन में तो कहाँ पता है आपको। अब जब हम बाइक लेके निकल गए और फील्ड में घुमाने लगे गोल गोल, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: अरे
1: रोके कैसे, चलाना तो आता है, रोके कैसे। फिर हंगामा होने लगा, पड़ोसी चिल्लाने लगे, अरे छोटी बच्ची।

0: किसकी है, क्योंकि वो सरकारी एरिया था, सारे क्वार्टर्स थे और बीच में बड़ा सा मैदान था, हम वहां पे बाइक घुमा रहे थे, मेरे चाचा आए चिल्लाते हुए, बना किए थे इसको बाइक लेके जाने के लिए, ये इसको आप क्यों नहीं समझाती हैं, बेचारे वो रोकते रोकते बाइक भी उनके ऊपर गिरा, हम भी गिरे। तो ऐसा था मेरा बचपन में, हम सिक्स्थ में, हमको बचपन में सपने आते थे कि हम गाड़ी ड्राइव करने लगे, पता नहीं क्यों था। मैं
1: गाड़ी मतलब
0: फोर व्हीलर
1: प्रॉपर
0: प्रॉपर,
1: वो तो, लाल बत्ती वाली
0: नहीं नहीं नहीं मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फीमेल ड्राइविंग अ कार, जैसे बचपन में हम लोग जब फिल्में देखते थे, वो एक आजादी का, वो हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना ज्यादा क्यों था, इतना ज्यादा उसकी इच्छा इतनी ज्यादा क्यों थी, ये हम नहीं जानते। मे बी आई वॉज, जैसे कुछ लोग जन्म से ही एक लेवल तक वो शायद पिछला कुछ लेके पहुंचे हुए होते हैं, उनको और आगे बढ़ने की जल्दी बहुत होती है, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई फीलिंग हो। आप एक छोटा बच्चा जो महसूस कर सकता है जब जब उसको प्रेम होगा 12-13-14 की उम्र में, हमको ऐसा लगता है हमको ये सब चीजें थोड़ी जल्दी एहसास होने लगी थी, कुछ एक्सपीरियंसेस हमको जल्दी महसूस होने लगे थे, तो हम थोड़े जल्दी में रहते थे बचपन में, हर चीज पा लेने के, समझ लेने के, सीख लेने के, जीत जाने के।
1: क्या बात है। इस घटना के बाद फिर बाइक से नाता बना रहा या?
0: बना रहा, और बहुत फिर देवी की कृपा से हम लंबे भी हो गए धीरे धीरे,
1: तो पैर पहुंचने,
0: क्योंकि फिर तब साइकिल्स मिल गया, स्कूल जाने के लिए परमिशन मिल गया कि अब तुम साइकिल से स्कूल जा सकती हो, तुम सिक्स स्टैंडर्ड में आ गई हो। उनको ये भी लगा होगा कि इसको साइकिल में फंसाओ, नहीं तो ये आए दिन किसी दिन बाइक लेके उलट जाएगी कहीं पर। तो अब आई सिक्स से लेके एट नाइन्थ तक, मतलब ट्वेल्थ तक हम साइकिल से ही स्कूल कॉलेज गए, लेकिन तब तक लंबाई भी हो चुकी थी, और 16 की उम्र में पापा प्रॉमिस किए थे कि तुम 10th का एग्जाम दे दोगे तब गाड़ी चलाना, क्योंकि हम 8 से ही चलाना शुरू कर दिए थे, गाड़ी सिखा दो, बट 10th के एग्जाम के बाद फिर गाड़ी चलाना सीख लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे पिताजी सिर्फ पुलिस वाले नहीं है, काफी ईमानदार टाइप के पुलिस वाले हैं, तो हम उनको बोलते भी थे कि किसको पता चलेगा मेरा लाइसेंस बनाए कि नहीं बनाए, आ गया तो चलाने दो, लेकिन बिकॉज, और वो डरते भी थे कि अगर वो पकड़े गए तो ज्यादा उनके ऊपर बदनामी आएगी कि ये पुलिस वाला होके अपनी बच्ची को गलत सिखा रहा है, तो इसलिए हमको 18 तक का वेट करना पड़ा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन तब तक मुंबई आ चुके थे हम रियलिटी शो की वजह से, और फिर पापा ने यहीं पे गाड़ी खरीद दी।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा था, और पढ़ाई लिखाई में किस तरह का मामला था?
0: हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जेन्युइनली बहुत अच्छे थे। मेरा अप्रोच बहुत बचपन में ही, क्योंकि बिहार में पैदा होने का एक फायदा ये होता है दैट आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान रहेगा ही,
1: एजुकेशन
0: पे फोकस है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब हम इसको बहुत सिर्फ पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। आई थिंक दैट ये जो आयाम है बहुत सारे, इसका एक्सेस नहीं था हमारे पास, इसलिए एजुकेशन पे फोकस था। अगर किसी एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाए कि इफ शी इज गुड एट म्यूजिक या स्पोर्ट्स, और उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल रहा है जो उसकी तैयारी के लिए चाहिए, या उसके माँ बाप को पता चल जाए कि ये यहाँ पे है, स्कोप है, तो पढ़ाई का इतना जोर नहीं होगा बिहार में। बिहार में प्रॉब्लम ये था कि कुछ उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं जिसपे हम लोग रिलाय कर सके कि हाँ चलो इसमें बढ़ जाओ तुम, तो पढ़ाई ही इकलौता था। अभी काफी चीजें चेंज हो गई हैं, तो हम पढ़ने में अच्छे थे, और हमको बचपन से ये, मेरे दादाजी, मेरा रॉब बहुत था, लीडर टाइप के थे हम, तो मेरे दादाजी को लगता था कि ये जरूर आईपीएस ऑफिसर बनेगी, तो ये बोलते बोलते बच्चा कैसे सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ हाँ हमको तो आईपीएस आईएएस मिलेगा तो भी आईपीएस लेंगे। ये लोगों के बोलने से दिमाग में बैठ गया था कि हमको तो वर्दी ही पहनना है, एंड आई मेंट फॉर दैट, और हमको ऐसा लगता भी है कि अगर ये मेरा लाइफ टर्न नहीं लेता तो हम शायद बहुत खूंखार आईपीएस ऑफिसर होते तो।
1: क्या बात है। अच्छा, संगीत की तालीम का क्या चल रहा था?
0: तो म्यूजिक के जो पटना में टीचिंग का जो पद्धति है, म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, वो इतना गहरा नहीं है जितना जैसे सदर्न इंडिया में जो बात है ना, जो वो उनके घर घर में वो कल्चर में, या इवन फॉर दैट मैटर बंगाल में, जबकि हम निकले बंगाल से ही है, बट समहाउ बिहार के अंदर टीचिंग, म्यूजिक टीचिंग का इतना जोर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कल्चरली भी कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे एज अ टीचर, जब पता है कि स्टूडेंट्स बहुत नहीं मिलने वाले हैं आपको, योग्य स्टूडेंट्स जो उसमें फ्यूचर देख सके। तो मेरे टीचर्स काफी बदलते रहे थ्रू आउट, बचपन से लेकर के मुंबई आने तक। एक टीचर मिले जो कुछ समय के लिए लास्ट तक टिके, बट आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह

0: से क्या होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है. जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो ऐसा लगता है ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है. लेकिन आपकी खुद की कमी है, माँ बाप को नहीं पता है म्यूजिक क्या होता है, तो किसी तरह से आई थिंक. और तब ना पटना में बहुत मेरे स्कूल से रिप्रेजेंटेशन होता था मेरा, हम जहां भी जाते थे हर जगह भेजा जाता था, सब जगह से प्राइज लेके आते थे. पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, मेरा इंटरमीडिएट जो है 11 12th वो पटना वुमेन्स कॉलेज से हुआ.
1: बहुत ही रेपुटेड,
0: बहुत बहुत बड़ा रेपुटेशन है उस कॉलेज का, बहुत इज्जत है, मान है. मतलब हमको बताया कि मेरी माँ के जमाने में जिस लड़की का बायोडेटा में आ जाता था कि वो पटना वुमेन्स कॉलेज की, उसकी शादी तय हो जाती थी बिना देखे.
1: मतलब इतनी काबिल है,
0: इतनी काबिलियत थी उस कॉलेज के नाम पे. और वहां से आई वॉज सेंट टू, यहाँ मुंबई में मूड इंडिगो फेस्ट होता है IIT का, तो जब हम वहां गए और वहां पे जब नाम कमा के आए तो यू नो
1: मूड इंडिगो में नाम कमाना आसान बात नहीं है.
0: नहीं है, नहीं.
1: क्योंकि मूड इंडिगो एक बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बॉम्बे IIT का एक बड़ा आयोजन जिसमें बहुत कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होती हैं और बड़े बड़े कलाकारों की जब शामें होती हैं
0: राइट,
1: तो नशा होता है संगीत का वहां.
0: करेक्ट. तो उसी समय मेरे लाइफ में एक्टिंग भी एक्सप्लोर हो गया था. सो हमने एक वन एक्ट प्ले किया, उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड एक्टर. और वन एक्ट प्ले आपको पता होगा कि वो बहुत, मतलब एक ही सुर में चलने वाला, टायरसम और टायरलेसली चलने वाला प्ले होता है. और उसको अनुपम खेर जी जज कर रहे थे, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कैटेगरी. सोलो सिंगिंग में आई रीच्ड द फाइनल्स. और तब जो आज मेरे दोस्त हैं, तब वो वहां के जजेस थे, राहुल वैद्य और प्राजक्ता शुक्रे, वो लोग जजेस थे उस शो के. आज मेरी उनसे पहचान है क्योंकि हम खुद उस शो से निकले. तो इट वाज आई थिंक मुंबई आना कॉलेज की तरफ से, जितना भी हम सीख रहे थे अपने घर पे म्यूजिक, यहाँ आके थोड़ा सा एक होता है ना स्टैंप लग गया कि हाँ ठीक है तुम सही जा रही हो. ये समझ आया.
1: आने से पहले मन में पूरा विश्वास था या थोड़ा सा भय था?
0: नहीं, मूड इंडिगो के लिए तो पूर्ण विश्वास था कि जीत के आएंगे, पता नहीं क्यों था. और पता नहीं हमको बचपन से, हमेशा से, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे या अच्छा. तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. हारेंगे शब्द कभी आता भी नहीं था, या तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. तो जब खबर आई कि आपका ये रियलिटी शो का ऑडिशन होने वाला है, तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि हम फाइनल्स तक पहुंचेंगे.
1: क्या प्यारी बात है, बहुत बढ़िया. यहाँ एक गाने की जगह बनती है क्योंकि हाँ. इस बातचीत में हमको नियमित रूप से बीच बीच में गानों के अंतराल लेने हैं, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए, आपको पुराने गाने तो आपको पसंद हैं ये.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो दीपाली की पसंद के गाने बजाए जाएंगे.
0: ओके, तो चलिए हम वो सुना देते हैं जो, जिसको गाने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस ऑडिशन में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.

चले।

0: शेफाली, बातें ये हो रही थी कि एक तरफ संगीत चल रहा है, दूसरी तरफ बाइक भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है, ये सारी चीजें चल रही थी। और इसमें कभी ये हुआ कि रेडियो के लिए गाने की कोशिश की गई?
1: नहीं, ये एक कमाल की बात है कि रेडियो के लिए गाना, जैसे हम सुनते थे कि दादी नानी के जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी कि ये आर्टिस्ट रेडियो, इन्होंने रेडियो के लिए गाया है। बट मेरा जमाना आते आते ये जो नया कल्चर आया था, एक एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, जो आई
0: सीएसआर
1: सीएसआर हर बच्चे ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी वाला हर बच्चा उसको पढ़ता। पर मेरा जमाना जब आया, जब हम सेवेंथ एर्थ में आए, तो एक उसके साथ एक सप्लीमेंट किताब आती थी जिसमें वोकेशनल कोर्सेज, नया शब्द हम सुने थे, उसके अंदर एक कॉलम था, एक पेज था जिसपे लिखा था आरजे। वो बहुत आकर्षित करता था हमको, रेडियो जॉकी, क्योंकि जैसा हम बताए आपको ना, बचपन से रेडियो सुने हैं, तो मेरा जीवन का पहला 10 साल जो है वो रेडियो सुनने के लिए, एक बच्चे को रेडियो में फंसाने के लिए वो आरजे ही है जो उसको फंसा सकता है। क्योंकि संगीत तो वो यहाँ नहीं सुन रहा है तो वहां सुन रहा है, वहां नहीं सुन, कहीं से तो आ ही रहा है, बट उसका ध्यान खींचने के लिए कि अब आप सुनेंगे त्रिवेणी, ये बात एक बच्चे को फंसाने के लिए वो आवाज बड़ी आकर्षित करती थी। और आपकी, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप रुकें, खूबसूरत आवाज है आपकी,
0: शुक्रिया।
1: तो हमको हमेशा ऐसा लगता था कि आरजे हम बन सकते हैं। और जब हम इंडियन आइडल में गए और हमसे पूछा गया कि आप जीवन में यू नो आप क्या बनना चाहती है, एंड आई सेड आरजे, सो दे मेड मी एन आरजे फॉर एन एपिसोड, और आई वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक अ रेडियो जॉकी। रेडियो पे उसमें आरजे के क्वालिफिकेशंस में लिखा था दैट इफ यू हैव अ म्यूजिकल सेंसिबिलिटी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो हम हमेशा सोचते थे कि गाना तो आता ही है, म्यूजिक समझ आता ही है, और आरजे भी बन जाएंगे, जीवन सेट है मेरा उसके बाद।
0: क्या बात है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। पटना में कितना नाम कमा लिया था स्कूल कॉलेज के जमाने में?
1: पटना में आई वॉज रिलेटिवली फेमस, मतलब ये था कि एक एक स्टेज ऐसा आया था कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं वहाँ पे बात हो जाती थी कि गया ये जीत जाएगी। और एंड इट हैपेंड काफी लेटर स्टेज में ये होने लगा, मतलब ऐसा 3-4 साल ही ऐसा रहा होगा, ऐसा नाम बना होगा, क्योंकि तब तक फिर आई वाज टू यंग और यहाँ ऑडिशन हो गया तो हम आई शिफ्टेड टू मुंबई।
0: ये इंडियन आइडल वाला मामला किस तरह से आया था?
1: ये इंडियन आइडल पहला सीजन जो आया था जिसमें अभिजीत सावंत जीते थे, वो तो आई थिंक हर बच्चा उस सीजन को जानता है, तो वो देखने के बाद हमको लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं, कि क्या है, स्टेज पे जाना है, गाना गा देना है, तो ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ प्राइज भी जीतते हैं। बट उस साल मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो पापा मम्मी ने बोला बेटा 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत करो। ठीक है, चलो माफ किया, छोड़ दिया हमने। इंडियन आइडल 2 आया तो फिर बोले बेटा 11th का एग्जाम है, मत करो। तो हम बोले तुम लोग तो ऐसे हमको पूरा जीवन बेवकूफ बनाते रहोगे। इंडियन आइडल 3 में 12th के एग्जाम्स थे, हम बोले या तो तुम हमको लेके जा रहे हो ऑडिशन पे या हम घर छोड़ के भाग रहे हैं।
0: मेरे माँ बाप को
1: 12th के एग्जाम के दौरान,
0: वेरी गुड।
1: सो हमको याद है हम ऑडिशन देने के, ट्रेन पकड़ने के पहले हम अपने कॉलेज से एग्जाम दे के निकले थे, 12th का एग्जाम मार्च, और ट्रेन से उतर के स्टेशन से वापस हम भाग के गए थे। मेरे कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा कि यू नो मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, भाग्य से उस डेट को एग्जाम भी नहीं था, जस्ट क्योंकि गैप होते हैं ना,
0: बीच में गैप्स होते हैं,
1: उसी गैप में ऑडिशन का डेट भी पड़ा था। आई वॉज लकी, वेरी वेरी लकी, और मेरे माँ बाप को भी समझ आ गया था कि इसके अंदर अभी

0: अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसको रोकना सही होगा नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मेरा ऑडिशन उधर हुआ, इधर 12th के एग्जाम्स आए, हम यहाँ भी टॉप कर गए और वहां भी यू नो जब आइडल में थे तब रिजल्ट्स आए थे, और वहां पे आई वाज हर दिन आई वाज क्रॉसिंग एंड फाइनल्स तक पहुंचने का वो टाइम चल रहा था मेरा।
1: कितना मुश्किल था इंडियन आइडल का ये पूरा सफर, जहां आप ऑडिशन देने घुसी पहले दिन, वहां के एक्सपीरियंस से लेके फिर थोड़ा आगे बढ़ने तक का मामला बताइए।
0: मेरे लिए ऑनेस्टली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज फार एज माई सिंगिंग वॉज कंसर्न्ड, क्योंकि हमको बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा गाते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो हमको उसमें डाउट नहीं था। बट द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वॉज दैट पीपल, लोगों के दिमाग में बिहारी का एक बहुत ही अजीब सा इमेज बना हुआ था। तो जब हम आए यहाँ पर मुंबई, जब 150 लोग 200 लोग पूरे हिंदुस्तान से एक छत के नीचे जमा हुए, जब हम लोगों को सुने तो पता चला कि हम कुएं के मेढक थे। कितने खूबसूरत सिंगर्स हैं इस धरती पे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे मेरा सामना नहीं होता है। और उसके अलावा लोगों का एक्सपोजर इतना बड़ा था, हम कभी यू नो टीवी पे हमने पिज्जा और बर्गर के फोटोज और वीडियोज देखे थे, बिहार में नहीं था मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी भी पिज्जा, हमने नहीं देखा था। तो मेरा एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था, बट यहाँ पे लोग काफी आगे बढ़े हुए थे, उनको बहुत कुछ पता था। तो मेरे लिए एज अ पर्सन वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल था। ऑल्दो अंग्रेजी में बात करना हो या कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखनी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, पर लोगों के दिमाग में यह था कि ये बिहारी होके इतना कैसे बोल लेती है, इतनी अच्छा। अंग्रेजी इसको कैसे आती है, और रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बहुत सादा, क्योंकि मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो जो दिखते थे और जो थे उसमें सामंजस्य नहीं मिल बैठ पा रहा था लोगों के लिए। वो स्ट्रगल मेरे लिए ज्यादा था, टू लोगों को ये बताना कि हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हम लोग भी होते हैं। हमारा अक्सर ये डायलॉग फेमस हो गया था, बिहारी है तो सींग नहीं होगा मेरा, तुम बिहारी हो लगती नहीं हो।
1: अच्छा,
0: ये हम अपने पूरे जीवन सुनते आए, अब नहीं सुनते हैं।
1: इतना बड़ा पूर्वाग्रह चला
0: आ रहा है, इतना बड़ा, और वो यू नो तब समझ नहीं आता है कि वो कितना डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है। जब हम उस समय में थे तो हमको समझ नहीं आता था कि हम क्यों बेचैन रहते हैं, पर वही बेचैनी थी जो बाद में समझ आया कि मेरा काम है गाना गाना और तुम्हारा काम है हमको उसके बेसिस पे जज करना। कहाँ से आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पहनते, मायने नहीं रखता है। बट वो एक स्ट्रगल हमको, जिसको स्ट्रगल शब्द तो अच्छा नहीं लगता, पर वो एक चैलेंज था जो आई हैड टू गो थ्रू।
1: और वो पूरा आपने एक एक करके पार किया। और दरअसल जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, मामला थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ गाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है।
0: करेक्ट।
1: बाकी तमाम चीजें भी धीरे धीरे मायने रखने लगती हैं। तो कितना डिफिकल्ट रहा?
0: बहुत डिफिकल्ट था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंस। हमको एक ही चीज पे भरोसा था कि मेरे पास अच्छी आवाज है और हम गा सकते हैं, हमको कुछ भी दे दो हम गा देंगे, तैयार करके गा देंगे। बट मेरे पर्सनालिटी की जहां तक बात है, वो मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इन लोगों को यू नो जैसे एक होता है आप मन से झुके हुए हैं, लेकिन जब आप तन से झुकने लगते हैं तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है।
1: इसकी भरपाई कैसे की और ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया?
0: ये आई थिंक ये कॉन्फिडेंस सर तब आता है ना व्हेन यू डोंट हैव अ फियर टू लूज एनीथिंग। जब आपके पास कुछ हारने को बचा ही नहीं है तो आपके अंदर डर भी मर जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है
0: जी। तो इंडियन आइडल करने के बाद अगला वो तो मेरे लिए मुश्किल था, वो जब हम एलिमिनेट हो गए ना, एक फ्रीडम मिल गया हमको।
1: अच्छा,
0: अब तो आउट हो चुके हैं।
1: नहीं, लेकिन एलिमिनेट होने के पहले बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस किए आपने। हाँ। और अपनी पर्सनालिटी में बदलाव किए, इन लोगों के इक्विवेलेंट आने के लिए अपने आप को थोड़ा खड़ा किया।
0: राइट।
1: वो संघर्ष क्या था, क्योंकि वो उस संघर्ष के बारे में अमूमन कहीं कोई बात नहीं करता है। कि लेकिन ये इस पूरी यात्रा का एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं, पर जो आपको दिखाना है वो बहुत डिफिकल्ट है।
0: तो देखिए, जैसे अभी इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम करके बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हमको ये पता है कि शायद आपको थोड़ा या फिर जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा अचंभा हो कि ये हम कितने लोग। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, मेरे अंदर क्या हो गया कि हमको हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स।
1: अरे भगवान,
0: कि हम तो इनके जैसे ना मेरे पास कपड़े हैं ना कॉन्फिडेंस है।

0: ना अंग्रेजी इतनी अच्छी है और हम तो हम करके बात करते हैं, तो चलो इसको छुपाते हैं। और इसको छुपाने के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी, मैं दीपाली सहाय, मैं दीपाली। बट आपको क्या है, जब जीवन के बेसिक सॉर्टेड होते हैं ना तो बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे में ही उलझे रह जाएंगे तो अपना बड़ा सपना देखने का भी टाइम नहीं है आपके पास। तो ये जो संघर्ष है ना, ये पूरे टाइम टू प्रूव देम के अरे भाई हम बिहार से हैं तो हम अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, आई हैव यू नो आई हैव दैट, आई ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश एंड डू माई मॉर्निंग प्रेयर। वो हम उसमें उस जद्दोजहद में फंस गए थे और अंदर से ये मान चुके थे कि एक लड़की तो इंडियन आइडल कभी नहीं बन सकती।
1: ये भी मान चुके,
0: ये भी माने हुए थे हम कि हम तो लड़की है, मेरा तो काम है बस फाइनल्स तक पहुंच जाना, इसके आगे तो हमको कोई जीतने भी नहीं देगा। इसलिए हम हार गए।
1: अरे बाप,
0: हम इसीलिए हार गए क्योंकि हम जानते थे कि हम हारेंगे या जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर हम जानते थे कि हम नहीं जीत सकते। एक लड़की इंडियन आइडल नहीं बन सकती है,
1: ये ख्याल कहां से आया था?
0: ये जो चल रहा था समाज में, इंडियन आइडल बन गया, टू गया, काफी काबिल लड़कियां नहीं आगे बढ़ी। पैरेलली सारे गामा भी एक रियलिटी शो चलता था, उसमें भी कोई लड़की नहीं जीत रही थी, एक लड़की ने जीता था, अदरवाइज लड़के ही जीतते थे। और हम बिहार से हैं, ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है कि उन्होंने सिर्फ दो बेटियां पैदा की और तीसरी बेटी गलती से नहीं हो गई बेटे के चक्कर में। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें तीन बच्चे हैं और तीनों बेटी हैं और फिर रुक गए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं कि दो बेटी है और एक बेटा भी है जो शायद 10 साल बाद आया हो। ये मेरे माँ बाप का बड़प्पन है, ये उनका प्रोग्रेसिव सोच है कि वो दो बेटियों पर रुक गए। मेरे माँ बाप के अंदर जो चीज नहीं थी, पर ऐसा तो नहीं है कि वो उस समाज में नहीं रह रहे थे जहाँ ये चीज नहीं थी, वो तो थी। तो हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश मत करो। मेरे माँ बाप को लोग समझाते थे कि ये नहीं, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, इनके दहेज जमा करो, इनको इतना महंगी महंगी पढ़ाई मत करवाओ, देखो कि दहेज में, मेरे पास तो एक बेटी है, हम तो अपना जेवर दे देंगे उसको, तुम्हारे पास तो दो दो है, कहां से लाओगी जेवर।
1: हे भगवान,
0: हम उस माहौल में पल बढ़ रहे थे। वहां पे मेरी माँ झंडा गाड़ के बोलती थी, नहीं बेटा तुम लोग की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे हम, तुम लोग काबिल बनो, दहेज नहीं हो सर, हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है इतने पैसे, तुम काबिल बनो, पढ़ के काबिल बनो। तो हमारे ऊपर ना थ्रू आउट कॉन्स्टेंट माँ का पापा का बहुत पुश था कि तुम लोग अच्छा करो, पर रह तो उसी समाज में रहे थे ना।
1: पता है दीपाली, मुझे जब आप ये सारी बातें बता रही हो तो मेरे दिमाग में एक गाना गूंज रहा है भिखारी ठाकुर का,
0: बताइए, बेटी बिचवा।
1: क्योंकि बिल्कुल ये तमाम बातें जो है उस दिशा में जा रही थी, वो गाना सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: जी।
1: कितना मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो भोजपुरी नहीं समझते
0: जी,
1: उनके लिए थोड़े से मैं इसका अर्थ भी बता दूं।
0: पहले वो जमाना ऐसा था जिस ये संभिखारी ठाकुर का लिखा हुआ है,
1: बिल्कुल, और बहुत ही प्रसिद्ध कवि,
0: बहुत प्रसिद्ध
1: जी।
0: वो उस समय वहाँ के समाज की कुरीतियों पर गाना लिखते थे, जिसमें से एक कुरीति ये उस समय चलती थी कि बाप पैसे की कमी की वजह से, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, दहेज का प्रेशर इतना होता था कि दहेज न देना पड़े क्योंकि नहीं है उसके पास पैसे, तो एक बूढ़ा आदमी से उसकी शादी करा दी जाती,
1: जो गंगा मैया में भी होता है,
0: जो गंगा मैया में भी होता है,
1: उसकी
0: कहानी भी यही है।
1: पीरी चढ़ाई वो फिल्म की हम बात करें,
0: उसमें भी यही कहानी है
1: जी।
0: तो ये दहेज का पैसा बचाने के लिए एक बूढ़ा आदमी तो जवान छोटी बच्ची चाहेगा ही अपने लिए, वो पैसे नहीं लेता था शादी करने के लिए। और ये गाना उस बच्ची के मन का दर्द है कि एक हम तो माँ की नौकरानी की तरह रहते थे, हम सारा छिपली लोटा धो के रखते थे, घर साफ रखते थे, हमसे क्या गलती हो गई बाबूजी, क्यों मेरी शादी करा दी बूढ़े से।
1: कितना मार्मिक है
0: ये। हम कभी ये जीवन नहीं जिए, पर हमको उनके लिए बहुत खराब लगता है जिन लड़कियों ने ये जीवन देखा है। और आज भी बहुत सारी लड़कियां जो नहीं सोच भी नहीं सकती है कि फ्रीडम क्या होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आई एम वेरी लकी।
1: बिल्कुल, भिखारी ठाकुर ने जिस जमाने में ये लिखा है तब से हम बहुत आगे आ गए, लेकिन अभी भी
0: है
1: जी। बिल्कुल,
0: और ये बहुत पेनफुल है। जब हम मुंबई में रात को 3 बजे गाड़ी चला के घर लौटते हैं शूट से, तो हम सोचते हैं कि कितने लोगों का, कितनी लड़कियों का ये ख्वाब भी नहीं आता होगा उनको ये
1: जी,
0: कि एक ऐसा जीवन हो सकता है।
1: बहुत बड़ी बात बोली है।
0: उनको ख्वाब भी नहीं, आप ख्वाब भी वही देखते हैं ना जो आप दुनिया में इधर उधर नजर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। और हम उस समाज से निकल कर आ रहे हैं।
1: ये कितना ज्यादा मार्मिक, कितना ज्यादा मुश्किल था कि ऐसे पूरे दौर से निकल कर आई एक लड़की, इंडियन आइडल के मंच पर खड़ी, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही है कि मैं इन सब से जूझ के आगे निकलूंगी। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए दीपाली क्या करती थी?
0: दीपाली बचपन से कभी भी नेगेटिव हुई ही नहीं है। ये हमको लगता है ये भी एक अच्छा क्वालिटी है जिसके साथ कोई पैदा होता है। तो हम ना बहुत किताबी थे, जैसे किताब में अगर लिखा है कि चीटिंग इज रॉन्ग है ना, या फिर स्टीलिंग इज रॉन्ग, अगर किताब में वो लिखा है और माँ ने पढ़ के बता दिया चीटिंग इज रॉन्ग, आप विश्वास करिए मेरा, हम बचपन में कभी चीटिंग किए ही नहीं है। मेरा पूरा कभी कभी हमको अफसोस होता है कि वो बच्चा जो बच्चा बन के रहना चाहिए, हम इतने सीरियस थे जीवन को लेके, यू नो, अपने लक्ष्य को लेके, कि हमको लगता था कि, और तब अब बड़े होके समझ आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है चीजें, ये जो बीच का ग्रे वाला शेड है ना,
1: वो भी
0: वो है जीवन।
1: हाँ।
0: जीवन वो है,
1: बिल्कुल,
0: ब्लैक एंड व्हाइट तो जन्म और मृत्यु है, पर उसके बीच जो ग्रे का शेड है वो ही जीवन है, वो ही प्रेम है। ये बहुत बड़े होके समझ आता है। तो दीपाली जो बचपन में जो बच्ची थी वो कभी नेगेटिव नहीं होती थी, क्योंकि किताब में लिखा था कि नेगेटिव होना गलत बात है। अब दीपाली बहुत खुशी से नेगेटिव होती है, बहुत जोर से दिल टूटता है, बहुत दम लगा के रोती है, 4 दिन सल्क भी करती है, और फिर वहां से बाहर भी आती है। और हमको लगता है वो होना बहुत जरूरी है, वो एहसास होना बहुत जरूरी है। आज अगर किसी को मेरा गाना पसंद आता है तो वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो जो एहसास महसूस कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर हम वो नहीं करते तो वो उस तक नहीं पहुंचा सकते हम।
1: बिल्कुल, मुझे उस दिन के बारे में बताइए जब आप इंडियन आइडल से एलिमिनेट हुई थी।
0: वो दिन बहुत कठिन था मेरे लिए, जब हम स्टेज पर अनाउंस हुआ कि दीपाली आज एलिमिनेट,
1: लेकिन ताकत पूरी लगाई थी,
0: पूरी
1: परफॉर्म बहुत बेहतरीन किया,
0: और वो मतलब सोचिए हम कितने कमाल के एक्टर हैं, आज भी हम सोचते हैं। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि हम बैठ के चीख चीख के रोएं, बट कैसे।

0: किताबी बच्चा थे हम. रोना सबके सामने, रोना कमजोरी की निशानी. पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ के रखा था ये सब हमने, पर ये हमने इस वजह से पब्लिकली हम कभी नहीं खुल पाते थे. आज मेरे लिए एक सुंदर बच्चे को खेलते देख के रोना बहुत आसान है, बट उस समय वो फेज जो था, वो जो दीपाली थी, वो बहुत कड़क थी.
1: अपनी कमजोरी दुनिया के सामने,
0: कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आ सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए.
1: हाँ.
0: तो ये वो जो दौर था, वो जो दिन था, वो बहुत कठिन था मेरे लिए.
1: अंदर बहुत तूफान चल रहा है,
0: तो तूफान,
1: लेकिन ऊपर सब कुछ स्थिर है.
0: ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लाइफ विल गो ऑन, पर असल में दिल के अंदर सब कुछ टूट गया था. लगा था अब यहाँ से कहाँ, अब क्या होगा लाइफ में.
1: और जब मिनी ने कहा कि आप बहुत नाम कमाएंगी,
0: हाँ, तो लगा था हाँ ठीक है, मन रखने के लिए तो कोई भी.
1: आपको लगा नहीं था कि ये होगा, एक दिन दुनिया आपके गाने गुनगुनाएगी, ये कहा था मिनी ने.
0: ये कहा था उन्होंने, दीज वर एक्चुअली एग्जैक्टली यही शब्द थे उनके.
1: हाँ.
0: और तब हमको लगा था ठीक है, अब तो निकल रहे हैं तो क्या ही कोई बोलेगा, कोई थोड़ी बोलेगा कि अच्छा हुआ तुम एलिमिनेट हो गई. तो वो मेरा मन रख रही है. हम भी छोटे थे, 17-18 साल के थे. मिनी माथुर इज वेरी सेंसिटिव एज ए ह्यूमन बीइंग. तो वो कर रही है जो उनको करना है, पर जो वो कह रही है वो तो पॉसिबल नहीं है. बोले ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप जो मेरे साथ इस वक्त घटित हो रहा है. मेरे सपने में भी वो नहीं आ सकता था. तो उसके बाद, लेकिन काफी चैलेंजिंग था क्योंकि फाइनेंशियली परिवार मिडिल क्लास परिवार.
1: नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए
0: जी,
1: वहां से लौटने के बाद,
0: हाँ,
1: मन का बांध टूटा
0: बहुत. स्टेज से उतरते ही जैसे ही 100% श्योर हो गए कि कैमरा कहीं भी नहीं है.
1: अच्छा, पहले ये तस्दीक
0: पहले
1: हो गई.
0: था, हाँ हाँ, क्योंकि वो रियलिटी शोज में हर जगह कैमरा लगे होते हैं. आपको कभी भी कोई भी कहीं भी धर सकता है अपने कैमरे से. तो जैसे ही हम आरके स्टूडियो में शूट कर रहे थे, और बड़ा सा एक आरके रूम है वहां पे, अब तो नहीं है,
1: अब नहीं
0: स्टूडियो
1: है.
0: नहीं है, पर तब बहुत बड़ा एक आरके रूम होता था, कॉटेज. तो हम वहां से निकले, वहां पे कैमराज होते थे, वहां से भागे दूसरे कमरे में गए, वहां पे प्रॉपर्टीज रखी होती है. आपने कभी देखा, एक कमरा है जो पूरी प्रॉपर्टीज है, जो राज कपूर साहब की फिल्मों में वो उनका जोकर वाला ड्रेस या वो नरगिस की बिकिनी, वो सब है उस प्रॉपर्टी रूम में. यहाँ हमको पता था कैमरा नहीं आएगा. घुसे, कोने में गए, और 15 मिनट तक इतना रोए हम कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, धरा ही क्या है. ये स्थिति थी.
1: और कौन था जो संभाल रहा था?
0: नहीं, उस वक्त हम तो कोई भी नहीं था जो आई वुड नॉट लेट एनीवन. कोई मेरे पास भी नहीं आ सकता था अगर हम दुखी हैं तो, या क्योंकि कोई जान ही नहीं सकता है कि हम दुखी हैं. किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि
1: मतलब
0: हम
1: एक अकेले कमरे में,
0: अकेले कमरे में रो के पूरा दुख निकाल के उस कमरे से बाहर निकले हंसते हुए कि अरे कोई बात नहीं यार, पार्ट ऑफ लाइफ है.
1: गजब.
0: पर अभी जब हम सोचते हैं 17-18 साल, और माँ बाप नहीं है, माँ बाप के मतलब मेरे जीवन के बहुत बड़े आधार. और हमेशा हम वो बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी कभी भी. क्योंकि स्कूल में हम बहुत ब्राइट थे, पढ़ने में अच्छे, चीटिंग नहीं करती है, गंदी बातें नहीं बोलती है, ना बोलती है ना बोल सकते हैं आप उसके आसपास, यू नो. लड़कों से तो दूर, क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे, लड़कों से दूर. बॉयफ्रेंड वाली लड़कियां गंदी होती हैं. बहुत आइडियलिस्टिक बच्ची दीपाली सहाय. तो मेरे दोस्त नहीं थे बचपन में. तो हम स्कूल जाते थे और हम सारा काम करते थे, सारे एक्टिविटीज, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन, बट मेरा कोई दोस्त नहीं था, कभी नहीं था, कभी भी नहीं था. तो मेरे जीवन का आधार मेरे माँ बाप ही थे, वही मेरे दोस्त थे. तो जब भी हम स्कूल जाते थे, तो मेरे स्कूल में घुसने के बाद घड़ी देखते थे और सोचते थे 4 बजेगा तो जीवन शुरू होगा, क्योंकि तब पापा मम्मी मिलेंगे या माँ मिलेगी घर पे. वो बच्ची जो हर दिन निकालती थी इस भरोसे कि बस ये स्कूल अभी जाना पड़ रहा है, शाम को तो माँ मिलेगी. वो बच्ची उस मोमेंट पे जब बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, मुंबई में माँ बाप नहीं थे जब हम एलिमिनेट हुए, और क्योंकि हम बोले ना, हम कभी किसी को दिखाते नहीं थे कि हम दुखी भी हो सकते हैं. सो वो जो 2 दिन था टू लिव इन मुंबई एलिमिनेटेड, और अपने को कंटेस्टेंट्स को हौसला देना कि या बधाई देना कि आप चलो आप आगे बढ़ो, हम तो निकल गए, अब हम तो घर जा रहे हैं. इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट 2 डेज ऑफ माई लाइफ, मोस्ट डिफिकल्ट.
1: और उसके बाद वापस लौटना और अपने माँ बाप को बताना,
0: उनके गोद में महीनों रोना, महीनों. क्योंकि जब आपको एक्सपोजर नहीं है तो आपको ज्ञान भी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता तो हमने चुना नहीं था ना भैया, कि हमको हम जाएंगे प्लेबैक सिंगर बनेंगे. हम तो कॉम्पिटिशन्स में प्राइज और ट्रॉफी लेके आते थे, इंडियन आइडल का ग्लैमर का वो

0: कोशेंट हमें खींच के लेके चला गया। करनी तो पढ़ाई थी। अब लेकिन एक 18 साल की बच्ची रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई। वो वहां से वापस आ जाए सब कुछ छोड़ के, वहां कोई उसको रख नहीं रहा है क्योंकि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। यहाँ हर कोई इस उम्मीद में कि अब ये हमारी बच्ची जाएगी और कुछ बड़ा कर रहेगी। अब तो
1: बीच में तो एक भंवर है कि अब क्या करें।
0: अब जो बीच का ये जो समय है, और वो भी एक कम उम्र की बच्ची, एक माँ बाप जो बहुत सादे हैं, बहुत ईमानदार, मतलब एक होता है ना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, मेरे माँ बाप नहीं है वैसे, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो वो जो 2-3 महीने जो बीते हैं निकलने के बाद, हर कोई क्लूलेस है, हर कोई आ रहा है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में आप बहुत बड़े हो गए, पर उसके जाते ही आपको लग रहा है कि करना क्या है, यहाँ से आगे जाना कैसे है, मुंबई जाएंगे कैसे, वहां तो इतना महंगा है, वहां रहेंगे कैसे, करेंगे क्या। गाना जावेद अख्तर तो हमारे शो के जज थे, पर वो तो नहीं बोले कि बेटा हम तुमको गाना गवाएंगे। अब करेंगे क्या, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, के बाद जो कॉलेज ज्वाइन करना था
1: वो नहीं किया,
0: वो नहीं हो सकता। तो एकदम मतलब नैया, जीवन की नैया जो मझधार में फंसी थी उस वक्त, कि
1: कैसे एक एक दिन बीत रहा होगा।
0: बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, मेरे से ज्यादा कठिन मेरे माँ बाप के लिए होगा आई एम श्योर, क्योंकि उनके लिए तो उनकी यही दोनों बच्चियां थी जो उनका वो पूरा जीवन हम ही लोगों को बनाने में लगा दिए है। अब हम दोनों 18-20 साल के हो चुके हैं।
1: आपकी बहन कितना बड़ा सपोर्ट थी?
0: ओ माय गॉड, हमको नहीं लगता है इफ इट वाज नॉट, क्योंकि ना बचपन से हम आई वाज द स्टार। एक वो बच्ची होती है ना जो आती है तो पार्टी में रौनक आ जाती है,
1: सब मुड़ के देखते हैं
0: ये गाना गाती है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत
1: कलाकार है
0: ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिबलिंग होता है वो भी तो बच्चा है ना, वो भी छोटा है, उसका कोई भाव नहीं है क्योंकि उसके घर में एक स्टार पैदा हो गया,
1: वो पर्दे के पीछे है।
0: जो मेरे रोज के रियाज हैं, जो सबसे बोरिंग, जो मेरे जीवन का सबसे गंदा एस्पेक्ट है, जितनी हम लड़ाई करते हैं उसके साथ, जितना चिल्लम चिल्ली हो रहा है, झेल वो सब रही है, लेकिन जब बाहर निकल रहे हम दोनों तो स्टार हम हो जा रहे हैं।
1: और वो ओझल है,
0: वो कहीं भी नहीं है, बट ये सपोर्ट होता है। वो ओझल होके भी खुश थी, ये उसका बड़प्पन है, ये इतना ताकत नहीं है मेरे में।
1: हम समझ सकते हैं कितनी संवेदना के साथ, कितने प्यार के साथ आप अपनी इस बहन के योगदान को याद करें, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत प्यारी बात है
0: जी।
1: और दुनिया के सब लोग सुने कि कैसे एक कलाकार के बनने में
0: सबका,
1: उसके भाई बहनों का कितना बड़ा योगदान,
0: सबका सैक्रिफाइस होता है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके भाई बहन का होता है, खासकर जब आप एक ही उम्र के हैं, 2-3 साल के अंतर पर।
1: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलाकार नहीं है, क्योंकि वो तो भाई बहन हैं।
0: वो सबसे कठिन उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जब हम बड़े हुए तो हमको रियलाइज हुआ, और हमको लगता है आई थिंक आज से 10 साल पहले एक दिन हम उसको फोन करके और बहुत रोए, हम उसको बोले आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो फेमस, क्योंकि तुम तो थी ही नहीं कहीं भी, तुम तो कभी हमसे कुछ बोली भी नहीं। मतलब अभी अपने छोटे कजन्स को देखते हैं, भाई बहन आपस में लड़ाई करके किताब में लिख देते हैं, ये मर जाए, मेरा छोटा भाई मर जाए, मम्मा उसको ज्यादा प्यार करती है, इस तरह की कहानियां हम बहुत देख रहे हैं अपने आसपास, करते होंगे लोग। पर ये कैसी लड़की थी, ये इस मेरा सौभाग्य था या उसका दुर्भाग्य था कि वो मेरी बहन थी, हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर भी तो वही सारी फीलिंग्स चलती होंगी जो मेरे अंदर चलती हैं।
1: जब आप बहुत लोगों का आकर्षण हासिल कर रही हैं, फोकस हासिल कर रही हैं, उस वक्त वो कहाँ होती थी?
0: वही होती थी, और स्माइल के साथ वही रहती थी। और हमको इतना दुख हो रहा है इस वक्त ये बोलने में कि हमको याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, पड़ी भी नहीं थी हमको, हम अपनी अपने ताली बटोरने में इतने बिजी थे कि हमको फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है, हमको सिर्फ आगे दिखता था, हमको सिर्फ सीढ़ी दिखता था। मेरी माँ कहती है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कौन भारती है जिन्होंने अर्जुन के ऊपर कोई किताब लिखी है, मेरी माँ किताबें बहुत पढ़ती है, तो वो पढ़ रही थी अर्जुन का विश्लेषण, अर्जुन के कैरेक्टर के ऊपर किसी ने एक किताब लिखी थी, मेरी माँ पढ़ रही थी। अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत लुभाता है, मतलब अच्छा बुरा तो पर्सपेक्टिव है, पर लुभाता बहुत है। मेरी माँ पढ़ती थी अर्जुन को जब हम उसके पेट में थे। तो जब हम आए एग्जिस्टेंस में तो मेरा ना रवैया भी कुछ वैसा ही था, हमको और कुछ नहीं दिखता था,
1: सिर्फ
0: अपना लक्ष्य दिखता, हमको आसपास

0: अर्जुन में तो इतनी भी संवेदना थी कि वो युद्ध के पहले गांडी उतार दिया था, मेरे में तो वो भी नहीं था।
1: तो वो अर्जुन को पढ़ रही थी, तो बहन की बात चल रही है।
0: तो मेरी बहन उस अर्जुन को देख रही थी और ये अर्जुन भूल गया था कि इसके आसपास, भूल गई थी कि इसकी बहन को किस चीज से गुजरना पड़ता होगा। हमको नहीं पता है कि वो कैसे उस बात को महसूस करती होगी। और जब हम उसको सॉरी बोले आज से 10 साल पहले, तो वो रोते रोते हंसते हंसते बोली, पर तुम तो पैदा ही स्टार हुई थी ना, तुमको अगर सपोर्ट नहीं करते तो तुम वो तो बनती ही नहीं जो तुम हो, तुम तो पैदा ही हुई थी चमकने के लिए, तो तुम हमको थैंक यू मत बोलो। ये उसका बड़प्पन है सर, ये सब उसका बड़प्पन है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
1: दीपाली, हम इतने जज्बाती मूड पर हैं कि आपने मुझे भी रुला दिया। यहाँ अपनी बहन के नाम पर एक गाना डेडिकेट कीजिए।
0: अगर हम बिना रोए गा दिए तो समझिए कि कमाल ही हो जाएगा आज। कोशिश करते हैं। फूलों का, तारों का, सबका कहना है।

0: जीवन इन जज्बात में छिपा हुआ होता है।
1: बिल्कुल।
0: जीवन हमारे इन आंसुओं में, हमारे हमारी इन फीलिंग्स में छिपा हुआ होता है। तो जिस तरह से आपने अपनी बहन को सलामी दी है वो बहुत अनमोल है। मुझे लगता है ये हमारी इस बातचीत का एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ है।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। दोस्तों, ये दिलचस्प बातचीत जारी रहेगी, अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा इस बातचीत का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

क्या बात है। मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे होंगे वो सब भी इस मोड़ पर बहुत जज्बाती हो गए होंगे, क्योंकि जीवन जो है ना वो केवल सफलताओं की कहानी नहीं है।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वक्त से, आवाज आशा बोल।
1: श्री कृष्ण 3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ का निजी चैनल है। शाम के 5 बजे है प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले सुनते हैं आज के शेष कार्यक्रम का विवरण। थोड़ी देर में 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जुल्फिकार हिकावाला की आवाज में गाया राजस्थानी गीत। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के हिंदी केंद्र से आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थान में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से 6

जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 7:31 पर समाचार संध्या सुनने जाएंगे। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से 10:00 आप सुनेंगे।

सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हमारी दिल्ली केन्द्र से 6:05 पर चिंतन आप सुन सकते हैं हमारे जयपुर केन्द्र से। यहीं से 6:05 पर वंदना सुनाया जाएगा। 6:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकते हैं रामचरित नमस्कार। खेती में बात का समय रहेगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुन सकते हैं 6:50 पर। रसायन का समय रहेगा 7:20 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मंगल केंद्र से आप सुनेंगे कल सुबह 7:30 पर, सुबह 9:30 पर और दोपहर में हमारे मंगल केंद्र से। समाचार प्रभात आप सुन सकते हैं दिल्ली केन्द्र से सुबह 8 बजे। कुछ दिल से प्रोग्राम होगा हमारे स्टूडियो से सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत का मजा आप ले सकते हैं 8:45 पर। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनाए जाएंगे जयपुर केन्द्र से। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो से सुबह 9:10 पर। 11 बजे आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से।

कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे बच्चों के मुख से कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, जानकारी और गीत। रेडियो भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे 5:30 पर और रात 9 बजे हमारे मुंबई केंद्र से। 7 बजे आप सुनेंगे चौपाल। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, बातचीत, लोक भजन और बाजार भाव। 7:30 पर ट्रांसमीटर पर श्रोता सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषी बोल बाई बोल कमेंट्री का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोता सुनेंगे रेडियो भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। समाचार संध्या आप सुन सकते हैं 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। 9 बजे आप सुनेंगे दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषी बोल बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण ट्रांसमीटर पर हमारे दिल्ली के अंदर से। और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोता सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई के अंदर से। 10 बजे आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत। 11 बजे हिंदी में समाचार सुनवाए जाएंगे हमारे दिल्ली के अंदर से। ये तो था कार्यक्रम विवरण। FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह मेन चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे जुल्फिकार हितावाला की आवाज में गाए राजस्थानी गीत। तो पहले सुनते हैं।

0: फसलिनों से क्यों छू रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन,
1: फटे फटे आप पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ,
1: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आज ये कहता है स्मार्ट बनो तू बोल रहे
3: राजस्थानी लोक संगीत अभी आप सुन रहे हैं जुल्फिकार नीतावाला की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे
0: और छोटी
1: ये तुम्हारी ना
0: और ये मेरी गुड़िया थी ना। दादी आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुक्र बोलो
1: क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

अब राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे हैं जुल्फिकार भुट्टोवाला की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत।

राजस्थानी लोक संगीत सुन रहे थे जुल्फिकार ही पवाला की आवाज में। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। इस समय रात्रि के 5:00 शाम के 5:30 होने को है।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं वापस आऊंगा से, आवाज दीपाली सहाय की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म ताल से। आवाजें थी अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम और ए आर रहमान की। गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल अनुराग शर्मा के और संगीत प्रीतम का।

0: श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म अक्सर से, आवाजें हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में दो गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों

0: को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्यीय भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए नेपाल पहुंचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार पश्चिम बंगाल में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म एनिमल से, आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल राजशेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: दिख दी बहार आई बाहों में खिली पहनी,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म बॉम्बे से, आवाजें चित्रा की थी, गीत के बोल महबूब के और संगीत ए आर रहमान का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कभी बेख्याल हो
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म एक विलेन रिटर्न से, आवाज अंकित तिवारी की थी। गीत के बोल मनोज मुंतशिर के और संगीत अंकित तिवारी का ही।
1: ये है विविध भारती। विविध

0: भारती देश का रेडियो।
1: मेरे पिया पिया है वहाँ,
2: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
0: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
4: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
2: विविध भारती पर हर पल है खास।
0: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार
2: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
5: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
0: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज। अब तक 6000 से अधिक नामांकन दाखिल। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 137वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे होगी। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगले महीने होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के आज तीसरे दिन 4,800 से अधिक उम्मीदवारों ने 5,000 से ज्यादा नामांकन पत्र भरे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10,245 वार्डों के लिए अब तक कुल 6,124 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 31 अगस्त को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिन है। इसके बाद ही कुल प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच आज नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए निकाय कार्यालयों में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उम्मीदवारों की भीड़ देखी गई। साथ ही प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क भी तेज कर दिया है और सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार में जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा दावेदार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी मैदान में उतर रहे हैं। उधर कई स्थानों पर तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी मुकाबलों को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना रहे हैं। निकाय चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। स्वीप सतरंगी सप्ताह के तहत आज विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकालकर भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान का संदेश दिया गया। बालोतरा के मोकलसर में विद्यार्थियों ने वोट की आकृति बनाकर मतदाता जागरूकता की अलख जगाई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दावों की नियमित निगरानी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस के तहत गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के साथ ही राशि का पारदर्शी और उचित उपयोग सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। योजना में एआई आधारित निगरानी और दस्तावेजों के सत्यापन से संदिग्ध पैटर्न की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में सीकर स्थित एसबी मित्तल मेमोरियल हार्ट और क्रिटिकल केयर अस्पताल को आरजीएचएस से निलंबित किया गया है। इस अस्पताल को छोड़ चुके चिकित्सक के नाम पर यहां रिकॉर्ड में हेरफेर करने की बात सामने आई थी। मामले की गहन जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हितधारकों से सुझाव

0: आमंत्रित किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने परीक्षा सुधार को लेकर सार्वजनिक सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए परीक्षा आयोजित करने और परीक्षण तैयार करने वाली संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी पेशेवरों के साथ ही नागरिक समाज संगठन और अन्य लोग 13 सितंबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। गौरतलब है कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परीक्षाओं की पारदर्शिता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, शिकायत निवारण और हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने सहित अन्य उपायों पर सुझाव मांगे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने साइबर ठगी की जांच के दौरान बैंक खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जांच एजेंसियों और बैंकों द्वारा खातों को फ्रीज करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन और विवादित राशि पर रोक लगाने की बजाय पूरे खाते को फ्रीज करने के मामले पर गाइडलाइंस जारी की है। और ब्यौरा दे रहे हैं न्यूज डेस्क से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर।
1: जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने साइबर ठगी से जुड़ी 100 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाल ही में ये आदेश दिया कि साइबर ठगी से जुड़े मामलों में संदेहास्पद लेनदेन के बजाय बिना सोचे समझे पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जाए। ऐसा करना नागरिकों के मौलिक अधिकार और आजीविका पर आघात होगा। उन्होंने कहा कि केवल जांच लंबित होने के आधार पर बैंक खाता अनिश्चित काल तक फ्रीज नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और साइबर क्राइम प्रभारियों को परिपत्र जारी करने को कहा है। साथ ही राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा है जो खातों को फ्रीज रखने से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेगा।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के उज्बेकिस्तान आगमन की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। राजधानी ताशकंद में जगह जगह भारतीय ध्वज तिरंगा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का 137वां संस्करण कल होगा। श्री मोदी कल सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं, साथ ही देशवासियों की प्रेरणादायक कहानियों, पहलों और उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर में आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मृत्यु हो गई और 2 युवक घायल हो गए। दुर्घटना गोविंदगढ़ क्षेत्र में सिरमौर पुलिया के पास एक पिकअप वाहन और ट्रक की टक्कर से हुई, जिसमें पिकअप सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर सीकर में आज तड़के इलेक्ट्रिक वाहनों के शोरूम में आग लग गई। हादसे में करीब 40 वाहन जलकर नष्ट हो गए। पुलिस ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। प्रदेश में बरसात का दौर थमने के साथ ही पारे में बढ़ोतरी होने लगी है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान पिछले 3-4 दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बरसात की गतिविधियां अब फिलहाल सुस्त रहने के आसार हैं। 4

0: सितंबर से राज्य के पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बरसात हो सकती है। जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से करीब 17% कम पानी बरसा है। डीग और फलौदी जिले में ही सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं अजमेर, अलवर, जोधपुर, चूरू और सीकर सहित 20 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा सहित 19 जिले कम बारिश वाले स्थानों में शामिल हैं। 693 छोटे बड़े बांधों में से 437 आंशिक रूप से भरे हैं, वहीं केवल 57 बांध ही लबालब हैं। राज्य के कुल बांधों में अब तक 57% से अधिक जल भराव हुआ है। हालांकि पिछले साल इस समय तक इनमें 82% से अधिक पानी की आवक हो चुकी थी। बारिश के मौसम में प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का आना जारी है। उदयपुर और सिरोही के आबूराज में भी अच्छी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं। आबूराज में मौसम सुहाना बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग नक्की झील और गुरु शिखर सहित विभिन्न स्थानों पर हरी भरी वादियों का आनंद ले रहे हैं।
1: माउंट आबू में लगातार 3 दिनों के अवकाश के चलते बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आए सैलानी यहां के सुहावने और धुंध भरे मौसम का आनंद ले रहे हैं। नक्की झील, गुरु शिखर, देलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मौसम में घुली ठंडक, बादलों और धुंध की चादर के बीच माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम रखा गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मांडविया ने लोगों को खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कहा। उन्होंने युवाओं को कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। लाखों की संख्या में हर गली में, मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। नया भारत के निर्माण में देश के युवा फिट हो, सोसाइटी स्वस्थ हो, तब ही समृद्ध राष्ट्र बनेंगे।
0: श्री मेघवाल ने शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक रूप से फिट रखने के साथ ही तनाव मुक्त रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3: खेल से आदमी फिट भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है, मानसिक तनाव भी दूर होता है। नेशनल स्पोर्ट डे पे जो 1 घंटा खेल को देने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हम फिट तो इंडिया फिट, और विकसित भारत बनाने की राह में भी ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को नमन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक साक्षात्कार में कहा कि खेलों में अपार अवसर है। लगातार अभ्यास, सकारात्मकता और मन लगाकर प्रयास करने से सफलता पाई जा सकती है। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर विभिन्न आयोजन हुए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेल समारोह रखा गया। नागौर, पाली सहित कई स्थानों पर खेल महोत्सव भी आयोजित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की हलचल तेज। अब तक करीब 9000 नामांकन दाखिल। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 137वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे होगी। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से खेलों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह जिला खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया। जलदाय और भूजल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्र

0: गान की धुन पर पुलिस तथा आरएसी के बैंड ने प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 88 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में देशभक्ति से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यालयों और अन्य संस्थानों में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और देश के प्रति नागरिकों के दायित्वों का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन का पर्व भी जिले भर में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। घरों में भाई बहनों ने एक दूसरे के प्रति स्नेह व्यक्त किया। टोंक में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने कोतवाली थाना पुलिस लाइन और बनेठा थाना पहुंचकर पुलिसकर्मियों को राखियां बांधी। इस दौरान नशा मुक्त और संस्कार युक्त जीवन का संदेश दिया गया। मालपुरा में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जिला अस्पताल भवन और 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4-लेन सड़क का हाल ही में शिलान्यास किया। जिला अस्पताल बनने से मालपुरा क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। जलदाय मंत्री ने आने वाले समय में मालपुरा क्षेत्र में पेयजल, सड़क, सीवरेज, विद्युत और अन्य सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी भी दी। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की व्यवस्थाओं की जांच की। अजमेर और टोंक जिले में मोबाइल वेटरनरी यूनिट का निरीक्षण किया गया। केकड़ी और देवली में वाहनों की उपलब्ध सुविधाओं और दवाओं की जांच की गई। दूर दराज की यूनिटों की जीपीएस लोकेशन भी देखी गई। वाहनों में आवश्यक दवाओं और टीकों की उपलब्धता की जांच की गई। विभाग की ओर से भेड़ बकरी पालकों को मौके पर उपचार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। प्रवास के दौरान लंबी दूरी तय करने वाली भेड़ों के पैरों में होने वाली चोट और घाव को देखते हुए मोबाइल वेटरनरी यूनिट को ऐसे पशुपालकों को मौके पर उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालकों से 1962 टोल फ्री नंबर का उपयोग करने की अपील की गई है। जिले में किसानों के लिए उर्वरक वितरण से जुड़ी नई व्यवस्था शुरू की गई है। निवाई में FFS ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप के माध्यम से किसान यूरिया, DAP सहित अन्य उर्वरकों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। मोबाइल नंबर और आधार आधारित सत्यापन के बाद किसान अपनी जरूरत के अनुसार उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के बाद उन्हें एक बुकिंग ID मिलेगी, जिसके आधार पर निर्धारित केंद्र से खाद प्राप्त की जा सकेगी। इससे उर्वरक वितरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। जिले में साइबर अपराध के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई हुई। टोंक पुलिस की DST टीम ने दत्तवास में 11 साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 वाहन, 12 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 5 ATM कार्ड और 37,000 रुपए बरामद किए। जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर से अरबी फारसी शोध संस्थान तक मोटरबाइक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की गई। नगर पालिका दूनी के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर मतदाताओं को जागरूक किया। विद्यार्थियों ने मुख्य बाजार में रैली निकालकर अधिक से अधिक मतदान की अपील की। इस तरह टोंक जिले में बीते दिनों स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन के आयोजन के साथ विकास, पशुपालन, कृषि, खेल और साइबर अपराध से जुड़े काम हुए। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान भी शुरू हो गया है। प्रशासन और पुलिस चुनाव व्यवस्था के साथ साथ आमजन से जुड़े दूसरे कार्यों पर भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ टोंक जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आवता महीना वेवन वाला नगरीय निकाय चुनाव री हलचल तेज हुई। हाल तई करीब 9,000 पर्चा दाखिल करी चिया। केंद्र सरकार देश री सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार सारो हित धारका ने राय मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में काल सवार 11 बजे विचार बतावेला। और

0: केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जनताओं खेलना ने रोजीनारी जिंदगी रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में आवता महीना फेवनवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रा काम रा तीजा दिन आज 7,092 उम्मीदवार 7,858 नाम पाना दाखिल कीना। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब 309 स्थानीय निकाय रा कुल 10,245 वार्डा सारू हाल ताई 8,995 पर्चा दाखिल कर दिया गया है। नाम पाना दाखिल करण री आखिरी तारीख 31 अगस्त है, हालांकि काल दीतवार न पर्चा दाखिल नहीं किया जा सकेला। नाम पाना 3 सितंबर ताई पाछा लिया जा सकेला। ये बीच आज नाम निर्देशन पत्र दाखिल करण सारू मोटी तादाद माई उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर रा दफ्तर माई पुग्या। पर्चा दाखिल करण रा काम सा गई उम्मीदवार कान्यू जनसंपर्क रो काम ही जोर पकड़बा लग्यो है। उम्मीदवार फिलहाल सोशल मीडिया रे जरिए प्रचार करता नजर आ रहा है। खास सियासी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस आ गई कई दावेदार निर्दलीय उम्मीदवार रातौर में चुनाव मैदान में उतर रहा है। कई थोड़ा न्यारी न्यारी सियासी पार्टियां रा और निर्दलीय उम्मीदवार मुकाबला ने दिलचस्प बना रहा है। निकाय चुनाव में बत्ता मतदाताओं की भागीदारी तय कर अनुसारू वोट देवन रे जाग जगावन वाला खास कार्यक्रम रखा जा रहा है। स्वीप सतरंगी सप्ताह रातेत आज न्यारी न्यारी थोड़ा रैलियां निकाल और बिना डरिया मर्जीरा उम्मीदवार ने वोट देवन रो संदेश दियो चियो। बालोतरा जिला रा मोकल शर्माए विद्यार्थी वोट री आकृति बनार मतदाता जागरूकता री अलख जगाई। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS माई साफ कोई तय कर अनुसारू दावा री नियमित निगरानी और कागजात रो सत्यापन करो जा रो है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि RGHS रातेत बेहतर इलाज मुहैया करावन सा गई रकम साफ कोई सागे काम देवन तय करण मत है सरकार रो खास ध्यान है। योजना रातेत AI आधारित निगरानी और कागजात रा सत्यापन शंका लायक पैटर्न री पिछाण करी जा रही है। वे बतायो कि इन्हीं आधारों सीकर रा SP मित्तल मेमोरियल हार्ट और क्रिटिकल केयर अस्पताल ने RGHS निलंबित करती उचियो है। वट है वो अस्पताल छोड़ चुकया डॉक्टर रा नाम रिकॉर्ड माय हेरा फेरी री शंका पाछे मामला रिचार्ज करी जा रही है। केंद्र सरकार देश माय सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था माय सुधार सारू जनता री राय मांगी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग रे मुजब ई सारू परीक्षा करावन और परीक्षण तैयार करण वाली संस्थावां विषयां रा जानकारा और प्रौद्योगिकी पेशेवरां सा गई आमजन और सामाजिक संगठन 13 सितंबर ताई राय दे सके है। ध्यान जोग है कि श्री नंदन नीलकेणी री सदारत वाली टास्क फोर्स परीक्षावां माय साफ कोई शिकायतां आगीकरण और हितधारकां सागे संवाद स्थापित करण समेत न्यारा न्यारा उपायां मत राय मांगी है। राजस्थान हाईकोर्ट साइबर ठगीरा मामला री जांच रे दौरान बैंक खाता ने मनमाना तरीका फ्रीज करण रे बारा माय जांच एजेंसियां और बैंकां सारू विगतवार दिशा निर्देश जारी कीना है। अदालत शंका वाला लेन देन और टंटारी रकम माथे रोक लगावन रे बजाय संबंधित खाताओं लेन देन बिल्कुल बंद करण रा मामला माय गाइडलाइंस जारी कीने है। और ब्यूरो न्यूज डेस्क को सालेहा गाजी।
1: न्यायमूर्ति आनंद शर्मा री एकल पीठ साइबर ठगी जुड़ी 132 अर्जिया री सुनवाई करता तका हाल ही माए साइबर ठगी जुड़िया मामला माए शंका वाला लेन देन री बजाय बिना सोचा समझा पूरो बैंक खातो फ्रीज नी करण रो हुकुम दीनो है। अदालत कहो कि एड़ो करनो जनता रा बुनियादी हक और काम कमाई रा जरिया माथे चोट है। न्यायमूर्ति शर्मा कहो कि केवल जांच चालती रेवन रा आधार हो बैंक खातो बेमियादी बगत ताई फ्रीज नी राख्यो जा सके है। अदालत इबारा माए पुलिस महानिदेशक और साइबर क्राइम प्रभारिया ने सर्कुलर जारी करण सारू कियो है। इस आगे अदालत खाता ने फ्रीज राखण जुड़ी शिकायता री निगरानी सारू राज्य स्तर माथे एक आला अहलकार री नियुक्ति करण बाबती कियो है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य रा दौरा सारू रवाना भेक्या। ये मौके वे कहो कि हमारा चार दिन रा इन दौराओं मध्य एशिया में भारत री रणनीतिक साझेदारियां मजबूत फैला। प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान रा राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव सागे कारोबार, निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा और ऊर्जा हलका माय मदद बधावन रे बारा माय बातचीत करेला। ये बीचे प्रधानमंत्री मोदी रा उज्बेकिस्तान दौरा न ध्यान रखता थका वठेरी राजधानी ताशकंद माय नेरी नेरी ठोणा भारत रो तिरंगो झंडो लहरा तो नीचे राठियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित किया जावन वाला ई कार्यक्रम री 137वीं कड़ी भेला। वो कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल, आकाशवाणी समाचार री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे प्रसारित करियो जावेला। इसागे AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल माथे ही इनरो प्रसारण करियो जावेला। अलवर जिला रा गोविंदगढ़ हलका माय सिरमौर पुलिया कने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे माथे आज तड़के एक पिकअप और ट्रक री टक्कर रे कारण 3 जना री मौत वेगी और 2 जना जख्मी वेग्या। पिकअप माय सवार नौजवान मौके दम तोड़ दिनो। दूजी कानी सीकर माय आज तड़के बैटरियों चालन वाली गाड़िया रा शोरूम माय लाए लाग जावन रे कारण करीब 40 गाड़िया बढ़गी। पुलिस रे मुजब शॉर्ट सर्किट रे कारण लाए लागन रो अंदेशो है। अरब मौसम प्रदेश में चौमासारी बिरखा मंदी पड़बा सा गई पारो ओजो चढ़वा लग्यो है। जेनो घन खरठोड़ा दिन री बगत तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़क्यो। श्री गंगानगर में लाडला 3-4 दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो जा रियो है। लाडला 24 घंटा में प्रदेश रा ऊबरी हल्का में कठे कठे थोड़ी घनी बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब 4 सितंबर रो राज्य रा उगनी हल्का माय कठे कठे छुटपुट बरसात फै सके है। दूजी कानी जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य माय हाल ताई सामान्य करीब 17% कम पानी बरसियो है। डीग और फलौदी जिला माय सामान्य बत्तो में बरसियो। अजमेर, अलवर, जोधपुर, चूरू और सीकर समेत 20 जिला माय सामान्य बरसात हुई। राजधानी जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा समेत 19 जिला में सामान्य कम बारिश हुई। राज्य रा 693 छोटा मोटा बंधा मायू हाल तक 437 थोड़ा घना भरिया है, जबकि केवल 57 बंधा पूरा भर सक्या है। प्रदेश का बंधा माय कुल बूतारो 57% पानी भर सक्यो है। हालांकि लाडला साल इन मियाद माय 82% उम्बत्तो पानी भर क्यों हो। इस बीच राज्य में सैर सपाटा रे नेरी नेरी छोड़ा सैलानी लगातार पूग रिया है। उदयपुर और सिरोही रा आबूराज माई मोटी तादाद माय सैलानी पूग रिया है। माना सिरोही खबर नवीस बतायो कि आबूराज रा सुहावना मौसम माय सैलानी नक्की झील और गुरु शिखर समेत नेरी नेरी छोड़ा हरी भरी वादियां रो मजो ले लिया है।
1: माउंट आबू में लगातार 3 दिनों के अवकाश के चलते बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आए सैलानी यहां के सुहावने और धुंध भरे मौसम का आनंद ले रहे हैं। नक्की झील, गुरु शिखर, देलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मौसम में घुली ठंडक, बादलों और धुंध की चादर के बीच माउंट आबू की प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके आज आखा देश में न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी जिया। ये मौके नई दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राखी जिया खास कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल भया। ये मौके मांडविया जनताओं खेलना ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। लाखों की संख्या में हर गली में मैदान में देश के युवा 1 घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। नया भारत के निर्माण में देश के युवा फिट हो, सोसाइटी स्वस्थ हो, तभी समृद्ध राष्ट्र बनेंगे।

0: કાર્યક્રમમાં કાનૂન મંત્રીએ શરીરની હલચલના મહત્વ માથે જોર દીધો અને કહ્યું કે ખેલ શારીરિક તૌર ફિટ રાખણ સાગે બિના તનાવ જીવનમાં ખાસ કામ કરે હૈ. આખિરમાં ખાસ સમાચાર એક ફેર સુન લે રહો. प्रदेश में आवता महीना होने वाला नगरीय निकाय चुनाव री हलचल तेज हुई. हाल तक करीब 9000 पर्चा दाखिल कर दिया. केंद्र सरकार देश की सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में सुधार सारू हित धारक री राय मांगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला मन की बात कार्यक्रम री 137वीं कड़ी माए काल सुमारा 11 बजे विचार बतावेला. और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जनताओं खेलान रोजिनारी जिंदगी रो हिस्सो बनावन री अरज कीनी. इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो क्यो अनो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जावेला. नमस्कार.
1: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार. आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है. 7 बज चुके हैं. अब समय हो चला है किसान वाणी का.

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी हिम्मत,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनवा वाला सगला हेतालु श्रोताओं ने जका दूर दराज गांव ढणी दे मायने बैठर आपनो कार्यक्रम सुने है, बस सगला हेतालुआ ने घणे मानसू प्रभु दयाल वर्मा रो राम राम। और राजू भाई आपने भी मोकलो राम राम।
7: राम राम प्रभु भाई और किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला सरता ने राजू चौधरी को गणो गणो राम राम सा।
6: राजू भाई कहीं हालचाल?
7: हालचाल चुका है सा, देखो हालचाल चुका रंग बा के लिए अपन देखो खेल कूद की जो अपने प्रतिक्रिया है वह भी चालू रंगनी चाहिए।
6: बिल्कुल राजू भाई, देखो की हो जावे है के भाई के स्वस्थ शरीर के माय नहीं, स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो रेस के है, या अपना मायत है बड़ा बुजुर्ग है वे बातड़ी किया करता के भाई पहलो सुख निरोगी काया। अपनी काया निरोगी रहे आप अच्छा मनसू कोई काम जो करा भी के मायने सफलता लेवा, तो एक वास्ते जरूरी है कि अपना अपनो तन और मन दोनों स्वस्थ रखने की आवश्यकता है।
7: बिल्कुल, और आज है देखो राष्ट्रीय खेल दिवस, तो यो भी अपन यही संदेश दे रहे कि आपा जो चाहे ग्रामीण परिवेश में हो चाहे शहरी परिवेश में हो, तो अपना जो बच्चा है या आपा खुद हाँ, तो अपन खेल कूद और जो व्यायाम की जो प्रतिक्रिया है प्रतियोगिता है बम सब में और अपना खुद का स्वास्थ्य के आपा जागरूक हो और आपा जो करना चाहिए।
6: बिल्कुल राजू भाई थे सच्ची बात कह रहे हो। देखो आज आपने जगह हॉकी का जादूगर के नाम से जगह देश और दुनिया के माने जाने जावे मेजर ध्यानचंद जी, मन आप कार्यक्रम के माध्यम से मनरेगा अपना फूल चढ़ावा के अत्ता बड़ा शख्सियत आपने देश के मायने हुआ हॉकी।

0: गया जादूगर सो होकी ने नई ऊंचाई पर भी लेर गया। तो राजू भाई जहाँ पुराना टाइम का मायने जगह परंपरागत खेल है जहाँ गिल्ली डंडा है सतोलिया है कबड्डी है ताइला है जगह खेलिया करता आज वो टाबरिया वगैरह नाव तक भी गुंजान है। तो अपन ब खेलने जीवता रांकना है पाचा देखो और खेलने अपन यहाँ नहीं कह भाई कदे कदे अपन खेल खेल लिया अपन रोजिना का अपना जीवन का मायने खेल और व्यायाम में अपन सम्मिलित करना है राजू भाई।
1: बिल्कुल और देखो खेल राष्ट्रीय खेल दिवस को जो उद्देश्य वो भी यही है कि युवाओं को खेल के प्रति जो जागरूक करना लोगों स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनावा के लिए अपन आगे बढ़ाना और देश में जो खेल प्रतिभा बन पहचान आगे बढ़ावा अवसर देवो खेल भावना अनुशासन न आगे बढ़ावो और जो भारत का महान खिलाड़ी और उपलब्धियां हैं बाकी याद रखो।
0: बिल्कुल बाकी याद रखा और आप अपना टावरिया ने देखो घर से बाहर निकाल बन क्या अपन बन बताना पड़ो और देखो टेक्नोलॉजी को दौर है जरूर आप देश तरक्की करे लेकिन साझे साझे आप अपने स्वास्थ्य ने खेलना के माध्यम से भी फिट रखा चोखो रखा और अपनी तंदुरुस्ती बनी रहे इस वास्ते खेल खेलना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सर तो आगे बढ़ाओ कार्यक्रम ने।
0: बिल्कुल कार्यक्रम देखो आगे बढ़ावा और पहले अपने एक बातड़ी सुनिया और भी क्या बच्चा बातों से और कर तो कार्यक्रम के मायने जानकारी देवा के वास्ते अपने सागे राकेश कुमार यादव जी और कहीं है मिश्रित कृषि और अनुबंधित खेती के ऊपर अपन जानकारी और असो बातचीत अपने चंचल बहन कर रहे हैं तो क्यों ने चंचल बहन ने देवा माइक बस वहां बातचीत करवा।
1: बिल्कुल
2: तकनीकी का युग में जद नवाचार अपनावा ला तो साधारण कोनी आपा विशेष किसान कहलावा ला। तो किसान भाइयों किसान वाणी में आज आपा बात कर रहे हैं एक अशा ही नवाचार की जिन्हें कहवा हाँ अनुबंध कृषि और मिश्रित कृषि जो काई है इको काई महत्व है इसो अपना काश्तकार भाई बहन कहीं यहाँ जुड़ सके है। सवाल बहुत सारा है पर जवाब देवा खातिर विशेषज्ञ की तरफ चाल लू वेलो और विशेषज्ञ अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है राकेश कुमार यादव। तो सहूं पहले यादव साहब कार्यक्रम में घने मानो स्वागत राम राम साहब।
3: राम राम साहब
2: आज को जो विषय है बहुत ही अनोखो विषय है अनुबंध कृषि री आप बात कर रहे हैं मिश्रित कृषि री आप बात कर रहे हैं तो जान पो चावला कि यो अनुबंध कृषि होवे काई है और क्यों एक ही जरूरत पड़ रही है अपने।
3: बहुत अच्छे सवाल से था कुबी मैडम। अनुबंध कृषि को मतलब हो वे कि फसल बुआई से पहले ही कंपनी के साथ ही कंपनी आवे छे किसान कने और फसल की बुआई से पहले ही कीमत तय कर दे छे 102 जाए छे फसल बुआई से पहले ही
2: जी।
3: कृषि अर्थशास्त्र को विद्यार्थी हो बाके नाते मैं थाने बताऊं कि राजस्थान का जो किसान हुए वह के मुख्य दो जोखिम आवे। पहली जोखिम आवे है जी बाजार का मंदी
2: जी
3: और दूसरी आवे मौसम की मार। तो आज को जो विषय है और मौसम की मार और बाजार की मंदी सु हटाबा के लिए किसान जो प्रभावित हो जाए दूर करबा के लिए ही है।
2: तो कई चरण है एका की तरीका को काम ये अनुबंध खेती में देखभाल मिले साहब।
3: अनुबंध कृषि में जिया कंपनी किसान के आवली ना तो पहले फसल की बुआई सु पहले ही भी को भाव मोल तय कर ले ली और भी का मायने एक लिखित समझौतो छे जिया का अकाल ने फसल को खराब हो गो ये प्राकृतिक आपदा की वजह सु तो या तो फसल बीमा जो कंपनी डील करी जब फसल को बीमो दे ली बीमो करवावली या फिर लागत में बिन सहायता प्रदान कर ली किसान।
2: अच्छा तो पहली सुनियो तय हो जावे कि मैं था की फसल ने खरीदा ला तो कहीं कीमत वगैरह सब तय हो जावे।
3: बिल्कुल मैडम थे सही सवाल करे जो और कीमत भी तय हो जाए छे अरे एक लिखित समझौतो हो छे।
2: अच्छा तो यो कानूनी समझौतो जो होवे इमें कहीं कोई वकील वकील लागे कहीं
3: नहीं वकील को ना एक लिखित समझौतो हो छे सरल भाषा में यदि कंपनी कदे छे जो किसान के साथ चोट कर जाए छे या फिर जिया कल ने कह दे छे कि मैं था की फसल ने कौन खरीदा तो भी स्थिति में किसान जिला स्तर मारा कलेक्टर कन शिकायत कर सके छे क्योंकि भी कने के प्रूफ रचे सबूत रचे कि मैं था कने फसल खरीदला आ चीज लिखित में रचे।
2: अच्छा अच्छा तो जो आपना काश्तकार है वे अनुबंध खेती करबो चावे या मिश्रित खेती करबो चावे है या फिर जो भी नवाचार हो बिना अपनाबो ही चावे क्योंकि किसान भी आगे बढ़बो चाह रहे है कदम से कदम मिला नया जमाना के साथ चालबो चाह रहे है ऐसी स्थिति में अनुबंध कृषि एक जो नयो विचार है और कंपनियां बाको जो फसल है बिना खरीदे है तो बाने एक अंदाजा तो हो जावे कि माने ये तरीका को काम करना है लेकिन कई बार जो मौसम हुए वो बिगड़ जावे और जो गुणवत्ता कंपनी चाहिए ही बशी गुणवत्ता को जो है फसल को उत्पादन कोनी होवे तो कहीं ई पर असर पड़े फिर।
3: नहीं मैडम असर को देखो बीच टेम जहाँ सौदो तय हुए छे ना किसान और कंपनी के बीच में तो बी टेम भी लिखित समझौता में आ चीज भी लिखी जाए छे कि था को फिक्स होगो भाई यदि मारो ली मौसम की तो वो

0: साइन करालम में
1: अच्छा।
0: माने लिखित में रहे फसल को बीमो कंपनी दे जिया मैं थाने पहले बताया और लागत में यदि लागत प्रभावित होगी फसल खराब होगी तो भी कोई दवाई की रोग कीट लागो तो भी प्रभावित हुई ना तो बीमा भी वह कंपनी हेल्प करे किसान की सहायता करे
1: जो खर्चो करे है काश्तकार भी की जो मदद है वह कंपनी
0: करे स्पेशल कोई खर्चो आयो ना जो लागत होगी फसल को बीमा में खराबा की बात हुई ना जना।
1: अच्छा अब बात कर रहा है यादव साहब मिश्रित खेती की आपने अठे पानी बयाई कम है राजस्थान में और आप कई बार हुए कि बाजरो है या ग्वार है अशी जो फसल है हमें सूखो की मार पड़ जावे है अब अशी स्थिति में जो मिश्रित खेती है या कहीं काम कर सके है और काश्तकार ने नुकसान से बचा सके।
0: देखो सबसे बड़ो सवाल से था और अच्छो सवाल से कि मिश्रित खेती कहीं बचा होली तो पहले स्टेप में था बता दू मैं कृषि अर्थशास्त्र को बहुत भाग नाते एक कहावत से मारवाड़ी में एक अंडा यदि आप सारा एक ही टोकरी में रखा ला ना तो कारणवश वह टोकरी गिर गई तो सारा अंडा फूट जाएगा ठीक ई प्रकार ई कहावत पर आधारित से आ चीज की किसान ने सिर्फ खेती माले फसल माले डिपेंड निर्भर नहीं रहनो उनके साथ में पशुपालन मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन भी करनो यदि कारणवश जिया प्राकृतिक आपदो सूखा बाढ़ अकाल की वजह से अपनी फसल खराब होगी तो भी स्थिति का मायने बकरी पालन कर रहे वो रोज रोजिना की आमदनी ले सके
1: जी भूखा मरबा की नौबत तो को नहीं
0: भूखा मरबा की नौबत तो कतई को ना वो रोजिना आराम से आपका पैसा दूध और बेच अंडा बेच और मधुमक्खी पालन करे तो शहद बेच और तो फिर आप काम काट सके।
1: अच्छा तो आप बता रहे हो कि मिश्रित खेती की तरफ भी काश्तकार ने ध्यान देना चाहिए और यो जो एक नवाचार है अपनाना चाहिए काश्तकार हमेशा देखे कि क्यों नहीं हो तो मैं करूं पर थोड़ी सी अगर पीसा की सहायता भी ने मिल जावे तो आसानी होवे तो जब मिश्रित खेती की तरफ काश्तकार जावे तो कोई बिना आर्थिक मदद मिले सरकार की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से।
0: देखो स्पेशली मिश्रित खेती के लिए होना पर पशुपालन पर वो लोन ले सके छे और जिया किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करे छे बैंक तो किसान ने बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सके छे और आपकी फसल कटाई बने जना भाई पैसा लौटा सके छे।
1: अच्छा साहब अच्छा एक बात बताओ आप पारंपरिक खेती करा कई बार आप देखा हाँ कि मिश्रित खेती है जो आपना ढांडा ढोर भी में आवे है और आपनी फसल भी आवे है तो दोनों के बीच में जो तालमेल बैठावा की बात आवे तो बिना की तरीका देखे काश्तकार।
0: देखो मिश्रित खेती को असली मंत्री यो छे कि एक को कचरो दूसरा की खुराक जिया पशुपालन में पशुओं को गोबर अपनी फसल के लिए खुराक कोई काम करे छे और जिया फसल अवशेष जिया आज आपनो खराब हो गो फसल को तो फसल जिया बाजरो बार अपना खेतम छे और बारिश आ गई और हवा चाल गई तो वो लौट गो तो बी स्थिति में दाना तो भी कमाई ने पड़ ला कौन पर वो जो घास छे ना देखो फसल अवशेष वो अपना फसल में को अपना पशुआ के लिए चारा का रूप में काम आ जाए लो तो अहिया छे मैडम बात की वो पशुआ को जो मुफ्त और शानदार चारो बन जाए छे वह तूड़ीर कड़बीर सूखी पत्तियां तो था का जो अपना जो पशु छे ने बको गोबर जो गोमूत्र मिले जे बेसू और जिस जगह का माध्यम से आप बेहतरीन कैचवा की खाद बना सका था और गोबर की खाद और भी के साथ में जीवामृत बना सका था तो बिको उपयोग आप फसल में करा ला तो अपनी फसल एक शानदार हो जाएगी बढ़िया उत्पादन मिल लो बिको उपयोग जी आप कैचवा की खाद को आप अपना जो फल वृक्ष है यदि वह में डालना चाह तो ग्रोथ की वृद्धि जल्दी होली और उत्पादन भी जल्दी हो लो और ज्यादा हो लो।
1: अच्छा यादव साहब मिश्रित खेती की आप बात करें और कह रहे हो कि एक को खराब हो जो है या एक को अपशिष्ट दूसरा को खुराक बन जावे या तो बात सही है ही है कई बार मिश्रित खेती काश्तकार के लिए आज का दौर में जो ढांडा ढोराने में पाले है एक नयो रोजगार भी बन जावे जी आप जीवामृत री बात करा या वर्मी कम्पोस्ट से आप बात करा तो इन्हें की तरीका लेट जा सके एक नया और अनोखा रोजगार की तरह।
0: हाँ देखो मैडम सबसे बढ़िया छे काम मिश्रित खेती जो थे बताया और मैं उठान बताया तो मिश्रित खेती में फसल सु तो मिलगा फसल का उससे सर पशु ने चारो और पशुआ को जो छे कि जो गोबर मलमूत्र भी को उपयोग आपा वर्मी कंपोस्ट में यदि आपा ना कहीं खेती कम छे और खेती यदि आपा बढ़ा रहा चा तो पशुपालन बढ़ जाओ लो साथ में वो चारो बह का उपयोग में आ जाए लो और जो बको गोबर मलमूत्र छे विश्व वर्मी कंपोस्ट तैयार करे और एक आपको खुद को नयो रोजगार तैयार कर से खुद के लिए भी और खुद दूसरा ने भी वो रोजगार दे सके बहुत अच्छो कदम हो सके
1: बेच भी सके छे
0: बेच सके छे आराम से बढ़िया जिया बलक में 5 रुपए की लंबी जाए ली और यदि छोटा छे तो फिर थोड़ा सा 20 आपसे बिक छे।
1: अच्छा अगर आप नवाचारा की बात कर रहा अनुबंध खेती की बात कर रहा मिश्रित खेती की बात कर रहा और किसान का जोखिम की बात कर रहा हूं, तो आम में तालमेल कहीं बैठा सके काश्तकार?
0: देखो तालमेल में थाने पहले भी बताया जी, बाजार सबसे दो ही मुख्य अपना राजस्थान का किसान के लिए समस्या आवे, बाजार की मंदी और दूसरी आवे जी मौसम की मार। बाजार

0: सरकार की मंदिशु बचबा के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अनुबंधित खेती न अपना और भी मंदिशु बाहर निकल सके छे। जी हाँ, आज छेक जो भाव गंवार का भी टेम तय होगा भाई 60 रुपया किलो लूला, 6000 रुपया प्रति क्विंटल था कना खरीदू लो, चाहे बाजार में भाव बिका 4000 मतलब 40 रुपया किलो ही क्यों न बिक रहे हुए भी। स्थिति में किसान अभी मारसू बाजार की मंदी के भाव से बच जाए लो। दूसरी चीज ओना पोना भाव मिलवा के बजाय ज्यादा भाव मुनाफा तो कमाओ ही लो, साथ में वो मंडिया का चक्कर सु भी बच जाए लो। आज अपनी फसल न बठे लेर जाओ भी मंडी में नई भाव मिलिया तो ट्रैक्टर में गाल ट्रोली में वापस ले आओ, वो चक्कर कटवा सु बच जाए लो। किसान का ना डायरेक्ट डीलर आओ लो बटा सु लेर जाए लो, जितना में सौदो तय हो जो और दाम भी ना दे दे लो तो बढ़िया दाम मिल जाएगा।
1: अच्छा, एक काश्तकार समझदार काश्तकार कद बन सके है वो कौन सो नवाचार अपनावे जिसु की किसान की संभावना भी न कम हो जावे।
0: हाँ देखो, नुकसान वाली बात हुई ना तो मैं कृषि अर्थशास्त्र को छात्र हो बाके ना तो मैं थाना आ बताऊंगा, मैं को उद्देश्य यू ही रहे किसान कने कि किसान को कम से कम इनपुट कॉस्ट आवे, मतलब लागत कम से कम और कम से कम लागत का कॉम्बिनेशन में एक संयोजन में ही वो सबसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले ले। तो डीएपी और जी हमें मिश्रित कृषि का बारे में थाना बताया, खेती का बारे में एक में जी आप गोबर की खाद इसमें कैचवा की खाद बना लिया तो ठीक भी प्रकार आपनों डीएपी और यूरिया को खर्चो तो आदो होगो और अपनी जमीन की ताकत भी बढ़ ली।
1: जी
0: हाँ, कहीं वजह डीएपी और यूरिया को असर हर सीजन वाइज अपना डालना पड़ लो, 6 महीने ती रचे, जबकि गोबर की खाद आज आप खेत में डाल दिया तो 3 साल तीन धीरे धीरे पौधा ने मिल लो और अपनी धरती उतरली कुन जो अपना मारवाड़ी में खाचा भी प्रतिभा हो जाओ जो सहनशील हो, मतलब भी बह डाला ला तो ही आप उत्पादन ले सका था, जबकि गोबर की खाद में या कौन है आज डाल दिया तो 2-3 साल कहीं धीरे धीरे धीरे धीरे पौधन मिलबो कर लो और इन्हें खर्चा शून्य बजट और कम लागत वाली आई की स्मार्ट खेती से।
1: अच्छा, तो स्मार्ट किसान बनवा के लिए और कहीं भी ने दूर की सोच और कदम उठानो चाहिए।
0: नहीं, ए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिश्रित खेती और अनुबंध कृषि के साथ में वो जागरूक किसान से तो सरकारी कृषि योजना को लाभ ले। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट को ही कमाए ना अपना नाम आयो तो वर्मी कंपोस्ट बेड की इकाई बना बने वो छे कि जो किसान अपना अप्लाई कर सके राज किसान साथी पोर्टल का माध्यम से तो भी ने मिल जाए भी को लाभ असिस्टेंट सहायता प्रसर। और दूसरो चीज फसल बीमो, फसल की बुआई से पहले ही फसल बीमो करवा लेने। जी हाँ, 100 रुपया की फसल ने बचावा के लिए यदि आप 2 रुपया लगा जाए तो बिन खर्चों को माना ला पा। आज छे जो फसल को खराब हो रिच जना अपने साउंड टू नुकसान से, जबकि कम लागत में ही अपना ने जी हाँ गवर्नमेंट या खरीफ की फसल को तो बिना 2% देना पड़े जे। तो फिर बाद में जी हाँ अपना ने फसल बीमो अपना खराब हो ना प्राकृतिक आपदा तो फसल बीमा फसल खराब हो बाके बेहतर घंटा के भीतर अपना ने कृषि रक्षक पोर्टल जिनका नंबर छे 14447 वाला सूचना देनी पड़े जे। कारणवश किसान नहीं दे पायो तो वो आप अपना नजदीकी कृषि कार्यालय में लिखित में 7 दिन के भीतर दे सके छे।
1: जी
0: का मायने भारियों भर कम प्रीमियम तो गवर्नमेंट दे छे आपनों तो कम ही लागे छे।
1: जी अच्छा, कई बार अहियां भी होवे काश्तकार की शिकायत रहे की मैं तो फसल बीमो करवाया पर माने तो मुआवजो को नहीं मिलियो, बिल्कुल कई कारण वैसे है।
0: देखो मैडम, सबसे पहलो कारण वो वैसे भाई या तो वो छे जो सूचना समय सुकून दियो, यदि अपना ने पतो ही न चाले लो कोई चीज को भाई ई फसल को ई खेत में और ई टाइम माड़ा खराब हो जो भी को बीमो मिलबो भी मुआवजो मिलबो थोड़ो सो वो हो जाए। दूसरो कारण वो वैसे यदि वो किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे छे तो किसान जी टाइम बीमो करवाओ छे तो बैंक वाला कहीं वैसे जी पहले जो फसल को डिसाइड छे ना भाई पिछली बार वो गंवार बाजरो बाए छो तो बाजरो और गंवार को काट दे छे तो भी किसान ने भी एक्टिव रहना पड़ लो, जागरूक रहना पड़ लो कि भाई अब की बार में ई खेत में आ फसल अति दूरी में बायो छू और इको में बीमो कटवाबो चाहू छू, पिछली बार तो मैं एक मायने छे जो गंवार और बाजरो ने बार मूंग और मोट बायो छू तो इन्हें थे चेंज कर दियो और वह चेंज न करे तो भी स्थिति का मायने छोड़ो छू मुआवजा वो बैठे कौन है।
1: तो जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है,
0: बहुत ज्यादा नहीं जो सरकारी कृषि योजना छे बीसु जागरूक रहना जुड़वाना अपना ने सरकारी कृषि कार्यालय में मिल तो रहना चाहे कोई आजकल घनी डिजिटल सुविधा है व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक से जुड़ जाओ, एक किसाना को जो भी जागरूक किसान से भी का ग्रुप में जुड़ जाओ, यदि कोई सरकारी कृषि योजना आई छे नहीं तो भी को लाभ लेबा के लिए भाई एक सूचित कराला थाने ग्रुप में तो भी सो थाने लाभ मिले लो समय सु अप्लाई करो।
1: जी बहुत ही बढ़िया जानकारी राकेश कुमार यादव साहब आप दे रहे हो। चालता चालता काश्तकारा ने कहीं कहबू चाहूला साहब।
0: देखो चालता चालता मैं तो आई कहबू चाहूंगू जो निष्कर्ष तो वो निकल जे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने अपनाओ और दूसरी चीज फसल बीमो करवाओ। सबसे बड़ो तो वो छे जे आज अपना राजस्थान की देख लियो बारिश से अब पहले

0: की तुलना में कम हो लगी। पिछली बार बढ़िया बारिश, अब की बार कम, तो अभी की तुलना में आज खराब हो गो हार्वेस्टिंग कटाई का टाइम मारे, यदि खराब हो जाए तो फसल बीमा करा लोग तो फसल को मुआवजा थाने मिल जाए।
1: जी बहुत बढ़िया जानकारी और बहुत सातरी भाषा में आप तो बिल्कुल देसी भाषा में समझाया साहब, माँ का श्रोताओं ने जरूर समझ में आवली। राकेश कुमार यादव साहब अनुबंध कृषि और मिश्रित कृषि रो महत्व विषय पर बहुत लूठी जानकारी दिया, इसके लिए आपको घनो घनो धन्यवाद साहब।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: चला बोल रहा
2: है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था।

0: ही कमजोर पड़ जाएगी तो बच कैसे सेहतमंद होगी।
1: अरे पहले ऐसा नहीं था।
0: पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
1: पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
0: अरे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: हाँ तो प्रभु भाई, बहुत ही छोटी जानकारी दोया चंचल बहन, मिश्रित और अनुबंधित खेती के बारे में और विशेषज्ञ जो को जानकारी दिया राकेश कुमार यादव जी, तो दोनों को घना मानो धन्यवाद। और धन्यवाद आप देखो बी बोल रही नहीं देवा आप सुनावा तो छोको से एक लोक गीत।
5: बिल्कुल बाबा री मिट्टी सी लोक रचना बहादुर उम्र शुरू हो चुके है, तो क्योंकि बाबा का जगह जात जा रहा है जगह जगह, तो जगह रेडियो सुनता जा रहा है या खेतों का मायने काम करती टाइम जगह भाई लोग रेडियो सुन रहे हैं, तो आप बाबा री एक चौकी सी लोक रचना भाई लोगों तक पूर्ति करवा दे।
4: बिल्कुल सर।

0: हाँ तो राजू भाई,
1: हाँ जी,
0: बहुत ही मीठी सी बाबरी लोक रचना तो भाई लोगों तक पूगती हुई।
1: बिल्कुल,
0: देखो अब कहीं जानकारी भाई लोगों
1: अब मौसम की जानकारी है सर। देखो बाहर देखो मौसम में थोड़ा साफ सी है आज तो, और अधिकतम जो तापमान रही जयपुर को 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान रही 25 डिग्री, और कोटा की बात करा तो कोटा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम रही और न्यूनतम रही 25 डिग्री सेल्सियस, और बीकानेर की बात करा तो अधिकतम तापमान रही 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 29 डिग्री सेल्सियस। और देखो बाहर जो मौसम बन रहे है बेसा तो बरसात की संभावना तो कोई बता रहेगी,
0: और देखो प्रकृति का रंग है शायद कदे बरसात ज्यादा हो जाए कदे कम हो जाए है तो देखो। पर देखो राजू भाई अब घड़ी सारो कर रहे गए आज का किसान वाणी कार्यक्रम को टाइम अठाई पूरा हो रही है, तो भाई लोग आज का कार्यक्रम सुनते था का भाई प्रभु दयाल वर्मा
1: और राजू ने
0: जो आज्ञा
1: करा राम राम, राम, राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे खेती बाड़ी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनवा वाला सगला हेताड़वा ने घणे मानसू प्रभु दयाल वरमळो राम राम साहे। और राजू भाई थाने भी मोकलो मोकलो राम राम साहे।
3: राम राम प्रभु भाई और खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन वाला सगला ग्रामीण भाई बहना ने राजू चौधरी को गणो गणो राम राम सा। और देखो प्रभु भाई, बरसात हो रही है, आपने चौमासा की फसल लाग रही है। कोई किसान भाई है जिको अगेती फसल लगाया, जगह मूंग बाजरे की फसल की कटाई भी चालू कर लाग रहा है। और कुछ है जो बरसात की बाढ़ उड़ीक रहा है, कदा बरसात कम हुई है तो जो पानी भी दे रहा है। और जो फसल ने जलवा नहीं देना है, पानी है तो पानी बंद देना है। फसल की जो पकाओ दी है भी अंदर पानी की भी आवश्यकता है। और कई किसान भाई है जो सब्जियों की खेती कर रहे थे, वो भी
2: बिल्कुल
3: अगेती फसल लगावा की भी सोच रहा है, प्रक्रिया में लाग रहा है। तो देखो जो किसान भाई ने जो सब्जी की खेती करे और पौध तैयार कर रखी है अगेती फसल का हिसाब में, जगह टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, तो वो बाकी पौध ने लगा सके है साफ मौसम देकर।
2: बिल्कुल।
3: और जो अगेती सब्जियां और आगे आबाद समय में लगाबो चावे जगह रबी के लिए, तो वो देखो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आपने टमाटर मिर्ची बैंगन सारी फसल जो है
2: बिल्कुल
3: बाकी पौध तैयार कर सके।
2: बिल्कुल सही समय है। देखो ये टाइम मैंने अगस्त सितंबर का मैंने जगह भाई लोग फूल गोभी जी आप बताया, पत्ता गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है,
3: बिल्कुल
2: बाकी इसकी पौध नहीं टाइम कमाने की अगेती फसल कोई भाई लोग सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमाना चाहो तो वहां के लिए वो बहुत बढ़िया टाइम है, ये टाइम कमाने में कर सके है। और अगर अगेती फसल किसान भाई लेवल आ तो वहां सुधे को बहुत बढ़िया फायदा उसके है। अगेती फूल गोभी की जहां अगस्त सितंबर को टाइम सही रहे है मायने भी कर सके, पत्ता गोभी को भी वही लगभग अगस्त और सितंबर को टेम रहे। अब देखो नर्सरी जगह जगह तैयार करने भी को थोड़ी सी जगह जहाँ वहाँ है जो पानी निकास वाली जगह होनी चाहिए राजू भाई।
3: बिल्कुल देखो सामान्य जमीन ऊपर उठेली होनी चाहिए ताकि जो अपना बरसात हो या जो ज्यादा पानी अगर भी आ जाए तो अपनी जो पौधा खराब नहीं हो, जल निकास आसानी कर सका।
2: बिल्कुल। और देखो सड़ी हुई गोबर की खाद है या कंपोस्ट खाद है जमीन का मायने मिला माटी ना अच्छी तरह भुर भुरो कर भी के बाद के मायने की बीज को ज्यादा गहराई के मायने भी नहीं गिरनो चाहिए, वो भी एक अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए।
3: बिल्कुल सा। और देखो जो उन्नत किस्म को है बढ़िया मुनाफा दे वालो जो बीज है वही काम में लेना चाहिए, बीज ने उपचारित करके ही लगाना चाहिए ताकि जो रोग कीड़ा है वे नुकसान नहीं करे। और आपने जो फसल है चौकी पौध तैयार हुए और आगे आप खेत में लगाओ तो अपन चौको जो मुनाफा वाली उत्पादन मिले।
2: बिल्कुल मुनाफा वाला उत्पादन मिले। देखो जब लगा हुआ तो भी मैंने 2-4 पत्ती

0: ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪੌਦ ਗਵਾਏ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗਵਾਏ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲ ਕੀ ਰੋਪਾਈ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ
1: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਪਤਾਹ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਬ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਤਰਫ ਲੇਟ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਮਸਰੂਮ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਰੋਣਾ ਅਬ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਤਰਫ ਲੇਟ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪ ਚੀਫ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ IHITC ਦੁਰਗਾਪੁਰਾ ਜੈਪੁਰ ਕਹਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਮਸਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਗੁਣੋ ਗੁਣੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ
2: ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ
0: ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਮਸਰੂਮ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਰੂਮ ਕਾਈ ਹੋਏ ਹੈ
2: देखिए साहब मशरूम का मतलब है कि एक फपूंद या इंग्लिश में बोलते हैं तो फंगस
0: जी
2: जैसे अपने गांव के अंदर जो है अचार डालते हैं उसके अंदर तेल भी डाला जाता है तेल का स्तर नीचे चला जाता है और वो अचार में जो कैरियां डाली थी वो ऊपर रह जाती है तो उनके ऊपर एक सफेद सफेद सी ग्रोथ आ जाती है वृद्धि आ जाती है
0: जी
2: वो फंगस ही है ये फंगस क्या है कि खुद खाना नहीं बनाती क्योंकि इसमें पत्तियां वगैरह होती नहीं है केवल एक धागा ही रहता है उस धागे में इसकी जड़ें रहती है वो ही सब कुछ करती है इसका काम तो ये फफूंद वैसे तो गंदा है वैसे बीमारियां फैलाता है लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने इसके अच्छे गुणों को पकड़ करके अपने को कहा है कि आप इस मशरूम को उगाओ और ये जो मशरूम आपको जो है जैसे डायबिटीज से बचाएगा कैंसर से बचाएगा किसी के कब्जे रोग है तो उससे बचाएगा तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मशरूम एक फंगस या फफूंद है
0: तो मशरूम की खेती करवा की काई आवश्यकता है क्यों ये किसान भाई ने मशरूम की खेती करनी चाहिए
2: अब देखिए जी क्या है कि टाइम आ रहा है कि जमीन कम पड़ती जा रही है प्रति व्यक्ति जो है जमीन जोत का आकार जो कम होता जा रहा है पानी की भी कमी होती जा रही है और इस वातावरण का पता नहीं कब क्या हो जाए
0: जी
2: फिर क्या है कि आजकल के जो युवा है वो खेती नहीं करना चाहते उनको धूप लगती है तो उनको हम जो उनकी खेती की पूर्ति करना चाहें धूप से बचाना चाहें तो ये इंडोर कल्टीवेशन में आता है तो हम अपने घर के अंदर जो कमरे हैं उनके अंदर खेती कर सकते हैं या खेत में जो है झोपड़ी सरकंडे की बनवा करके उसके अंदर खेती कर लें
0: जी
2: तो वो बच्चे उसमें खेती कर लेंगे अपने जो है आय का जरिया इसको बना लेंगे और जो है इसमें जो अच्छे गुण है उनको अपने लोगों तक पहुंचा कर कुपोषण से भी उनको बचाएंगे तो इन तीनों चीजों की वजह से पानी कम पड़ रहा है जमीन कम होती जा रही है वातावरण का कोई पता नहीं तो प्रतिकूल दशाओं से बचते हुए थोड़ी सी जगह में थोड़े से पानी के अंदर पानी चाहे खराब क्वालिटी का भी हो हम मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं
0: जी और आप बात करें अपने राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान के मायने मशरूम की खेती कोई किसान भाई कर रहे हैं कई बार
2: हाँ जी अलग अलग काश्तकार है जैसे अपने शिक्कर की बात करें तो मोटाराम जी शर्मा करके नानी गांव से हैं वो बढ़िया कर रहे हैं ऐसे ही हमारे जो है एक चौधरी साहब है अपने भंकरोटा साइड में वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे कई दूसरे और लोग भी है उदयपुर वाला डिवीजन है उसमें भी कर रहे हैं अलग अलग जगह अलग अलग काश्तकार है कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं जो अपने जंगल के अंदर नेचुरली उग जाती है जो खाने योग्य है उसको इकट्ठा करके बेच करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं अपने राजस्थान के अंदर तीन प्रकार का मशरूम अपन जो है खेती में लेते हैं उसमें पहला जैसे साल भर के लिए करना चाहते हैं तो वो ढींगरी मशरूम है इंग्लिश में ओएस्टर बोला जाता है
0: जी
2: और इनके भी वैज्ञानिक नाम होते हैं तो प्लोरोटस सिट्रिनोप्लेट स्पीसी जिसको बोलते हैं वो इसका वैज्ञानिक नाम है ये ले सकते हैं पूरी साल भर कर सकते हैं दूसरा मशरूम अपन जो है सर्दियों के अंदर लेना चाहते हैं तो उसमें बटन मशरूम है और बटन मशरूम का नाम जैसे वैज्ञानिक नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस है और ऐसे ही हम दोनों का टेस्ट गर्मी के टाइम में लेना चाहते हैं तो तीसरा मशरूम है जिसको दूध छाता बोला जाता है सफेद कलर का ही होता है तीनों ही मशरूम दूध छाता को हम साइंटिफिक नाम लेते हैं तो केलोसाइबा इंडिका के नाम से जाना जाता है तीनों को अलग अलग टाइम पर उगा करके अच्छा सा मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं कुपोषण से भी बच सकते हैं
0: कोई भी किसान भाई जब मशरूम की खेती करना चाहे तो बिन उगावा की काई विधि हुए कौन कौन सी बातों को बिन ध्यान रखना चाहिए
2: देखिए यदि किसान कोई भी शुरुआत करता है मशरूम से तो सबसे पहले उसको ढींगरी मशरूम पर जाना चाहिए
0: जी
2: क्योंकि इस ढींगरी मशरूम को जिसको इंग्लिश में ओएस्टर बोला जाता है हम प्रायोगिक प्रैक्टिकल मशरूम बोलते हैं और इसमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है प्लास्टिक का एक ड्रम लेते हैं जिसमें 200 लीटर पानी आ जाए इस कैपेसिटी वाला
0: जी।
2: और फिर जो है 20 किलो गेहूं का भूसा लेते हैं हमने एक ड्रम लिया उसमें 200 लीटर पानी आने वाले में 100 लीटर ही केवल पानी भरा आधा खाली रखा आधा भर दिया उसमें 20 किलो गेहूं का भूसा हमने डाला और फिर तीन दवाइयां ली इस भूसे के अंदर हो सकता है कोई बीमारी हो तो उससे बचने के लिए बाविस्टीन ले ली

0: लिया, इसमें कोई कीड़ा हो उसे बचने के लिए इमिडाक्लोरपिड ले लिया, और इसको साफ सुथरा करना चाहते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड नाम की दवा, जिसको फॉर्मलिन शॉर्ट में बोलते हैं, वो हम कुछ निश्चित मात्रा में लेते हैं। जैसे 100 लीटर पानी के हिसाब से एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपन करें तो 5 ग्राम बायोस्टीन होगा, 25 ml अपना इमिडाक्लोरपिड होगा, 250 ml अपना फॉर्मल्डिहाइड होगा। वो एक बाल्टी में लेके पानी में घोल करके, जो हमने पानी ड्रम में भर दिया था, 20 किलो भूसा भर दिया था, उस ड्रम के ऊपर घुमाते हुए शाम के टाइम में ये काम करते हैं। दूसरे दिन जो है ये इस ड्रम को उस जगह पर जहाँ पर ये रखा हुआ था वहाँ पर एक ढलान वाली जगह बनाकर इसमें से भूसे को बाहर निकालते हैं, एक घंटे में पानी निथर जाता है, फिर इस गीले भूसे को 6-6 किलो की ढेरियां बनाकर के बीज डाल करके थैलियां भर देते हैं, मशरूम उत्पादन करते हैं।
1: जी अगर थे बात करिए कि कोई किसान भाई मशरूम उत्पादन लेना चाहे तो सबसे पहले भी ढेंगरी मशरूम लेनी चाहिए।
0: जी ढेंगरी मशरूम से शुरुआत कर देनी।
1: तो ढेंगरी मशरूम कोई किसान भाई उत्पादन लेवे तो बिन कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, बी के लिए तापमान क्या को होना चाहिए, हाँ या और भी कोई बात हुआ है किसान भाई बताओ।
0: देखो ढेंगरी मशरूम या कोई दूसरा मशरूम हो उसको शुरुआत करते हैं तो ध्यान ये रखिए कि कहीं पर भी कंटामिनेशन नहीं आए, इसके लिए वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे।
1: जी
0: जिस ड्रम में भर रहा है पानी उसके अंदर जो है साफ सुथरा हो, वो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं हो, कोई गंदगी नहीं हो, जो भूसा ले रहा है उसको वो उपचारित करे, जिस टब से वो भूसे को तोल के डाल रहा है उस टब को भी जो है स्पीड से साफ करे, छोटा टब जिसमें वो बीज लेना चाहता है उसको भी जो है स्पीड से साफ करे, अपने हाथों को स्पीड से साफ करे, जिस प्लास्टिक की सीट के ऊपर 6-6 किलो की ढेरियां बनाना चाह रहा है उस प्लास्टिक की सीट को पहले जो है स्पीड के रूई का फोया बनाकर उससे साफ करे, ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए वो काम करे तो उसके कंटामिनेशन के चांसेज ही नहीं रहेंगे। फिर जब वो 20 दिन का टाइम हो जाता है बैग के अंदर मशरूम आ जाता है और जब वो बैग को खोलता है तब वहां पर ध्यान ये रखे कि बैग को खोलते टाइम भी प्लास्टिक का सीट बिछा करके उसको स्पीड के भोए से साफ करके हाथ साफ करके फिर बैग को खोले और बैग को खोलने के बाद में अब रैक पर रख दे पानी पिलाता रहे। अब एक दिक्कत हो सकती है कि ये भूसा जो था चारों तरफ से उस फंगस के माइसीलिया से उस जाल से पकड़ में आ गया था तो वहां पर चिकनाई आ जाती है तो पानी ठहरता नहीं है। किसानों का क्वेश्चन आता है सर हमारे बैग में जो है एक में मशरूम नहीं आ रहा और दूसरों में जो मशरूम आ रहा है, तो किसान उठा करके देखे कि जो बैग हल्का है तो इसका मतलब वह अंदर पानी नहीं गया, तो एक टब लेवे और अपने बैग को उस टब में रख करके पानी को अंदर जाने दे, जैसे ही पानी जाएगा दूसरे नहीं तीसरे दिन तो बहुत शानदार मशरूम निकलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए काम करे कहीं पर कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी।
1: और बात आप अगर सिंचाई के विषय में तो सिंचाई को कतो ध्यान रखना चाहिए, अगर ढेंगरी मशरूम कोई किसान भाई ले रखी है तो कद कद भी सिंचाई करनी चाहिए या सिंचाई के संदर्भ में और कई बातें हैं जहां कोई किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ देखिए सा ऐसा है कि जो भी मशरूम प्रोडक्शन वो लेगा किसी भी प्रकार का चाहे बटन ढींगरी दूध छता कोई भी लो, हमेशा वो सबसे पहले हार्वेस्टिंग करे, हार्वेस्टिंग के बाद में उस कमरे में झोपड़ी में जो भी उसने बना रखा है जहाँ प्रोडक्शन ले रहा उत्पादन कक्ष है उसकी साफ सफाई करे सही तरीके से।
1: जी
0: और उसके बाद में सिंचाई करे, सिंचाई में यही ध्यान रखे कि फूट स्प्रे पंप उसके पास में होना चाहिए। कभी कभार किसान क्या करते हैं समझ नहीं पाते हैं और पाइप से पानी पिलाने लग जाते हैं, उसकी धार इतनी तेज प्रेशर से आती है कि भूसा बीज के साथ में ही उखड़ जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए नोजल को ऊपर ही ऊपर वाले बैगों से स्टार्ट करे और घुमाते हुए ऊपर नीचे नोजल को घुमाते हुए वो नीचे तक लेकर के आए, क्योंकि इसमें सेल्फ में कल्टीवेशन होता है, यानी पहला रेक होगा तो उसमें नीचे एक सेल्फ होगा वहां बैगों की लाइन होगी, फिर ऊपर बैगों की लाइन होगी, फिर बैगों की लाइन, फिर ऐसे चार परत के अंदर जो है बैग अलग अलग जगह रखे जाएंगे, तो ऊपर से वो करता हुआ आए नीचे आए और लास्ट में पानी की बाल्टी भर के जो उत्पादन कक्ष है उसमें छोड़ देवे, तो इससे बहुत शानदार तो टेम्परेचर बनेगा, ह्यूमिडिटी बनेगी और अच्छा सा उत्पादन आएगा।
1: जी और कत्ता टाइम के बाद मैंने मशरूम की खेती है जिसकी किसान ने मिल जावा है,
0: जैसे ढींगरी मशरूम की अपन बात करें दूध छाता की बात करें तो किसान क्या है कि भूसे को उपचारित करता है, उपचारित करके फिर थैलियां भरता तो थैलियां लगभग 20 दिन पर खोल दी जाती है, तो 20-22 दिन से जो है वहां से प्रोडक्शन आना स्टार्ट हो जाता है।
1: जी
0: वहां से लेकर के कंटिन्यू फिर वो 2-2.5 महीने तक लगातार चलेगा, और इसी प्रकार से यदि बटन मशरूम उगा रहा है तो कंपोस्ट बनेगा, कंपोस्ट बनने में 27 दिन का टाइम लग जाएगा, लगभग 1 महीना यहां निकल गया, फिर वो बिजाई करेगा तो लगभग 15-1 दिन के अंदर उसके वो जो है मशरूम की शुरुआत होगी, और वह केसिंग लेयर करेगा वो 4-5 दिन में, तब जाकर के मशरूम आना स्टार्ट होगा। तो ऐसे जो है तीन

0: मशरूम का थोड़ा सा अलग अलग आने का तरीका रहता है, लेकिन लगभग हम मान सकते हैं कि एक महीना से लेकर के लगभग डेढ़ महीना तक जो मशरूम आना शुरू हो जाता है तीनों के अंदर ही।
1: जी जखा किसान भाई मशरूम उगानो चाहे खेती लेनो चाहे मशरूम की, तो सासू बुढ़ी माँ की समस्या आवेगा भी बीज खटाऊ खरीदे, तो बीज के संदर्भ में किसान भाई जानना चाहोगा कि वन बढ़िया बीज खटे मिल सके है और खटू के खरीद रहे बढ़िया मशरूम की खेती ले सके है।
0: हाँ जी, देखिए बीज मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं। गेहूं या ज्वार के दानों के ऊपर कल्चर डाल करके बीज तैयार किया जाता है और इसका ये स्पान जो बीज है वो 100 रुपए किलो आता है। किसान अपने यदि उदयपुर डिवीजन से है तो राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज है उसके अंदर अपना एक मशरूम यूनिट है वहां से ले सकते हैं। अपने सीकर झुंझुनू जयपुर टोंक अलवर ये इधर वाले जो लोग हैं तो अपने जयपुर दुर्गापुरा से बीज को खरीद सकते हैं। यदि और किसी प्राइवेट से लेना चाहते हैं तो उनके भी नंबर अपने पास में रहते हैं। जो भी कोई किसान इस टाइप की बात पूछता है तो आप या मेरे को कॉल कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूट में फोन कर सकता है, उनको नंबर प्रोवाइड अपन करवा देंगे, 100 रुपए किलो बीज उनको मिल जाएगा।
1: और कोई किसान भाई घर बीज तैयार करना चाहे तो वो भी संभव है सर?
0: हाँ ये भी संभव है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ औजारों की उपकरणों की जरूरत पड़ती है, उपकरण वर्ड बोलते हैं अपन, इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे ऑटोक्लेव हुआ, लेमिनार एयर फ्लो हुआ, बीओडी हुआ जिसको अपन फ्रिज बोल सकते हैं बीओडी को, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। थोड़े ये महंगे पड़ते हैं तो किसान नहीं खरीदता, लेकिन मान लीजिए किसान को अवेलेबल हो जाते हैं तो कुछ नहीं, गेहूं या ज्वार के दाने हैं उनको आधा पकाया जाता है, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा मिलाया जाता है 2% के हिसाब से, फिर थैलियां या बोतलें भर दी जाती है, फिर जो कल्चर होता है उसको उसमें इनोकुलेट या निवेशित किया जाता है, फिर जो है लगभग 12 से 15 दिन के अंदर जो है वो बीज बन जाता है और उसको बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि 1 किलो बीज है तो वो 4 किलो बीज के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी 1 किलो बीज का मतलब 1 किलो गेहूं है, 4 किलो गेहूं में कन्वर्ट किया जा सकता है बीज बना करके। तो ये भी एक मुनाफे का सौदा है, बीज भी लोग बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं।
1: जी जी, अगर थे बात करिए कंपोस्ट के विषय में तो किसान भाई जानना चाहोगा कि कंपोस्ट कहीं हुए है और किसान भाई वो बनाना चाहो तो कई प्रकार से बना सके वे।
0: कंपोस्ट देखिए भूसा होता है, इस भूसे को डायरेक्ट जो है मशरूम काम में नहीं लेगा, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है, उसको सड़ाना गलाना पड़ता है। जब इस भूसे को हम सड़ा देते हैं गला देते हैं और इसमें कुछ चीजें मिलाते हैं जैसे यूरिया खाद भी मिलाते हैं, गेहूं का चोकर, गेहूं पीसने के बाद में जो छन्ने में निकलता है वो चोकर है उसको भी अपन डालते हैं और जिप्सम भी डालते हैं।
1: जी
0: इन तीनों को टाइम टाइम से डाल करके वो जो 7 पलटाई करते हैं उस दौरान डाला जाता है और फिर जो 7 पलटाई के बाद में 28वें दिन जो तैयार होता है वो कंपोस्ट होता है और उस कंपोस्ट में बीज मिलाते हैं, उसके बिना बटन मशरूम का बीज जो नहीं डाला जाता। बटन मशरूम ये कहता है कि भूसे को मेरे लिए पहले तैयार करो, सॉफ्ट स्टेज में लाओ, सॉफ्ट स्टेज लाने के लिए उसको सड़ाया गलाया जाता है।
1: कंपोस्ट बढ़िया है या घटिया है इको ब्यूरो किसान भाई ने किया चला सर?
0: अपन जो है कंपोस्ट को हाथ में लेकर के देखें तो उसको जोर से बीचे उसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए, हाथ नम हो जाना चाहिए। दूसरा उसको सूंघते हैं तो उसमें अमोनिया की बदबू नहीं आना चाहिए। तीसरा उसके हम कलर को देखते हैं तो गहरे कलर का दिखना चाहिए, गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का नहीं दिखना चाहिए। सुनहरे कलर का दिखने का मतलब है वो डिकम्पोज नहीं हुआ और अमोनिया की बदबू उसमें आनी नहीं चाहिए, कीट उसमें होना नहीं चाहिए। कोई भी लटे वगैरह होती है जैसे इसको जब भी बनाते हैं मक्खियां खूब बैठती है क्योंकि गेहूं का चोकर इसके अंदर डाला था, उसको खाने के लिए मक्खियां आती है, अपने अंडे देती है, उनसे जो है लटे पैदा हो जाती है, वो लटे नहीं हो तो इसका मतलब ही हम समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा सा कंपोस्ट तैयार हुआ है, उस पर बिजाई कर सकते हैं।
1: तो बिजाई के विषय में अगर बात करें तो तैयार कंपोस्ट के मायने किसान भाई कद तई बिजाई कर दे, बी के मायने बीज दर कती रह गए?
0: ऐसा है कंपोस्ट बटन मशरूम के लिए करते हैं तो जैसे ही कंपोस्ट बन गया 7वीं पलटाई उसकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में 2 दिन छोड़ करके उसको ढेरी को तोड़ना शुरू करें और उसमें से भाप निकलता है यानी वो गर्म रहता है तो उसको ठंडा हो जाने दें। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे हम जो 6-6 किलो की ढेरियां बना लें और 45x60 सेंटीमीटर साइज की पॉलीथीन की थैलियां उनमें नीचे के दोनों कोने काट दें, 4 जगह छेद कर दें और उस कंपोस्ट को बीज मिला करके और बीज 1% के हिसाब से मिलाएं, 6 किलो ढेरी है तो 60 ग्राम आएगा लेकिन हम 100 ग्राम बीज तक आराम से डाल सकते हैं। हर ढेरी में 6 किलो की में 100 ग्राम बीज डाल दिए और उसको मिक्स करके थैली में भर दिया और मुंह बंद करके रख दिया 20 दिन के लिए, ऐसा जो है हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 1% बीज दर यहां पर रखी जाती है बटन मशरूम में।
1: देखा बेगा का मायने मशरूम लगेड़ी है तो वह बैगन में रकबा के विषय में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए और कदबन खोदना चाहिए।
0: हाँ देखिए,

0: जैसे ही बैगों को बीज मिला करके भरते हैं, मुंह बंद कर देवे और उनको रख देवे। मान लीजिए अपन ने रेक बना ली लोहे की या बांस की, तो उस पर रख दो ताकि जिनको बोलते हैं, और वो नहीं बनाई तो आप नीचे ही रख दो। ध्यान इतना सा रखो कि जहां पर भी बैग के अंदर बीज पड़ा हुआ है, उस बीज के आजू बाजू में सफेद ग्रोथ, सफेद वृद्धि दिखाई देनी चाहिए। आपको नीले, काले, पीले कलर की दिखाई देती है तो समझ जाओ कंटामिनेशन आया है, संक्रमण आया। संक्रमण क्यों आ गया? हो सकता हमने हाथ साफ नहीं किए, हो सकता हमने जिस टब से कंपोस्ट को तोला उसको साफ नहीं किया हो, हो सकता जिस टब में हमने बीज लिया है उसको साफ नहीं किया हो, हो सकता जिस पॉलिथीन पर हम ढेरियां बना रहे हैं उसको साफ नहीं किया हो। तो ये ध्यान रखे और उनको इसी हिसाब से रख लेवे, और जैसे ही 20 दिन का इनका टाइम, या ये उग जाते हैं, यूं कह सकते हैं बीज पूरा उग जाता है, सफेद ग्रोथ बैग के चारों तरफ दिखने लग जाती है, उसी टाइम जो है हम थैलियों को खोल करके केसिंग करते हैं।
1: जी, और थैली हटाते टाइम कौन कौन सी बातों में ध्यान रखना चाहिए?
0: अब ये थैली हटाने में बात यह है कि हम ढींगरी मशरूम के अंदर थैली हटाते हैं, बीज भूसे के अंदर मिला करके भरते हैं, वो जब 20 दिन का टाइम पूरा हो जाता है, बीज बढ़वार हो जाती है, तो ढींगरी मशरूम में तो थैली को हटा के दूर कर देते हैं, और दूध छाता में बटन मशरूम में पॉलीथीन की थैली को यूं का यूं रखा जाता है। कारण दोनों ही मशरूम के अंदर 4 सेंटीमीटर का मोटा लेयर बनाया जाता है, वो सड़े गले खाद का।
1: जी,
0: जब तक वो नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखने की बात है, तब तक आप चाहे कितना ही कुछ कर लो मशरूम नहीं आएगा। और यहाँ पर किसान लोग गलती करते हैं कि ये जो केसिंग लेयर बनाते हैं मोटी परत, वहां पर उन्होंने राख का परत बना दिया, राख बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया सीमेंट की तरह, मशरूम को ही नहीं निकलने दिया। तो ऐसी गलती नहीं करें। कुछ लोग बालू रेत का जो है लेयर बना देते हैं, ये नहीं करना। जितना उथला हुआ फूला हुआ हल्का मेटेरियल काम में ऊपर लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और वो भी इसलिए लेते हैं कि ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में चेंज हो जाए, यानी बडवार चेंज होकर के फ्रूट बॉडी बन जाए, इसलिए केसिंग लेयर करते हैं।
1: जी, और किसान भाई के मन में वो प्रश्न आ रही उसी के जटे पानी की कमी है, और बा इलाका का मायने भी अगर कोई किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहे तो कर सके क्या सर?
0: बिल्कुल कर सकते हैं साहब। देखिए, मशरूम का हमेशा ध्यान रखो, पानी चाहे कम हो, पानी चाहे खराब हो, तो भी मशरूम किया जा सकता है। किसी ने कह दिया कि आपके पानी का ईसी 2 मिलीमोल प्रति सेंटीमीटर है, पानी का ईसी बता दिया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इसमें साल्ट है, तो उस पानी को भी हम आराम से काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल बैग को गीला रखना है, उसको गीला रखने के लिए पानी किसी भी प्रकार का हो कोई दिक्कत ही नहीं है, मशरूम आराम से उगेगा, उसको तो केवल नमी चाहिए। तो नमी हम नीचे भी बना सकते हैं, बैग को भी हमेशा नम रख सकते हैं, और आराम से प्रोडक्शन लिया जा सकता है।
1: तो किसान भाई और बहनों, सत्यनारायण चौधरी जी चीफ ट्रेनर IHITC दुर्गापुरा जयपुर से स्टूडियो में पधारिया, और आज अपन जानकारी दी मशरूम उत्पादन के विषय में, इसके लिए आपको बड़ो बड़ो धन्यवाद।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: हाँ, तो बहुत ही चौकी जानकारी द्वारा प्रभु भाई डॉक्टर सत्यनारायण चौधरी जी से मशरूम की उन्नत खेती का बारे में, यानी मशरूम की जो खेती कर आप क्या आमदनी कमा सका कम जगह में और कम लागत में, आप
1: बिल्कुल
4: चोको और
1: मुनाफा जगह ले सका। और जगह बाहर जो बेरोजगारी को जो दौर है, देखो राजू भाई पढ़े लिखे जी भाई लोग खेती बस पचाई को काम हुए, तो वहां के लिए वो मशरूम उत्पादन और जहाँ डॉक्टर साहब बता रहे तो बहुत बढ़िया आप फायदा को सौदो उसके, तो की थोड़ी सी आपने जानकारी ले और मशरूम उत्पादन भाई लोग शुरू कर सके है।
4: बिल्कुल सर, तो देखो जानकारी देते दवा दिया एक खातर में, देखो तो चौको सुना दे लोकगीत।
1: बिल्कुल सुनाओ सर राजू भाई।
5: मारा बावड़िया भरता माला तिरे।

0: जू भाई महारा बावड़िया भरथार माला सिरे मेले मानन ले चलो एक बार। देखो राजस्थान री पहचान है, मेला है, अटांगा रीति रिवाज है, संस्कृति है और एक घर दीराणी री जगी जिद है की प्रकार से वह करण लाग रही है। तो बहुत ही मधुर सी जगी लोक रचना है भाई, लोगों तक पूगती हुई। पर देखो घड़ी सारो करण लाग रही है कि आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम को टेम अठाई पूरे हो रही है। तो भाई लोग आज का कार्यक्रम सु थे था का भाई प्रभु दयाल वर्मा
1: और राजू चौधरी ने दो आज्ञा और करा
0: राम राम
1: राम राम सा।

तुम्हारी सदा सुहागण ना।

खेती बाड़ी आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में पहला गीत है फिल्म जब वी मैट से। गीत को गाया है शान उस्ताद सुल्तान खान ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

अभी आपने सुना एक प्यारा सा गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म एमएस धोनी से अरिजीत सिंह की आवाज, मनोज मुंतशिर की लेखनी और अमान मलिक का संगीत। आइए सुनते हैं इस गीत को।

अभी आपने सुना एमएस धोनी फिल्म का गीत, अब प्रस्तुत है फिल्म मैं हूं ना से एक प्यारा सा गीत। गीत को गाया है सोनू निगम, आफताब और हाशिम ने। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है अनु मलिक का। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: अभी आपने सुना फिल्म वॉकअप सेट से एक गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म जाने तू या जाने ना से एक प्यारा सा गीत। गीत को गाया है राशिद अली और वसुंधरा दास ने। गीत के बोल लिखे हैं अब्बास ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म जाने तू या जाने ना का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म जब वी मेट से एक प्यारा सा गीत। गीत को गाया है मोहित चौहान ने, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत को हम यही विराम देते हैं। कुछ ही देर में 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्वागत है, मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ है विशेष शुक्ला। आज स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बात होगी खेल के मैदान की उन तमाम उपलब्धियों की जिन्होंने देश के भीतर से लेकर सात समंदर पार तक भारत को गौरवान्वित किया।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम में आज बताएंगे हॉकी के उस जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी जिसने भारत में खेलों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
0: कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी उन तमाम पहलों की, उन लक्ष्यों की जो प्रतिबद्ध है भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष ये दिवस 29 अगस्त को दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत पूरे देश भर ने आज इस महान भूति को याद किया है। भारतीय हॉकी मेजर ध्यानचंद के बिना अधूरी है। देश भर में आज दिग्गज हॉकी खिलाड़ी और पद्म भूषण से अलंकृत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत की समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने का प्रतीक है।
1: मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले चैंपियन खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जब मैदान पर खेलते थे तो ऐसा लगता था कि गेंद उनके स्टिक से किसी चुंबक की तरह चिपक गई हो। ऐसा कहा जाता है कि हॉकी के जादूगर की कलाइयों की जादूगरी देखकर एक दफा हिटलर तक ने उन्हें जर्मनी से खेलने तक का ऑफर दिया था। 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद में जन्मे ध्यान सिंह का बचपन से ही झुकाव हॉकी के प्रति रहा। पिता ब्रिटिश सेना में थे और आसपास के माहौल ने ध्यान सिंह के शौक को जुनून में तब्दील कर दिया। महज 16 वर्ष की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना से जुड़े और यहीं से शुरुआत हुई विश्व के महानतम खिलाड़ी की कहानी की। हॉकी से लगाव ऐसा कि वे दिन में सेना की नौकरी करते और रात को दूधिया रोशनी में मैदान पर अभ्यास। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, ध्यान सिंह ध्यानचंद बनते चले गए। सेना में अपनी सेवाएं देने के दौरान ध्यानचंद ने रेजिमेंटल मैच खेलने शुरू किए। वर्ष 1922 से लेकर 1926 के बीच ध्यानचंद ने अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया और आखिरकार भारतीय हॉकी टीम की जर्सी में इस उभरती प्रतिभा को न्यूजीलैंड दौरे के लिए मौका दे ही दिया। ध्यानचंद आज से 100 वर्ष पहले जब न्यूजीलैंड के मैदान पर उतरे तो उनकी हॉकी स्टिक के करतब बता रहे थे। ना जाने कितने दिनों से ध्यानचंद इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते और सिर्फ एक ही मुकाबले में हार का सामना किया और इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का श्रेय जाता है ध्यानचंद के जादुई खेल को। भारतीय हॉकी महासंघ ने 1928 ओलंपिक के लिए जब टीम भेजने का निर्णय लिया तो ध्यानचंद को ट्रायल के लिए बुलाया गया। ओलंपिक में ध्यानचंद ने 5 मुकाबलों में शानदार 14 गोल दागे और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। वो ध्यानचंद का खेल ही था कि भारतीय टीम पूरा टूर्नामेंट में अजय रही और स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटी। विश्व स्तर पर ध्यानचंद के खेल की चर्चा होने लगी। वर्ष 1932 और 1936 के ओलंपिक में भी ध्यानचंद ने अपने खेल के करिश्मे से हर किसी को दीवाना बना दिया और भारत को दोनों मौकों पर स्वर्ण पदक जिताया। ध्यानचंद ने अपने जादुई खेल की बदौलत इस पूरे काल को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग बना दिया। टीम के साथ मैदान पर अटूट समर्पण, संतुलन ऐसा कि मैदान पर कोई अभेदय किला बन जाए और हॉकी स्टिक से वो जादूगरी कि ध्यानचंद के पास आई गेंद सिर्फ गोल पोस्ट पर जाकर रुके। इसी दौरान वर्ष 1936 के ओलंपिक में भारत और जर्मनी का मुकाबला आज भी किस्सों कहानियों में अमर है। मैच में ध्यानचंद ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे और भारत ने जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया। कहा जाता है कि उस दिन स्टेडियम का आलम ये था कि बीच मुकाबले में ही अपनी टीम को हारता देख हिटलर स्टेडियम छोड़कर चले गए। इसके बाद हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया और उन्हें अपनी सेना में बड़ा पद ऑफर करते हुए जर्मनी से खेलने को कहा। हालांकि जो ऐसे प्रलोभनों में आ जाए वो ध्यानचंद कैसा। ध्यानचंद ने भारत को 34 साल तक सेवाएं दी और लेफ्टिनेंट के तौर पर रिटायर हुए। 22 वर्षों के करियर में ध्यानचंद ने भारत के लिए 400 गोल किए। 3 दिसंबर 1979 को ध्यानचंद कैंसर से लड़ते हुए

0: जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन आज भी ये खिलाड़ी किसी भी खेल के मैदान पर सैकड़ों खिलाड़ियों की जीत का आदर्श है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो देश आज याद कर रहा है अपने इस चैंपियन खिलाड़ी को। श्रोताओं, खेल सिर्फ मैदान पर बढ़त बनाना या जीत की बाजी नहीं है, इसके पीछे छुपे होते हैं सैकड़ों अनचाही हार के अनुभव। मैदान पर गिरकर उठने का जज्बा, न जाने कितनी चोटों के दर्द, जिन सब पर पार पाकर एक खिलाड़ी मुकाबले में जीत हासिल करता है। ये वो जीते हैं जो इतिहास के पन्नों में एक बार लिखी जाती हैं तो वापस कभी कोई इन्हें मिटा नहीं सकता। बर्लिन में ध्यानचंद का करिश्मा तो आपने सुना, जिस यात्रा में ऐसे कई पड़ाव रोज जुड़ते हैं, जहां 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ता फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह एक सेकंड के 100वें हिस्से से पोडियम पर पहुंचने से चूक जाता है। 1975 का हॉकी विश्व कप, जहां चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर भारत की जीत ऐतिहासिक बन जाती है। 1983 में काली सफेद टीवी स्क्रीन पर हिंदुस्तान अपने हीरो कपिल देव को पहली बार क्रिकेट विश्व कप उठाते हुए देखता है, तो कहीं कोई अंजू बॉबी जॉर्ज, कोई पीटी उषा सैकड़ों लड़कियों का आदर्श बन जाती है।
2: 16 साल का लड़का एक बार क्रिकेट के रिकॉर्ड को ध्वस्त करता है तो 100 शतक लगाकर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर बन जाता है। विश्वनाथ आनंद की चेस की बाजियों से लेकर सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, भाईचंद भूटिया, सुनील छेत्री, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह और फोगाट परिवार, न जाने कितने ऐसे नाम दुनिया को बताते हैं कि कुश्ती की मिट्टी से लेकर हॉकी के टर्फ तक आज भारत का हर खेल खेल के लिए तैयार है।
3: फुर्ती इतना खूबसूरती था, अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी पाइप फ्लैंक में और यह खेल खत्म, भारत 2-1 से जीत गया।
4: Yes, it's all over this time. 40 all out. West Indies, India, race into the pavilion with the Prudential Cup players.
5: Superman, representing India, Raya Marjan Singh Rathore.
6: In the air, Srijan takes it. India win. Cody finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lifts the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room.
7: पहला गोल्ड मेडल भारत के नाम एथलेटिक्स में ओलंपिक गेम्स के अंदर, और वो आया है टोक्यो 2020 में।
8: मैच पॉइंट, गोल्ड मेडल पीवी सिंधु के नाम, और ये है इनके करियर का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स सिंगल्स गोल्ड मेडल।
9: गो बैक टू द जैवलिन एंड सुमित विद हिज सेकंड थ्रो आफ्टर अ 69-11।
10: अनदर गोल, प्रीएमिनेंट एथलीट इन दिस इवेंट, द मेन्स जैवलिन इन टोक्यो, हिज रिपीटेड फीट हियर इन पेरिस।
11: नो, ये सही है, ये सही है गुरु।
1: वो तमाम लम्हे जो हम वापस जब भी सुनते हैं तो गौरवान्वित होते हैं। खेलों का एक बहुत सीधा और सटीक गणित है कि चैंपियन एक दिन में नहीं बना करते।
2: देश में बीते कुछ वर्षों में शासन प्रशासन की तरफ से विश्वास की नई राह दिखी है। केंद्र सरकार की टॉप योजना हो या खेलो इंडिया का मंच या फिट इंडिया की मुहिम, भारत एक खेलों की नई नर्सरी के रूप में तैयार हो रहा है।
1: आपकी जीत पर आपकी पीठ सैकड़ों लोग थपथपाते हैं, लेकिन ये विश्वास तब परिभाषित होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 क्रिकेट विश्व कप की हार के बाद अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने पहुंच जाते हैं उनके ड्रेसिंग रूम। लक्ष्य स्पष्ट है, सरकार प्रतिबद्ध है देश को खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए।
2: सिर्फ प्रतिभा तक नहीं, भारत अब आयोजनों का नया मंच बन रहा है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो भारत की ओलंपिक मेजबानी की राह मजबूत कर रहा है।
1: तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहते हैं, जो खेलेगा वो खिलेगा।
12: स्पोर्ट्स में कोई लूजर नहीं होता, स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल, स्पिरिट यूनिवर्सल। स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है।
13: देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर।
14: मैं देख रहा हूँ मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है।
1: तो ये तो

0: for me is fun. Sports for me is like a secret for fitness.
1: खेल मेरे लिए स्कूल का यादगार दिन जो हम क्लासेस बंक करके खेलते थे और खेलों में बहुत खुशी मिलती है. खेल का मतलब मेरे लिए वो खूबसूरत पल है जो मैंने अपनों के साथ बिताए, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हो या फिर मेरे पेरेंट्स हो. जब मैंने उनके साथ बैडमिंटन खेला या वो डॉज बॉल खेला या वॉलीबॉल खेला तो उस समय जब मैं खेलने के टाइम जो मेरे को रिफ्रेश फील होता था या फिर मेंटली फ्री फील करती थी मैं, सब चीजें भूल जाना, वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहेगा.
2: खेल मेरे लिए मेरे बचपन का वो हिस्सा है जो मैंने अनजाने में जिया.
3: स्पोर्ट्स फॉर मी इज रोहित शर्मा, अ सिंबल ऑफ कामनेस, एक्सीलेंस एंड लीडरशिप. जर्सी नंबर 45.
2: खेल मेरे लिए मेरे जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मैंने बचपन में जिया है, जो मुझे खुशी देता है, जो मुझे सुकून देता है.
4: स्पोर्ट्स इंप्रूव्स फिजिकल हेल्थ, शार्पन्स द माइंड, इट बिल्ड्स फिटनेस, रिड्यूसेस स्ट्रेस, इंप्रूव्स फोकस एंड बूस्ट्स कॉन्फिडेंस, इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ.
5: तो सबके अपने किस्से हैं, सबकी अपनी यादें हैं. राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
6: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है. इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव. इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है. इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला. मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया.
7: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है. मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा.
6: सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है. खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
5: चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो या विश्व का कोई बड़ा खेल आयोजन, पोडियम पर राष्ट्रगान के साथ लहराता तिरंगा हर तस्वीर में कहानी बयां करता है. उन संघर्षों की, अभ्यासों की जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आते. हर खिलाड़ी मैदान पर उतना ही होता है जितना घड़ी की सुइयों में बंधे मुकाबलों के स्कोर बोर्ड में नजर नहीं आ सके. खेल हमें मैदान से इतर बहुत कुछ सिखाते हैं. अब कार्यक्रम में अंत में आज की कुछ खबरों की भी बात करनी जाए तो विशेष क्या है आपके पास?
8: भारत के लिए खुशखबरी आई है हंगरी से, जहां आयोजित पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन फाइनल में भारत के वेलविन सेंथिल कुमार ने घरेलू दावेदार बलाज फाकर्स को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. हालांकि एशियन गेम्स से ठीक पहले भारत की पदक की उम्मीदों को झटका भी लगा है, जहां 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं. नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि अभ्यास के दौरान चोट लगने के कारण वे एशियाई खेलों के साथ साथ 2026 के बाकी सत्र में नहीं खेल पाएंगे.
5: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक पदक का नुकसान हुआ, साथ ही वो तमाम खेल प्रेमी जो नीरज को देखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर. और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का. आज का विशेषांक आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं. तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार.
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए

0: ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत

0: नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाली चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
3: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
5: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ही अपने पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसी का ये परिणाम है। क्या देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
4: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआर अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।

0: आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाजें अनिरुद्ध रविचंद्र, विशाल ददलानी और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार और शैलेंद्र के, संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र और शंकर जयकिशन

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म डंकी से, आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल स्वानंद किरकिरे और आईपी सिंह के, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से, आवाजें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म वार से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल और शेखर का।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: आइए आज बात करें अभिनेत्री लीना चंदावरकर की।
1: क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या, तुम तो बहुत छोटा ही है।
2: आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ।
1: मुझे गलत मत समझना।
2: यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ।
1: मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है।
2: कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा।
1: वाह अच्छा शेर है, बैठो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ।
2: ड्रेसिंग की क्या जरूरत है, दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें देहरादून तक ले जाए और तुम फिर कड़ी नजर रखे। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती
2: कि मैं टूट जाऊंगा।
3: लीना, एक अभी मैं लेके कहा था, तू कहा थी अब तक
1: घर पर ही थी और कहा थी
2: नेंद्रा को मेकअप करने के लिए 2 घंटे चाहिए।
1: मैं मेकअप नहीं कर रही थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। गाड़ी तुम लेकर आए, मैं कैसे आती?
2: अरे अंकल की गाड़ी ले आती।
1: उन्हीं की गाड़ी में आई हूँ, मुझे अकल मत सिखाओ।
2: अकल तो उसे सिखाई जाती है जिसके पास अकल हो।
3: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को बाबा? आज मेरा बर्थडे है, उस दिन लड़ोगे?
1: आज मेरी सबसे प्यारी सहेली लीना मेरी बर्थडे पार्टी की खुशी में एक गाना सुनाएगी।
2: हाँ हाँ

मीना चंदावरकर दरअसल कारवाड़ की रहने वाली हैं। 15 साल की उम्र में उन्हें अभिनय का चस्का लग गया और होनहार कलाकारों के चयन के लिए होने वाली एक प्रतियोगिता में उन्होंने चुपके से आवेदन कर दिया। उनके माता पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दादाजी का समर्थन पाकर लीना चली आई मुंबई। उम्र बहुत कम होने के कारण इन दिनों उन्हें हीरोइन के रोल नहीं दिए जाते थे। कुछ फिल्मों में लीना चंदावरकर ने बहन की भूमिकाएं की। इस दौर में लीना ने छुटपुट मॉडलिंग भी की। उन दिनों अभिनेता और निर्देशक सुनील दत्त अपनी फिल्म मन का मीत की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में उन्होंने लीना को पहली बार हीरोइन बनाया।

फिल्म मन का मीत की तैयारी के दौरान सुनील दत्त ने लीना की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अपनी पत्नी नरगिस को सौंपी। नरगिस जी के नजदीक रहकर लीना ने भाषा, संवाद अदायगी, नृत्य, तैराकी और ड्राइविंग सीखी। फिल्म मन का मीत को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन लीना चंदावरकर की पहचान जरूर बन गई। अगले ही साल सन 1970 में लीना चंदावरकर की धमाकेदार फिल्म आई हम जोली।

0: जाने दो जाना है गाते गाते लीना धूम मचाती हुई चोटी की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। शम्मी कपूर के साथ वे नजर आई फिल्म प्रीतम और फिल्म जाने अनजाने में।
1: राम, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल पे एक बोझा था, वो आज हट गया।
2: बोझ? कैसा बोझ?
1: आज जब तुम्हारा फोन आया था तो हेमंत भी वहाँ मौजूद था। उसने एकदम अचानक शादी की बात छेड़ी।
2: मुबारक हो।
1: ओहो, तुमसे बात करना भी मुश्किल है। मैंने हेमंत से साफ साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ।
2: माला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तो
1: अब कोई फायदा नहीं राम।

0: जब शक्ति सामंत जी आए घर पर और वो जाने अनजाने के लिए आए थे, तो उन्होंने दो फिल्मों के ऑफर लेके आए थे, एक में राजेश जी थे और एक में शम्मी जी। अब पता नहीं मेरे पापा को किसने भड़काया था कि शम्मी जी बहुत ही अपने टाइम में वो क्या बोलते हैं एकदम टाइप के थे, तो पापा ने बोला, पापा भी एकदम उनको मालूम नहीं ना, बोले कि राजेश खन्ना यस, शम्मी कपूर नो। तो उन्होंने वाई क्यों नो, तो बोलते वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, राजेश खन्ना नए नए हैं, तो मेरी आप बोली ना ये शम्मी जी के साथ में बहुत अच्छा रोल है और इतना अच्छा मतलब सब्जेक्ट है। उस जमाना ऐसे था कि कोई आर्टिस्ट ही थे नहीं, इसलिए हम लोगों को वाकई बहुत इज्जत मिली और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरह से कि जैसे रवेल साहब मुझे तो अपने एक बेटी की तरह ट्रीट किया और एक मंदिर जैसा लगता था स्टूडियो में जाना का। अब हुआ ये कि शक्ति जी की फिल्म से पहले बप्पी सोनी एक डायरेक्टर थे जिन्होंने प्रीतम के लिए मुझे साइन किया, इन्होंने जाने अनजाने के लिए, तो इसका आउटडोर पहले आया, तो आउटडोर पहले हम लोग कश्मीर चले गए आउटडोर करने के लिए, दो तीन गाने फिल्माए वगैरह, तो वहां पर शम्मी जी के साथ काफी उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहां पर और मस्ती मजाक भी करते थे, वो मुझे बोलते थे डेढ़ फुटी, मैं बोलती थी लंबे इंसान का दिमाग घुटने में होता है ऊंचा जो होता है, इस तरह से हम लोग, वो तो राजी नहीं बोला था कि वो डेढ़ फुट ही बोले तो ऐसे बोलना कि घुटने में होता है आप लोगों का दिमाग, तो हम लोग काफी मतलब फैमिली काफी क्लोज आ गई और वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं
1: अभिनेत्री लीना चंदावरकर की धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनी फिल्म रखवाला में।

1971 में हास्य अभिनेता महमूद की फिल्म आई मैं सुंदर हूँ। इस फिल्म के जरिए लीना ने अपने चाहने वालों से कहा,

ये सन 1973 में आई फिल्म अनहोनी का गीत था। इसके बाद लीना की एक बड़ी शानदार फिल्म आई मनचली।

फिल्म मंजली में लीना चंदावरकर ने लोगों को अपनी अदाओं से खूब गुदगुदाया और ये साबित कर दिया कि कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। सन 1974 में आई फिल्म विदाई, इस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लीना को खूब तारीफ मिली।

0: था क्योंकि सिद्धार्थ वानदोड़कर के साथ उनका विवाह हो गया था। एक दर्दनाक दुर्घटना में उनके पति नहीं रहे और लीना पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मजबूर होकर लीना चंदावरकर को दोबारा फिल्मी दुनिया में आना पड़ा।
1: तो जिंदगी है कभी खुशी है कभी

0: कभी खुशी है कभी गम।
1: आगे चलकर लीना चंदावरकर की मुलाकात हुई सुरों के बादशाह किशोर कुमार से, जो उनके जीवन साथी बने।
2: आज भी मैं जब कोई गाना सुनती हूँ उनका, तो एक एक गाने के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। जैसे एक गाना था, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

FM रेन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ का नहीं चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, पेश नजर है फिल्म संगीत। फिजाओं में रंग सा भर गया है, दिल किसी के संग सा जुड़ गया है। हर दिन में नया सा लगता है, जैसे प्यार फिर से हो गया है। इसी के साथ फिल्म संगीत का आगाज करते हैं। और सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में बजरंग का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर वापस फिल्म से। इन हवाओं में एक मिठास सी घुली है, धड़कनों से नई सी धुन सी बसी है। किसी की मोहब्बत हर पल साथ रहती है, जिंदगी जैसे अब हसीन सी लगती है।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में वापस फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं शकील गदाई का लिखा गीत निषाद के संगीत निर्देशन में लीडर फिल्म से आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है। पानी की बूंदों में कहानी मिलती है, भीगी सी यादों में रवानी मिलती है। जब भी ख्याल आता है उस चेहरे का, दिल को एक अजीब सी निशानी मिलती है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में लीडर फिल्म का गीत सुना। दो रास्ते, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। नंबर नंबर है अमन बख्शी और मौसिकी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की है। अधूरी सी जिंदगी पूरी लगती है, हर सुबह सुनहरी लगती है, जब से कोई दिल के करीब आया हर राह आसान लगती है।

अभी आपने लता मंगेशकर और मनोहर फी की आवाज में दो रास्ते फिल्म का गीत सुना। अब सुनते हैं अगली पेशकश अनोखी अदा फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की है, बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। चांदनी रात में ख्वाब सजाने लगे हैं, दिल के जज्बात अब मुस्कुराने लगे हैं, कोई खास धीरे धीरे करीब आ रहा है, अधूरे ख्वाब अब पूरे होने लगे हैं।

अनोखी आवाज फिल्मा की तबला अपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। अब सुनते हैं साहिद का लिखा गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में आमने सामने फिल्म से।

मैंने अपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में आमिर खान ने फिल्म का गीत सुना जीवन मृत्यु। आई सुनते हैं इस फिल्म का दो गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, बोलन बख्शी के हैं और ध्वनि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। सितारे में जैसे कोई राज छुपा है, हर ख्वाब में कहीं अंदाज छुपा है, जिसकी एक झलक से दिन बन जाए उस चेहरे से पूरा जहां छुपा है।

0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ललकार फिल्म का गीत। नजरों ने जब नजरों को छुआ था, दिल को उसी पल कुछ कहा था। अनकहा सा वो रिश्ता बन गया जो हर पल दिल के करीब रहा था।
1: सर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
2: पढ़ाते गुजर जाइए।
1: नहीं आएगा? नहीं आएगा।

अपने मन रफी और लता मंगेशकर की आवाज में लड़का फिल्म का गीत सुना। आप आए बाहर आए, आइए सुनते हैं इस फिल्म का दो गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में मनमणिकान है आनंद बख्शी और मौसी की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। रातों की नींद अब उड़ने लगी है, खामोशी भी कुछ कहने लगी है। किसी की यादों का असर ऐसा हर धड़कन उसी में बसने लगी है।

आप आए बाहर आई इस फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुना और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हर्थ की सफाई फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। पलकों पर एक नाम ठहर सा गया है, खामोश दिल कुछ कहने लगा है, अनजाना सा ये रिश्ता गहरा हुआ, हर एहसास अब अपना सा लगता है।

हाथ की सफाई सुनकर भी तभी अपनी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। हंसी मैम मान जाएगी। आइए सुनते हैं फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। अख्तर रमानी के बोल की धुन बनी है कल्याण जी आनंद जी ने। सफर ये दिल का अब खास हो गया है, कोई चेहरा बहुत पास हो गया है, हर धड़कन में उसी का नाम है, जैसे प्यार पहली बार हो गया है।

हसीना मान जाएगी। सुनकर ये तो भी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुना। आप सुनते हैं साहिद कलिका की कल्याण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धन पर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में इज्जत फिल्म से। आंखों में ख्वाब सा बस गया है, दिल किसी की याद में हंस गया है। अजनबी सा जो रिश्ता था पहले, अब वही सबसे अपना

अभी आपने मोनोग्राफी और लता मंगेशकर की आवाज में इस फिल्म का गीत सुना और अब सुनते हैं फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश वासनावी फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर, मोनोग्राफी के हैं, बोल साहिर के हैं, धुन चित्रगुप्त की है। मुस्कान में एक सुकून सा मिलता है, हर लम्हा अब खास सा लगता है। दिल चाहता है बस यही दुआ, ये एहसास कभी कम न हो।

0: विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 670 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय

0: के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह चैनल है। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।